हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 10 जून 2026। इस समय सवेरे के 5:57 होने को है। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी उदयपुर है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने एक पत्र में कहा है कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का भी प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श और नेतृत्व का उदाहरण बताया। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉ जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने ओमान के तट पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि अमरीका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। ट्रंप के अनुसार दोनों पायलटों को बचा लिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने विदेशी सेनाओं से होर्मुज जलडमरू मध्य छोड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर विदेशी सेनाएं अपनी मानवीय त्रुटियों, दुर्घटनाओं या गोलीबारी में फंसने के कारण लगातार संकट में रहेंगी। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर ही सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी उदय

गोरखपुर है। सवेरे के 6:05 हुए हैं। ये समय है प्रभु वंदन आराधन का। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

प्रार्थना हमेशा ऐसी करे कि आंखें मिले तो लोगों में अच्छाई दिखे, हृदय मिले तो दूसरों की गलतियों को क्षमा कर दे, मन मिले तो बुरी बातों को भुला दे, और आत्मा मिले जो भगवान पर विश्वास कभी न खोए।

भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना अभी आपने सुना। ये आकाशवाणी उदयपुर है। आइए अब नजर डालते हैं हमारी आज की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर।

हमारी प्रातःकालीन सभा में सवेरे 6:35 पर आप सुन रहे कार्यक्रम विवरण और 6:40 का समय रहेगा श्री रामचरितमानस गान का। संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का। कार्यक्रम खेती में आज आप सुनेंगे 6:50 पर। सदाबहार नगमों का समय रहेगा सवेरे 7:00। सुगम संगीत आप सुन सकेंगे 7:45 पर। सवेरे 8:00 सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से। सवेरे 8:30 का समय रहेगा मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन के कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर का। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे सवेरे 9:00 और प्रायोजित कार्यक्रम NCERT द्वारा उमंग कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 9:30 पर।

प्रातः 10 बजे आप सुनेंगे कुछ बातें कुछ गीत। राजस्थानी गीतों से सजा कार्यक्रम गोखड़े का समय रहेगा सवेरे 11 बजे और 11:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। दोपहर 12 बजे आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत और हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे दोपहर 1 बजे। दोपहर 1:05 पर आप सुन सकेंगे महिलाओं का अपना कार्यक्रम महिला जगत। 1:45 का समय रहेगा फिल्म संगीत, साथ ही होगी विकास चर्चा में गति शक्ति मास्टर प्लान पर बातचीत। दोपहर समाचार का समय रहेगा 2:15 और किसान भाई सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम कृषि जगत दोपहर 2:30 पर। दोपहर 3 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 3:05 पर हमारी प्रातःकालीन सभा का समापन होगा। हमारी संध्याकालीन सभा का आगाज होगा शाम 5 कार्यक्रम युवाणी के साथ। हिंदी में समाचार आप सुन सकेंगे शाम को 6 और 6:05 का समय रहेगा फिल्म संगीत का। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:30 पर आकाशवाणी जयपुर से।

कार्यक्रम खेती और घर आप सुनेंगे शाम को 7 बजे, रात्रि 8 बजे का समय रहेगा फिल्म संगीत का। समाचार संध्या आप सुन सकेंगे 8:45 पर, न्यूज़ 8:09 रात्रि 9 बजे और 9:15 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। शास्त्रीय संगीत का समय रहेगा रात्रि 10 बजे, हिंदी में समाचार आप सुनेंगे रात्रि 11 बजे और 11:05 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार। तो ये थी श्रोताओं हमारे आज के दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी, ये आकाशवाणी उदयपुर है। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरितमानस गान, संगीत निर्देशन

विधि के विधान के अनुसार श्री राम तथा जानकी का विवाह शिव के धनुष के अधीन था, जो उसके टूटते ही संपन्न हो गया। किंतु लोकाचार का अपना ही महत्व होता है। प्रत्येक कुल की अपनी मर्यादा तथा परंपरा होती है, जिसका परिपालन ऐसे शुभ अवसरों पर ही होता है। अतः वेदों में वर्णित तथा राजपुरोहितों द्वारा अनुशंसित आचार के लिए राजा जनक ने महाराज दशरथ के पास शुभ संदेश लेकर अपने दूत भेजे। संदेशवाहक पत्र लेकर श्रीराम की पवित्र नगरी अयोध्या पहुंचे। पाती बांचते हुए महाराज दशरथ का हृदय पुलकित हुआ और नैनों में आनंद के आंसू छलक आए। जनकपुरी से आए दूतों का समाचार सुन मित्र मंडली के साथ खेलते हुए भरत तथा शत्रुघ्न दौड़े आए। अपने प्राणों से भी प्रिय भाइयों श्रीराम तथा लक्ष्मण का कुशल क्षेम जानने के लिए। जब से ऋषि विश्वामित्र के साथ राजा दशरथ के दो पुत्र ऋषि मुनियों की यज्ञ रक्षा के लिए गए थे, तब से आज पहली बार उन दो किशोरों के कुशल क्षेम का समाचार मिला था। दूतों ने धनुष यज्ञ में श्रीराम के पराक्रम की कथा सुनाई, जिसे सुनकर सभी गदगद हो गए।

जैसा मिट्टी रो पीएच मान जो है 5.5 से 8 रे बच्चे बहनों चावे। अरहर में मृदा जनित रोगा रे बचाव रे वाते एक ही खेत में लगातार कई वर्षा तक अरहर री खेती अपने नहीं करनी चावा सा। और बुआई करवाऊँ पहली अपने खेत री एक बार गहरी जुताई करीन 2-3 बार हैरो चलाइन मिट्टी ने भुरभुरी अपने करनी पड़ेगा सा। अंडे बाद खेत में बुआई रे वाते खेत तैयार भई जावे और बुआई रे समय खेत में सही नमीरो वेणो बहुत ही जरूरी वे वैसा। अबे आप ही बुआई रो समय री बात करा तो देखो अरहर खरीफ रे मौसम में उगाई जावे वाली दलहनी फसल है। अरहर री खेती अगेती और पछेती फसल रे रूप में करा हासा और सिंचित क्षेत्र में अरहर जो है अगेती री बुआई जो है मध्य जून पलेवा रे लारे अपने जरूर कर देनी है सा। मेड़ा पर बोवाऊ अच्छी उपज अपने मले। बुआई रे टेम पे पंक्तियां रो अंतर जो है 30 से 45 सेंटीमीटर और पौधों पौधा रो अंतर 5 से 10 सेंटीमीटर उचित रहेगा। और खरीफ री बुआई रे वाते 15 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टर रे दरू बीज अपने पर्याप्त रहेगा सा। बीजा ने अपने 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई में अपने बोना चावा सा। अब आप बुआई री विधि री बात करा तो देखो प्रयोग रे आधार पर यो साबित हो चुको है कि मेढ़ा पर अगर आप अरहर री बुआई करा तो यो न केवल पैदावार में बढ़ोतरी करे बल्कि अणि तकनीक ने अपनावाऊ जल भराव रे नुकसानों भी आपी वंची सका सा। एक लारे कवक जनित रोगारो प्रकोप भी अण्यू कम बेवे सा। अरहर री उन्नत प्रजातियां री बात करा तो पूसा 16, पूसा 991, पूसा 992, पूसा 2001, पूसा 2002, पूसा 33, पूसा 855, पूसा 9, उपास 120, प्रभात, बहार और टाइप 21 शीघ्र पकवा वाली और अरहर 291, मानक, अमर, नरेंद्र अरहर 1, नरेंद्र अरहर 2, नरेंद्र अरहर 3 आदि जी फसलां है भी देर पकवा वाली प्रमुख है सा। अब आप बीजोपचार की बात करा तो मिट्टी और बीज जनित कई कवक और जीवाणु जनित रोग जो है मिट्टी अंकुरण रे टेम पे और अंडे बाद बीजा ने काफी नुकसान पहुंचावे सा। बीजा रे अच्छे अंकुरण और स्वास्थ्य रे पौधा रे वाते पर्याप्त संख्या में आपने कवकनाशी बीज उपचारी सलाह दी जावे सा। अंडे वाते आपने प्रति किलोग्राम बीज ने 2-2.5 किलोग्राम थीरम और 1 ग्राम कार्बेंडाजियम उपचार करीन पचे आपने राइजोबियम कल्चर बीजोपचार करनो चावे सा। हाउ पैदावार रे वाते प्रति इकाई क्षेत्र में पौधारी निर्धारित संख्या अनिवार्य है। कम पौधारी स्थिति में खरपतवार रो जमाव और विकास ज्यादा वेगा और उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ेगा सा। अबे आपी पोषण तत्व प्रबंधन री बात करा तो देखो हाउ उत्पादन रे वाते संतुलित उर्वरक रो प्रयोग करना जरूरी है और उर्वरक रो प्रयोग जो है अपने मिट्टी रे परीक्षण भी जो संस्तुति आई है वनडे आधार पर इस करनो चावे सा। अरहर री अच्छी उपज लेवारे वाते अपने 10 से 15 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टर री आवश्यकता वेगा सा। अरहर री ज्यादा ज्यादा उपज रे वाते फास्फोरस युक्त उर्वरक जैसे कि सिंगल सुपर फास्फेट 250 किलोग्राम प्रति हेक्टर या 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर डीएपी या 20 किलोग्राम सल्फर पंक्तियों में बुआई रे टेम पे आपने पोरा या नायरी सहायता देना चावा सा। जणियो कहिए कि उर्वरक बीज रे संपर्क में नहीं आवे सा। भरपूर उत्पादन रे वाते संतुलित उर्वरक रो प्रयोग आपने करनो है। कुछ क्षेत्र में जस्ता या जिंक री कमी री अवस्था में 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर री दर आपने प्रयोग करनो चावे सा। अबे किसान भाई बहनों आप ही सूरजमुखी री बात करा तो सूरजमुखी री उन्नत संकुल प्रजातियां री बात करा तो सूर्या, मार्डन, DRSF 108, को 5, फूले रविराज और संकर प्रजातियां री बात करा तो KVSH1, SH32, 22 प्रमुख है सा। किसान भाई बहनों बीज दर बुआई और दूरी खरपतवार नियंत्रण री बात करा तो देखो संकर प्रजातियां रो 7 से 8 किलोग्राम और संकुल प्रजातियां रो 12 से 15 किलोग्राम बीज जो है 1 हेक्टर बुआई रे वाते पर्याप्त व्यवसा। संकर प्रजातियां री बुआई 60 x 12 सेंटीमीटर और संकुल प्रजातियां री बुआई 45 x 20 सेंटीमीटर पर आपने करनी चावे सा। सूरजमुखी री बुआई रे वाते 15 से 20 दिन बाद आपने खेत में अवांछित पौधा ने निकालिन पौधों पौधा री दूरी 20 सेंटीमीटर रखनी है। रासायनिक खरपतवार नियंत्रण रे वाते पेंडी मेथिलीन 30 EC 3.3 लीटर प्रति हेक्टर री दर 800 लीटर पानी में गोल बनाई बुआई रे बाद एवं जमाऊ पहली छिड़काव करनो है सा। पोषक तत्व प्रबंधन री बात करा तो उर्वरक रो प्रयोग मृदा परीक्षण रे आधार पर करनो चावे।
मृदा परीक्षण ने व्यवहारिक दशा में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन

0: 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टर दर बुआई रे टेम पे आपने प्रयोग करनो है सा। खरपतवार री रोकथाम रे वास्ते प्री इमरजेंस फ्लूर क्लोरीन रो 2 लीटर प्रति हेक्टर री दर बीज री बुआई रे 4-5 दिन बाद आपने छिड़काव करनो है और दोबारा 30-35 दिन रे बाद हाथों वंचिया थका खरपतवार ने उखाड़ देनो है सा। किसान भाई बहनों अब आपकी कपास री बात करा तो देखो सिंचाई री अच्छी व्यवस्था वेवे तो मई जून में भी आपकी अंडी बुआई कर सका सा। बुआई रे वास्ते सीड कम फर्टी ड्रिल या प्लांटर रो आपने प्रयोग करनो है। कपास रे वाते रेतीली लवणी और सेम वाली मिट्टी ने छोड़ीन सभी प्रकार री मिट्टी में बुआई आपी कर सका सा। बुआऊं पहली बीज ने प्रति किलोग्राम 2-5 ग्राम कार्बेंडाइजियम या कैप्टन दवाओं उपचारित करनो है सा। इमिडा क्लोरोपीट 7 ग्राम, कार्बोसल्फान 20 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज उपचारित करीन बुआऊं पहली फसल ने 40-60 दिन तक रस चूसक कीटों सुरक्षा मिलेगा सा। दीमक को बचाव रे वास्ते 10 लीटर पानी में 10 मिलीलीटर क्लोरोपाइरिफास मिलाइन बीज पर छिड़क देनो है और 30-40 मिनट छाया में सुखाइन बुआई करनी है सा। कपास री संकर प्रजाति री बात करा तो देखो लक्ष्मी HS 45, HS 6, LH 144, HL 1556 ई जो है प्रजातियां बढ़िया है सा। देशी प्रजातियां री बात करा तो देखो H 777, HD 1, HD 107 और LD 327 उगाई सका सा। अमेरिकन देशी और संकर कपास रो क्रमशः 15-20, 10-20 और 4-5 किलोग्राम हेक्टर प्रति बीज आपने पर्याप्त रहेगा सा। देसी कपास या अमेरिकन रेवाते 60x30 सेंटीमीटर और संकर किस्म रेवाते 90x40 सेंटीमीटर पंक्तियों पंक्तियां और पौधों पौधारी बीच में दूरी रखनी है सा। पोषक तत्व प्रबंधन री बात करा तो उर्वरका रो प्रयोग जो है मिट्टी रे परीक्षण री संस्तुति रे आधार पर ही सापाने करना चाहवा सा। कपास री देसी किस्म रेवाते 50-70, नाइट्रोजन 20-30 किलोग्राम और फास्फोरस अमेरिकन एवं देसी किस्म रेवाते 60-80 किलोग्राम, नाइट्रोजन 30 किलोग्राम, फास्फोरस 20-30 किलोग्राम, पोटाश और संकर किस्म रेवाते 150-60 किलोग्राम नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास प्रति हेक्टर की आवश्यकता अपने पड़ेगा सा। अंडे अलावा 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर जिंक रो भी अपने प्रयोग लाभदायक रहेगा सा। अब आप ही रोग और कीट प्रबंधन की बात करा तो कपास में बैक्टीरियल झुलसा रोग और फफूंद जनित रोग लागे अंडे बचाव रे वास्ते जून में 1.25 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, 50% घुलनशील चूर्ण और 50 ग्राम एग्रीमाइसिन प्रति हेक्टर दर 500-600 लीटर पानी में घोलिन 2 छिड़काव करीन 20-25 दिन अंतराल पर आपने करनो है सा। या तो किसान भाई बहना अपी बात की दी कि अनी टाइम पे आपने कशा कशा कृषि कार्य करना है सा। अब घड़ियाड़ी देखा तो माने चाल बारो टाइम भी रो है सा। तो नंदू भाई ने आज्ञा दो सा, राम राम सा।
1: कार्यक्रम खेती में आज अभी आपने सुना, प्रस्तुत करता थे नरेश नागदा, ये आकाशवाणी उदयपुर है।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: आपके मोबाइल में हमारा रेडियो कहीं भी कभी भी। अब आप सुन सकते हैं FM रेडियो लेक सिटी के प्रोग्राम्स देश और दुनिया के किसी भी कोने में।
5: रेडियो लेक सिटी, लेक सिटी।
4: हमारे प्रोग्राम सुनने के लिए आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाना पड़ेगा और डाउनलोड करना पड़ेगा न्यूज ऑन AIR ऐप, यानी NEWSONAIR ऐप। यहीं आपको मिलेगा हमारा चैनल AIR उदयपुर FM लेक सिटी।
6: नॉनस्टॉप म्यूजिक, नॉनस्टॉप फन, इट्स कूलेस्ट वन, कूलेस्ट वन।
4: अब आप इसके आइकन को दबाएं और आनंद लें हमारे मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का कहीं भी कभी भी।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 7 बजे हैं, समय हुआ है सदाबहार नगमों का।

प्रेम पुजारी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में ही, फिल्म है पराया धन।

फिल्म दो दिलों की दास्तां से अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को। अगला गीत हमने चुना है फिल्म राम तेरी गंगा मैली सी। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की।

आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे आकाशवाणी की उदयपुर केंद्र से, जिसे आपने ट्यून किया है मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर।

0: बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
1: बन गया बजट?
0: हाँ
1: 5,000 बच गए।
0: तो नई साड़ी ले ले।
1: ना,
0: पिछले महीने तो ली थी।
1: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
0: बढ़िया,
1: जाओ भाई।
2: आरबीआई कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
5: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
4: अरे वही अपना 60 रुपया।
5: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
4: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
5: और दूसरा?
4: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
5: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
4: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान।
3: हर लेन देन अब है आसान।

आशा भोसले और किशोर कुमार के युगल स्वर में अभी आपने सुना दर्द फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत और फिल्म संगीत का आखिरी नगमा प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म से आवाज़ें हैं बप्पी लहरी और आशा भोसले की।

फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा से अभी आप सुन रहे थे बप्पी लहरी और आशा भोसले के युगल स्वर में ये खूबसूरत सा गीत, और इस गीत के साथ ही सदाबहार नगमे अब यहीं समाप्त होते हैं। ये आकाशवाणी उदयपुर है, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर। सवेरे के 7:45 हुए हैं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत।

जरा आहिस्ता चल, जरा आहिस्ता चल। पंकज उदास की गाय ये गजल अभी आपने सुनी। अगली प्रस्तुति है भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज में।

0: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: इसी के साथ सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी उदयपुर है, सवेरे के 8 बजने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, तत्पश्चात मॉर्निंग न्यूज़ आकाशवाणी दिल्ली से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तन

0: जनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4,399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री

0: तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गयी है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक
0: प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक
4: ये कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं, आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।

0: भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं, आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
1: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
3: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1,25,00,000 रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था, हालांकि दोनों पायलटों को बचा गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
4: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में 2 जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
3: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
5: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोकसत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
3: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 1,25,00,000 रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 8:30 हुए हैं। ये समय है हमारे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन के कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर का।

0: सिर्फ जरूरतें पूरी करना ही जिंदगी नहीं है, कुछ ख्वाहिशों के साथ जीना भी जिंदगी है। यूं तो हम सभी जीते हैं अपने अपनों के लिए, मगर कुछ खुशियां औरों के नाम करना भी जिंदगी है।
1: बहुत सारी खूबसूरत पंक्तियां, बहुत सारे खूबसूरत विचार और आज का प्रोग्राम मिड वीक वाइब्स, नमस्कार, उदयपुर में आपके लिए और हमारे लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज है ज्ञान, प्रेरणा और खेल का ऐसा संगम जो हम सब के दिन को बना देगा सुपर हिट, यानी कि आंचल। आज का सफर बहुत मज़ेदार होने वाला है।
0: बिल्कुल, तो कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त आंचल, और मेरे साथ है
1: ज्योति।
0: और ज्योति, आज है मिड वीक वाइब्स नमस्कार उदयपुर की शुरुआत। हम कर रहे हैं टुडेज डायरी से, जिसमें हम चर्चा करेंगे सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर, साथ ही देंगे कुछ स्थानीय खबरें, और प्रेरणा क्षेत्र में हम बात करने जाएंगे टेसी थॉमस, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया की।
1: और फन फैक्ट सुनना ना भूलें, जिसमें होगी जानकारी फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई, जिसका आगाज होने जा रहा है कल। और साथ साथ होगा अगला सेगमेंट लिसनर्स कनेक्ट, जिसमें

0: जाएंगे टेसी थॉमस, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया की।
1: और फन फैक्ट सुनना ना भूलें, जिसमें होगी जानकारी फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई, जिसका आगाज होने जा रहा है कल। और साथ साथ होगा अगला सेगमेंट लिसनर्स कनेक्ट, जिसमें आज के प्रोग्राम से जुड़ी बातें और जानकारी जो आपको कैसी लगी उसके बारे में आप अपने विचार साझा करेंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। 9462697568 हमारे व्हाट्सएप नंबर रहेंगे। तो सफ़र का आगाज़ करते हैं।

ज्योति कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर हमारे श्रोता सुन रहे आकाशवाणी उदयपुर और एफएम रेडियो लेक सिटी पर एक साथ। विश्व में अनेक संस्कृतियाँ और सभ्यताएँ निवास करती और हर संस्कृति का अपना एक अनोखा इतिहास, दर्शन और जीवन शैली है। और जब इन अलग अलग संस्कृतियों और सभ्यताओं के बीच संवाद होता है तो यही बातचीत शांति ज्योति कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर हमारे श्रोता सुन रहे आकाशवाणी उदयपुर और एफएम रेडियो लेक सिटी पर एक साथ। विश्व में अनेक संस्कृतियाँ और सभ्यताएँ निवास करती और हर संस्कृति का अपना एक अनोखा इतिहास, दर्शन और जीवन शैली है। और जब इन अलग अलग संस्कृतियों और सभ्यताओं के बीच संवाद होता है तो यही बातचीत शांति दिलाता है कि हमारी विविधता ही हमारी ताकत है और सिर्फ एक दूसरे की संस्कृति को समझने से ही हम शांति की ओर बढ़ सकते हैं।

0: दिलाता है कि हमारी विविधता ही हमारी ताकत है और सिर्फ एक दूसरे की संस्कृति को समझने से ही हम शांति की ओर बढ़ सकते हैं। हमें इस दिवस को सिर्फ एक दिन नहीं अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए और हमें विभिन्न संस्कृतियों के बीच सम्मान और समझ का वातावरण बनाना चाहिए।
1: बिल्कुल, सभ्यताओं का मिलन, मजहब, जबान, तौर तरीके जुदा सही, इंसानियत का दिल तो धड़कता है एक सा। तुम गुफ्तगू का सिलसिला बस थाम कर रखो, हर मसले का हल तो निकलता है एक सा। उदयपुर हमारे शहर में कई सारे विदेशी सैलानी आते हैं, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि किसी फॉरेन टूरिस्ट से बात करके आपको उनके कल्चर के बारे में कुछ मज़ेदार या अनोखी बात पता चली हो? हमें शेयर कीजिए अपनी उस मुलाकात के बारे में। या फिर कभी ऐसा हुआ है कि अगर आप सोच रहे हो हम किसी विदेशी जगह जाएंगे और वहाँ की संस्कृति के बारे में जानेंगे, तो अपनी चॉइस, अपनी डेस्टिनेशन और जो चॉइस है किस जगह या किस नागरिक से मिलकर आप वहाँ की संस्कृति के बारे में जानना चाहेंगे, हमें व्हाट्सएप कीजिए। आपके मैसेज हम पढ़ेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, जिसका नाम है लिसनर्स कनेक्ट, और हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं 9462697568।
0: बिल्कुल।

0: ज्योति कार्यक्रम में अब बात करते हैं प्रमुख स्थानीय खबरों की। तो सबसे पहले बात करते हैं माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की ओर से 60 जनजाति विद्यार्थियों को 21 जून से नवंबर तक सुखाड़िया विश्वविद्यालय को फैकल्टी निःशुल्क कोचिंग देगी। TRI निदेशक ने बताया कि विश्वविद्यालय का राजनीति विज्ञान विभाग कोचिंग देगा। इसमें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान एवं भारतीय संविधान, समसामयिकी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता के 80 कालांश होंगे। 15 जून तक छात्र आवेदन डाउनलोड कर विश्वविद्यालय में आवेदन जमा करा सकेंगे।
1: चाय की चुस्कियों के साथ आगे बढ़ते हुए ताज़ा अपडेट्स में ये अपडेट है कि IIT कानपुर की ओर से BTEC और BS पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 24 जून को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 15 जून है और पात्र विद्यार्थियों की सूची 20 जून को जारी की जाएगी। पैटर्न और मार्किंग स्कीम सहित सारी डिटेल्स आप संबंधित वेबसाइट पर, अधिकृत वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। अगली अपडेट है हल्दीघाटी विजय के 450वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज सुबह 7:30 बजे गांधी ग्राउंड में राष्ट्र चेतना संकल्प सभा का आयोजन हो रहा है। 18 जून को हल्दीघाटी विजय दिवस है और इससे पहले 17 जून को

0: ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया पर महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाएगी, जिसके उपलक्ष्य में शहर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। साथ साथ आज उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वर्ष 2026-27 के चुनाव के लिए मतदान है, जो ऑनलाइन हो रहे हैं। देर शाम तक परिणाम घोषित किए जाने की संभावना है।
1: इसी के साथ ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से 19 जून को यूसीसीआई सभागार में प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना विषयक राष्ट्रव्यापी परिलाभ वितरण कार्यक्रम होगा। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने बताया कि योजना के तहत लाभार्थियों को देय परिलाभों का वितरण किया जाएगा और विभिन्न प्रावधान, लाभ और पात्रता पर चर्चा होगी।

0: ज्योति, कल्पना करो एक ऐसा पल जब पूरा विश्व एक साथ सांस रोककर एक ही मैच देख रहा हो। एक गोल पर करोड़ों लोग खुशी से झूम उठे, वहीं दूसरी ओर एक हार पर आंखें नम हो जाए। यही जादू है विश्व कप का। आज के मिडवीक वाइब्स के रोचक तथ्य में हम बात करने जा रहे हैं फीफा विश्व कप से जुड़ी रोचक जानकारियों की।
1: बिल्कुल, इस बार का ये वर्ल्ड कप बहुत खास है और 11 जून 2026 से ये महासंग्राम शुरू होने जा रहा है। और चलिए इस फुटबॉल फीवर में गोता लगाते हैं और जानते हैं फीफा के अनोखे फैक्ट्स। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई 1930 में। पहला वर्ल्ड कप खेला गया उरुग्वे में और उरुग्वे ने ही इसे जीता था अर्जेंटीना को हराकर। और आप जानते हैं उसी ने उसे होस्ट किया और वापस वर्ल्ड कप खिताब भी जीता। पर हैरान करने वाली कहानी होती है 1966 के वर्ल्ड कप से, जब इंग्लैंड के टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले फीफा की असली जूल्स रिमेट ट्रॉफी एक एग्जीबिशन से चोरी हो जाती है। पूरी लंदन पुलिस, स्कॉटलैंड यार्ड सब फेल हो गए। लेकिन जानते हैं इसे किसने ढूंढा? किसी पुलिस वाले ने नहीं, बल्कि पिकल्स नाम के एक पालतू डॉगी ने। उसने झाड़ियों के पीछे अखबार में लिपटी हुई इस सोने की ट्रॉफी को सूंघकर निकाला था। और उसके बाद में जैसे 1983 में रियो डी जेनेरियो में भी फिर से ये चोरी हो गई थी और इसे कभी बरामद नहीं किया गया। कहा जाता है कि चोरों ने इसे पिघला दिया था शायद।
0: बिल्कुल, और ब्राज़ील दुनिया की एकमात्र ऐसी टीम है जिसने आज तक के सभी विश्व फीफा विश्व कप टूर्नामेंट में भाग लिया है और सबसे ज़्यादा यानी 5 बार विश्व कप की ट्रॉफी अपने नाम की है। और सबसे युवा गोलकीपर की अगर हम बात करें तो वो थे पेले, जिन्होंने वर्ष 1958 में मात्र 17 वर्ष की आयु में ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। इसी तरह सबसे उम्रदराज गोलकीपर की अगर हम बात करें तो मिस्र के एसाम एल हदारी ने वर्ष 2018 में 45 वर्ष की आयु में ये मैच खेला था।
1: और आजल 2006 में अंग्रेजी रेफरी ग्राहम पॉल ने क्रोएशिया के जोसेफ शिमुनिक को एक ही मैच में 3 पीले कार्ड दिए। ये एक विचित्र गलती मानी गई और जिसके बाद उन्हें अंततः मैदान से बाहर भेज दिया गया। अवार्ड्स की अगर बात करते हैं तो फीफा में सिर्फ ट्रॉफी नहीं मिलती, यहाँ गोल्डन बूट उसको मिलता है जिसने सबसे ज़्यादा गोल किए हैं, गोल्डन बॉल भी मिलती है बेस्ट प्लेयर को और गोल्डन ग्लव्स मिलते हैं बेस्ट गोल कीपर को। कितने कल्ट अवार्ड्स हैं ना ये।
0: बिल्कुल, और एक मैच में सबसे ज़्यादा यानी 10 गोल का रिकॉर्ड करने वाली टीम है हंगरी नेशन फुटबॉल टीम, जिन्होंने यह रिकॉर्ड वर्ष 1954 में अपने नाम किया था। वर्ष 2010 की मेजबानी साउथ अफ्रीका ने की और वर्ष 2018 की वर्ल्ड कप रशिया में हुआ था जिसे फ्रांस ने जीता। और आखिरी विश्व कप 2022 में कतर में आयोजित हुआ था, यह मैच अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच हुआ था जिसमें अर्जेंटीना विजेता टीम रही और उपविजेता फ्रांस। यह मैच इतिहास के सबसे रोमांचक फाइनल्स में एक माना जाता है।
1: और यही मैच जिसे आप कह रही हैं कतर में हुआ 2022 में फाइनल में, तो इसे लगभग 1.5 अरब दर्शकों ने देखा था, यानी कि दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला खेल कह सकते हैं इसे। और जैसे कि इस बार भी नए नए से रोमांचक मुकाबले ही नहीं होंगे बल्कि खिलाड़ियों के साथ भी उन्हें देखना भी कोई एक खास एहसास से कम नहीं होगा। क्योंकि जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिनकी उम्र 41 साल हो गई है और लियोनेल मेसी जो 38 साल के हैं अपने करियर का 6ठा वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं।

0: एक्साइटेड है। इवन इंडिया में चाहे टीम नहीं खेल रही, लेकिन सारे फैंस जो फुटबॉल फैंस हैं वो एक्साइटेड हैं कि हमें ये मैच देखने हैं, जबकि ये मैच देर रात को प्रसारित होंगे, अर्ली मॉर्निंग में प्रसारित होने वाले हैं। लेकिन मैचों को लेकर भी कुछ रूल ऑफ कंडक्ट चेंज किए गए हैं कि इसमें सभी स्टेडियम्स में दर्शकों को रीयूजेबल पानी की बोतल्स ले जाने पर बैन लगा दिया गया है, जबकि फैंस गर्मी को लेकर चिंता जता रहे हैं, पर फीफा ने हाइड्रेशन स्टेशन, कूलिंग टेंट और अन्य सुविधाओं का भरोसा दिया है। तो ये थोड़ी बहुत राहत की खबर हो सकती है। बाकी फुटबॉल का जुनून हर ओर साफ दिखाई दे रहा है। देखा जाएगा कि आने वाले दिनों में क्या नए उतार चढ़ाव मिलते हैं देखने को।
1: बिल्कुल।

0: श्रोताओं, एक बार फिर से आपको याद दिला दें, मिड वीक वाइब्स में आज आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं लिसनर कनेक्ट सेगमेंट में, और प्रोग्राम से जुड़ी जानकारी हमें बता सकते हैं। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है हमसे जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9462697568।
1: चलिए एक और अपडेट भी हम श्रोताओं से साझा करते हैं आंचल की। सरकारी स्कूलों के खिलाड़ी जो राज्य, जिला और क्षेत्रीय स्तर की विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं और ट्रेनिंग कैंप में भाग लेते हैं ना, उनके लिए बड़ी एक अच्छी सी खबर है कि उनके खुराक भत्ते को बढ़ाकर 250 रुपये कर दिया गया है, जो सत्र 2026-27 से पूरी तरह प्रभावी हो रहा है। और इसके अलावा जो बाकी खेलकूद से जुड़े नियम हैं वो तो पहले वाले ही रहेंगे।
0: और ज्योति, अब घड़ी की ओर देखें तो समय हो चला हिंदी में प्रादेशिक समाचारों का, तो चलते हमारे जयपुर अजमेर केंद्र की ओर और सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: जल्द लौटते हैं, बनी रही है हमारे साथ।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के माध्यम से मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया गया। महिलाओं के नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने के लिए प्रदेश भर में आज नारी चौपाल कार्यक्रमों का आयोजन। और राज्य में गर्मी ने एक बार फिर जोर पकड़ा, श्रीगंगानगर में पारा 46 डिग्री के पार पहुंचा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिनों का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिनों का हो गया है, जिससे वे भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की ओर से आज नई दिल्ली में सरकार के 12

0: एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण और स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने के लिए जरूरी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस पहल से मातृ मृत्यु दर में 86% की कमी आई है।
1: समय रहते हुए इलाज हो सके इसकी व्यवस्था हमने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत किया है। इसके नतीजे भी बहुत अच्छे आए हैं। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 आया है उसमें ये ध्यान में आया, और यूनाइटेड नेशंस के जो हमारी रिपोर्ट है उसमें हमारे को ध्यान में आया कि MMR मैटरनल मोर्टैलिटी रेशियो मातृ मृत्यु अनुपात यह भारत का 86% डिक्लाइन आया।
0: इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने 75 रुपये का एक विशेष स्मारक सिक्का और 5 रुपये का एक डाक टिकट भी जारी किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश भर में आज नारी चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। महिला और बाल विकास विभाग की ओर से ये नारी चौपाल जिला और ब्लॉक स्तर पर लगाई जा रही है। इन चौपालों का उद्देश्य महिलाओं में नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना है। जैसलमेर में नगर परिषद कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला स्तरीय नारी चौपाल रखी गई है। कार्यक्रम में महिलाओं को उनके अधिकारों, कल्याणकारी योजनाओं और आत्मनिर्भरता के अवसरों के बारे में बताया जाएगा। बाड़मेर में होने वाले आयोजन में विभिन्न विभागों के अधिकारी और लाभार्थी महिलाएं भाग लेंगी। अजमेर के सभी 5 ब्लॉक में नारी चौपाल लगाई जाएंगी। इनमें राजीविका से जुड़ी महिलाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनियां हिस्सा लेंगी। हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय सभागार में होने वाली नारी चौपाल में महिलाओं के लिए विभिन्न सत्र रखे गए हैं।
2: नारी चौपाल में विभिन्न सरकारी योजनाओं के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, महिला अधिकार, साइबर सुरक्षा, बाल विवाह की रोकथाम जैसे विषयों पर जागरूकता संवाद सत्र आयोजित कर महिलाओं में निर्णय क्षमता, नेतृत्व कौशल, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। कार्यक्रम में राजीविका समूहों की सदस्य, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, साथिन तथा विभिन्न विभागों की महिला प्रतिनिधि भाग लेंगे। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर।
0: जयपुर के खो नागोरियन क्षेत्र में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। इनमें एक बच्चा भी शामिल है। कल हुई इस आगजनी की घटना में कई अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है। 3 लोगों की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई थी, जबकि अन्य ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने कहा है कि ये फैक्ट्री रिहायशी इलाके में अवैध रूप से चल रही थी। मामले की जांच की जा रही है तथा अवैध रूप से संचालित गोदाम और फैक्ट्री के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। दुर्घटना पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तथा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। ये भारत की भूमि सीमाओं पर माल प्रसंस्करण और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुचारू बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण

0: सुन रहे हैं नमस्कार उदयपुर। वक्त है उस सेगमेंट का जो हर सुबह हमारे इरादों को फौलाद बना देता है, यह इंस्पिरेशन जोन। कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। हम एक ऐसी महिला के बारे में जानेंगे जिन्होंने पुरुषों के दबदबे वाले डिफेंस सेक्टर में वो धमाका किया कि पूरी दुनिया देखती ही रह गई।
1: बिल्कुल, भारत के विज्ञान और रक्षा क्षेत्र में कई वैज्ञानिकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हीं में से एक है भारत की मिसाइल वुमन टेसी थॉमस, जिनका जीवन संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरणादायक कहानी है। टेसी थॉमस का जन्म वर्ष 1963 में केरल के अलप्पुंजा में हुआ था। बचपन से ही इन्हें विज्ञान और तकनीकी में गहरी रुचि थी। इन्होंने इंजीनियरिंग में पढ़ाई पूरी करने के बाद मिसाइल तकनीक में विशेषज्ञता हासिल की और बाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन से जुड़ गई।
0: और जानते हैं आंचल उनके मेंटर कौन थे? खुद हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें देश के सबसे संवेदनशील प्रोजेक्ट अग्नि मिसाइल टीम में शामिल किया।
1: बिल्कुल, टेसी थॉमस ने भारत के प्रसिद्ध अग्नि मिसाइल कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5 जैसी उन्नत मिसाइलों के विकास में योगदान दिया। वर्ष 2009 में अग्नि 4 मिसाइल परियोजना की ये परियोजना निदेशक बनी, जो किसी भी महिला के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी।
0: बिल्कुल, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था हाल ही में कि विज्ञान का कोई जेंडर नहीं होता, वहाँ सिर्फ आपकी मेहनत बोलती है। वो आज DRDO के सर्वोच्च पदों से रिटायर होकर अगली पीढ़ी को तैयार कर रही हैं, और जब जब भारत की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की बात होगी, डॉक्टर टेसी थॉमस का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। सलाम है भारत की इस अग्नि पुत्री को। तो उदयपुर, कैसी लगी हमारी आज की ये इंस्पिरेशनल स्टोरी डॉक्टर टेसी थॉमस की? उनकी जर्नी ने हमें सिखाया कि अगर इरादे मजबूत होना तो कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। उठाइए अपना फ़ोन, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज भेजकर बताइए कि आपकी लाइफ का कौन सा वो मिशन है जिसे पूरा करने के लिए आज आपको डॉक्टर टेसी थॉमस की कहानी से इंस्पिरेशन मिलती है। अपने मैसेज भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, नंबर 9462697।

0: ज्योति श्रोता संवाद में हमारे साथ जुड़ी है हमारी डेली की श्रोता किरण कुमावत। खमागनी करते हुए हमारे साथ बोलती है, मैं टेकरी लिंक रोड किरण कुमावत। नमस्कार, उदयपुर प्रोग्राम हमें अच्छा लगता है और इससे आप जो भी जानकारी हमें देते हैं बहुत अच्छी लगती है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज़ आज होने जा रहा है। हमारे बच्चे लियोनेल मेसी जी को अर्जेंटीना से खेलते और क्रिस्टिलो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल से खेलते उनके लिए बहुत बड़े प्रशंसक हैं। और मैडम जी, इन दोनों का लास्ट वर्ल्ड कप है। साथ ही आप जो भी सिटी अपडेट देती हैं इन्हें बहुत अच्छी लगती हैं।
1: बिल्कुल, हमारे इनबॉक्स में कुछ और मैसेजेस भी हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस जो आए हैं उनमें से ये है, कृतिका भोपालपुरा से कहती हैं कि आप जो बात बता रही थी अभी डॉक्टर टेसी थॉमस की, तो इनसे मुझे बड़ी इंस्पिरेशन मिली और एक बार तो मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लोग सोचते हैं कि साइंस और रिसर्च लड़कियों के बस की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने साबित

कर दिया कि साइंस में कोई जेंडर नहीं होता, तो मुझे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए एक अलग ही बूस्ट मिल गया है। तो शुक्रिया करते हैं कृतिका, आपने हमें मैसेज भेजा और ये मैसेज हमें मिला है विक्रम का, लिखते हैं कि उन्हें प्रोग्राम अच्छा लगा। हम आपको बहुत शुक्रिया कहते हैं।

0: बेशक सुकून मिलता है ना आंचल, जब श्रोता अपने दिल की बातें हमसे साझा करते हैं अपने व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए, तो खुशी की बात है कि एक मैसेज है सुशील यादव, रेनू यादव जी का। इन्होंने कल के प्रोग्राम के बारे में लिखा है कि 9 जून को कार पोलिंग यानी धन और ईंधन की बचत की जागरूकता के बारे में जो जानकारी दी गई इन्हें अच्छी लगी, और इसी क्रम में वर्क फ्रॉम होम पर चर्चा भी समय की मांग के अनुसार उपयोगी लगी। बहुत शुक्रिया, आपने कार्यक्रम सुना और हमें रिप्लाई भी किया।
1: इसी के साथ कमल सुहालका जी हमारे साथ जुड़े हैं और वो बता रहे हैं कि हम सभी रोज़ सुबह आपका प्रोग्राम सुनते हैं, काफ़ी समय से फरमाइशी कार्यक्रम की भी ये डिमांड कर रहे हैं, तो ये हमारी अधिकारियों को हम इसकी जानकारी देंगे। साथ ही फुटबॉल मैच के बारे में इनको जानकारी अच्छी लगी और प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री काल के 15 साल पूरे करने की ये शुभकामनाएँ भी हमें पहुँचा रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन का कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर। ये आकाशवाणी उदयपुर है, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर। सवेरे के 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलवदास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: सुख एवं समृद्धि के लिए प्रकृति से प्रेम करना आवश्यक है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। संदेश छोटा जरूर है लेकिन सब कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला हमें संदेश मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू जी का।
2: जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमा राज।
3: और पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी असमा नाज अंसारी और सलमा सुल्तान।
2: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से।
3: और भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो अब प्रस्तुत है हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। तो विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी जापान के चाय समारोह की
2: जी।
3: तो आज
2: आज अजीत जी, जब चाय की बात

0: रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो अब प्रस्तुत है हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। तो विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी जापान के चाय समारोह की
1: जी।
0: तो आज
1: अजीत जी, जब चाय की बात कल हो ही गई है तो क्यों ना बात करें आज कॉफी की। लेकिन याद रखिए, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की प्रसिद्ध पेय परंपराओं की।
0: जी विमलेश जी, हम परंपराओं पर ही बात करेंगे
1: जी।
0: कल हमने जापान की बात की थी जो एशिया महादेश में है, तो क्यों ना आज चलें एक और महादेश, अफ्रीका।
1: लेकिन बात तो हम कॉफी की कर रहे थे ना।
0: जी बिल्कुल, आज हम चर्चा करेंगे अफ्रीका के एक देश इथियोपिया के कॉफी समारोह की
1: जी।
0: इसे इथियोपियन कॉफी फेस्टिवल भी कहते हैं।
1: अजीत जी, कॉफी की खोज भी तो इथियोपिया में ही हुई थी।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो एक कहावत है ना, जो बोले सो कुंडा खोले
1: जी।
0: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि कॉफी की खोज कैसे हुई थी।
1: जी बताती हूँ श्रोताओं, लगभग 9वीं शताब्दी की बात है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार इथियोपिया के एक गांव में कुछ चरवाहे पास की घाटी में बकरियां चराने के लिए गए थे। उनमें कलड़ी नाम का एक चरवाहा था। उसने देखा कि कुछ बकरियां गायब हैं।
0: तो क्या हुआ फिर?
1: वो उन्हें ढूंढता हुआ जब घाटी के दूसरे छोर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी बकरियां एक विशेष पौधे के लाल फलों को खाने के बाद बहुत सक्रिय हो गई हैं। अजीत जी, अब आप आगे बताइए ना।
0: बताता हूँ। तो क्या हुआ श्रोताओं कि चरवाहे ने जब उस फल को चखा ना, तो उसे भी थोड़ी ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ
1: जी।
0: वो उन फलों को अपने धार्मिक अगुओं के पास ले गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस फल को भूनकर एक पेय बनाया
1: जी।
0: और ऐसा कहते हैं कि इस पेय ने उन धार्मिक अगुओं को रात्रि प्रार्थना के समय जगे रहने में थोड़ी मदद की
1: जी।
0: तो यही पेय आगे चलकर कॉफी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये एक लोक कथा है,
1: लेकिन ये तथ्य है कि कॉफी की खोज इथियोपिया में ही हुई थी। तो श्रोताओं, अब हम चर्चा करेंगे इथियोपिया के कॉफी समारोह की। इस समारोह को स्थानीय भाषा अम्हारिक में बुना कहा जाता है। जापान की तरह ही ये मात्र कॉफी पीने की ही प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये सम्मान, मित्रता और सामुदायिक जुड़ाव का प्रतीक है।
0: तो अब जानते हैं श्रोताओं कि ये समारोह होता कैसे। समारोह शुरू होने से पहले कमरे या आंगन में ताजी घास और पट्टियां बिछाई जाती
1: जी।
0: हैं। फिर क्या होता है विमलेश?
1: सुगंधित धूप जलाई जाती है। अतिथियों के आने के बाद कच्ची कॉफी बीन्स को कोयले की आंच पर धीरे धीरे भुना जाता है ताकि उसकी खुशबू अतिथियों को और अधिक आकर्षित करे।
0: वाह वाह जी।
1: कॉफी बीन्स की खुशबू को फैलाना स्वागत और सम्मान का संकेत माना जाता है।
0: और फिर ऐसा होता है श्रोताओं कि भुनी हुई बीन्स को परंपरागत लकड़ी की ओखली में पीसा जाता है
1: जी।
0: और उन्हें मिट्टी के बर्तन में उबाला जाता है। इस विशेष मिट्टी के बर्तन को ज़ेवेना कहते हैं
1: जी।
0: फिर कॉफी परोसी जाती है।
1: खास बात यह है कि कॉफी 3 चरणों में परोसी जाती है। सबसे पहले सबसे अधिक गाढ़ी कॉफी परोसी जाती है, जिसे खामोशी से पिया जाता है। उसके बाद दूसरा प्याला दिया जाता है
0: जो थोड़ी हल्की होती है। ये इस बात का संकेत है कि अब बातचीत की जा सकती है
1: जी।
0: इस दौरान लोग बातचीत करते हैं, रिश्ते तय होते हैं और यहाँ तक कि टूटे हुए संबंध भी जुड़ जाते हैं।
1: और अंत में तीसरा प्याला दिया जाता है जो आशीष और शांति का प्रतीक माना जाता है। बिना तीसरा प्याला पिए उठना अशिष्टता मानी जाती है। और हाँ, ये समारोह 1 से 2 घंटे तक चलता है। इस दौरान भुने हुए चने या पारंपरिक हल्के नाश्ते भी दिए जाते हैं।
0: तो श्रोताओं, इथियोपिया में कॉफी समारोह में किसी को आमंत्रित करना मित्रता और सम्मान का चिन्ह माना जाता है। इथियोपिया के कॉफी समारोह में देश विदेश से भी लोग आते हैं और इथियोपियाई संस्कृति की भावना को समझते हैं। और हाँ, राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत कॉफी से करना इथियोपिया की परंपरा है
1: जी। हाँ श्रोताओं, तो कैसी लगी इथियोपिया की शानदार कॉफी समारोह की परंपरा, जरूर बताइएगा।
0: और अब आज का प्रश्न सुनिए आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है।
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ,
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है हमको प्यारा।
1: ये कार्यक्रम गीत संगीत प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारत भूमि का गरिमामय उल्लेख मिलता है। कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और भाषाई विविधता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हुए देशभक्ति का आह्वान किया गया है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी है तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, गायन स्वर नेहा और बच्चे, संगीतकार हरभजन सिंह, निर्माण सहयोग कुसुम लता, मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत तू है हमको प्यारा, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

केरल प्रदेश में थेकडी नामक स्थान अपने प्राकृतिक वैभव के लिए खास तौर से जाना जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, भांति भांति के पेड़ पौधों की सुगंध से भरा पूरा वातावरण, पर्वतों की दर्शनीय कतारें और इस जादुई मंजर को और भी अधिक लुभावना बनाती है पहाड़ों के बीचों बीच बनी पेरियार झील।

0: चारों ओर का इलाका पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पेरियार यूं तो टाइगर रिजर्व है, यहां बाघों को संरक्षित किया गया है, मगर यह अपने हाथियों और तरह तरह के दूसरे पशु पक्षियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें देखने के लिए यहां सैलानियों की आवाजाही बनी रहती है। इन्हीं सैलानियों में दिल्ली की रहने वाली सुनीता भी हैं, जो अपनी केरल की सहेली लक्ष्मी के साथ यहां घूमने आई हैं। आइए चलते हैं उनके साथ पेरियार की यात्रा पर।
1: लक्ष्मी लक्ष्मी, वो देखो हाथी, लगता है अपने परिवार के साथ झील में नहाने आया है।
2: अरे
1: और देखो उसका वो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। चलो चलो पास चलकर देखते हैं।
2: हाँ हाँ सुनीता, मगर जरा संभल कर, चोट मत खा जाना।
1: हाँ अच्छा सुनो, जरा मुझे अपना कैमरा देना।
2: हाँ
1: देखो, झील के बीचों बीच सूखे पेड़ों पर बैठी ये चिड़िया कितनी सुंदर लग रही है। मैं जरा इनकी फोटो लेती हूँ। हाँ
2: हाँ हाँ सुनीता, ये लो, ये पकड़ो पकड़ो।
1: क्लिक। लक्ष्मी, इस पेरियार लेक के अंदर से ये सूखे पेड़ कैसे निकल रहे हैं?
2: देखो सुनीता, सन 1895 के आसपास यहाँ बहने वाली पेरियार नदी और उससे मिलने वाली एक छोटी नदी मूलायार पर बांध बनाया गया।
1: अच्छा।
2: जिसे मूला पेरियार बांध कहते हैं। और उसी की वजह से यहाँ पहाड़ों के बीच का जंगल पानी में डूब गया और उसने एक झील का रूप ले लिया।
1: ओह, तो ये पेड़ वो ही पेड़ है जो एक समय झील में डूब गए फिर धीरे धीरे सूख गए।
2: हाँ, और अब जब इनमें तरह तरह के पक्षी झुंड बनाकर बैठते हैं तो नजारा बहुत ही लुभावना हो उठता है।
1: हाँ ये तो दिख ही रहा है।

0: वैसे ये बताओ लक्ष्मी, इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया?
1: इस बारे में तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। अच्छा चलो हम उनसे पूछते हैं, वो यही के कर्मचारी लगते हैं।
0: हाँ चलो
1: चलो। एक्सक्यूज मी।
2: जी हाँ कहिए।
1: जी मैं लक्ष्मी हूँ और ये मेरी दोस्त सुनीता।
0: नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे?
0: हाँ
2: जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा।
1: जी
2: वैसे मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम कमल कुमार है और मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ।
0: जी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कमल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जगह टाइगर रिजर्व कब बनी?
2: देखिए 1933 में इस जगह को पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर स्थापित किया गया था और 1978 में इसे केरल का एकमात्र टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
0: अच्छा।

0: कमल जी,
1: जी
0: क्या इस टाइगर रिजर्व को पेरियार नाम पेरियार नदी की वजह से ही दिया गया है?
1: असल में सुनीता जी, इस जगह की खूबसूरती, यहाँ का वन्य जीवन, ये सब पेरियार नदी की बदौलत ही है।
2: ओह,

0: ये जगह उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु के क्षेत्र में आती है। यहाँ खूब बारिश होती है। और इसीलिए यहाँ के जंगल हरे भरे रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ प्राणियों और वनस्पतियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं।
1: कमल जी, वैसे पेरियार नदी तमिलनाडु से निकलती है ना?
2: हाँ सुनीता, ये निकलती तो तमिलनाडु से ही है, मगर इसका कोई 60 किलोमीटर का हिस्सा ही तमिलनाडु में पड़ता है
3: जी।
1: अच्छा,
2: बाकी करीब 240 किलोमीटर की यात्रा ये केरल के अपने घुमावदार रास्तों पर ही करती है। ये केरल की सबसे लंबी नदी है और मध्य केरल की लाइफ लाइन के तौर पर जानी जाती है।
3: अच्छा? बिल्कुल ठीक कहा आपने।
2: क्योंकि इससे पेरियार टाइगर रिजर्व को ही नहीं बल्कि केरल के एक बहुत बड़े हिस्से को मदद मिलती है, सहारा मिलता है।
1: अच्छा, तो तमिलनाडु में ये निकलती कहाँ से है लक्ष्मी?
2: भाई वो जगह तो मैंने देखी नहीं।
3: मैंने देखी है काफी पहले। वाह, क्या सुंदर दृश्य था उस जगह का। वैसे तमिल तो मुझे आती नहीं, मगर कहते हैं तमिल में पेरियार का मतलब होता है बड़ी नदी।
1: अच्छा।
3: और ये बड़ी नदी यानी पेरियार तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों से समुद्र तल से कोई 1800 मीटर की ऊंचाई से नीचे आती है।
1: अच्छा।

0: अक्सर जब उन पहाड़ियों को छूते हुए बादल गुजरते हैं ना, तो उनके बीच से निकलती हुई पेरियार नदी को देखना एक नायाब मंजर होता है।
1: कमल जी, आपने तो मुझे पेरियार के बारे में बताकर मेरी उत्सुकता को बहुत बढ़ा दिया है। अब तो मैं इस नदी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी।
0: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मगर अब तो शाम हो चली है। अच्छा, वैसे आप लोग ठहरे कहाँ हैं?
2: यही रेस्ट हाउस में।
0: रेस्ट हाउस में
2: जी?
0: तो ठीक है, कल सुबह मैं ठीक 8 बजे आपके पास पहुँचूंगा।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चलिए कल मिलते हैं। ओके
0: ओके,
1: बाय
0: बाय।
1: ओके।

0: सुनीता, 8 तो बजने वाले हैं, कमल जी आते ही होंगे।
1: हाँ।
0: अरे लगता है कमल जी आ गए।
2: गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
0: गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
3: गुड मॉर्निंग।
4: आइए आइए, स्वागत है आपका।
2: तो भाई चलिए, मेरा ख्याल है यहीं लॉन में बैठते हैं।
0: जी
2: आइए, तशरीफ रखिए। हाँ हाँ, तो सुनीता जी आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप पेरियार नदी के बारे में?
4: कमल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पेरियार की केरल के लिए क्या अहमियत है।
2: ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपकी दोस्त लक्ष्मी जी दें, क्योंकि ये केरल की रहने वाली हैं।
0: हाँ, क्यों नहीं। कमल जी, बचपन तो मेरा केरल में बीता था, मगर बाद में मैं दिल्ली

0: ली चली आई।
1: अच्छा,
0: मगर अक्सर केरल आना होता रहा। लेकिन हाँ, जैसा कि पिताजी कहते हैं, उसके अनुसार तो एक समय पेरियार की जो अद्भुत खूबसूरती हुआ करती थी ना, वो अब लुट चुकी है। मतलब ये कि इस नदी में इस कदर प्रदूषण बढ़ चुका है कि इसके अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
2: अच्छा, अब ये बताइए, हम इस समय थेकडी में हैं, अब यहाँ से आगे ये नदी किन किन खास स्थानों से होकर जाती है?
1: देखिए, आगे जाकर घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए ये नदी वांडी पेरियार की गहरी घाटी में पहुंचती है।
2: वांडी पेरियार?
1: हाँ, ये केरल का एक जाना माना व्यापार केंद्र है, जो चाय, कॉफी और काली मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है। और यहाँ कई किस्म के फूलों के खूबसूरत बागीचे भी देखे जा सकते हैं।
2: अच्छा अच्छा, वैसे मैंने सुना है यहाँ इलायची की खेती भी खूब होती है।
1: हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। थेकडी से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वांडन मेडू नाम की जगह है
2: जी,
1: जो दुनिया का सबसे मशहूर इलायची का व्यापार केंद्र है।
2: अच्छा,
1: यहाँ इलायची के बागों को देखने का अपना एक अलग मजा है।
2: ये केरल भी क्या जगह है, चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, इस सब की खेती होती है यहाँ पर, है ना?
0: यही नहीं, पेरियार नदी के आसपास केला
1: आना माना व्यापार केंद्र है, जो चाय, कॉफी और काली मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है। और यहाँ कई किस्म के फूलों के खूबसूरत बागीचे भी देखे जा सकते हैं।
2: अच्छा अच्छा, वैसे मैंने सुना है यहाँ इलायची की खेती भी खूब होती है।
1: हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। थेकडी से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वांडन मेडू नाम की जगह है
2: जी,
1: जो दुनिया का सबसे मशहूर इलायची का व्यापार केंद्र है।
2: अच्छा,
1: यहाँ इलायची के बागों को देखने का अपना एक अलग मजा है।
2: ये केरल भी क्या जगह है, चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, इस सब की खेती होती है यहाँ पर, है ना?
0: यही नहीं, पेरियार नदी के आसपास केला, नारियल, धान और रबर भी खूब उगाए जाते हैं।
1: हाँ, ठीक कहा आपने लक्ष्मी जी। वांडी पेरियार के बाद अपने घुमावदार रास्ते में पेरुमथुराई और कटप्पना नदियों से मिलते हुए ये इडुक्की पहुँचती है।
2: अच्छा,
1: और इडुक्की के बाद इसमें नेरियामंगलम के पास ईडामलयार नामक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी मिलती है।

मान्यता ये भी है कि पेरियार नदी में ही भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसीलिए ये परंपरा चली आ रही है कि हिंदू इस नदी के जल में अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने आते हैं और इस कार्य के लिए पेरियार के तट पर बना चिलामत्तम का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं।

पेरियार के तट पर बसा मलयत्तूर ईसाइयों का बहुत मशहूर तीर्थ है। कहा जाता है कि ईसा मसीह के शिष्य संत थॉमस यहां आए थे और इस जगह को पवित्र किया था। लेकिन यहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और मलयत्तूर की पहाड़ियों की कठिन चढ़ाई करते हैं।

0: मलयत्तर और कलडी से होकर अलवाई पहुंचने के बाद पेरियार दो भागों में बट जाती है।
1: अच्छी।
0: पहली मंगल पूजा शाखा महिला चलागुड़ी नदी से मिलकर लक्षद्वीप सागर में चली जाती है
2: और दूसरी इलूर की औद्योगिक पट्टी से होती हुई अरब सागर में समा जाती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने कमल जी?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी जी। भारी प्रदूषण की वजह से पेरियार की मछलियों की कुछ अहम प्रजातियां तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी हैं।
1: ओह, तो इसका मतलब पेरियार के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है जो देश की दूसरी नदियों के साथ हो रहा है?
0: जी हाँ, मगर दुनिया में बर्बाद करने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं जो पेरियार को उसकी पुरानी खूबसूरती, निर्मलता और खुशहाली वापस दिलाने के मुहिम में लगे हुए हैं।
1: वैसे सच कहें तो ये सब सुनकर मेरी भी इच्छा हो रही है कि पर्यावरण के लिए कुछ करूं।
2: तो करो ना सुनीता।
1: तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, पेरियार से।
0: बिल्कुल।
3: नेक काम में भला देरी किस बात की, और फिर अगर वो काम पर्यावरण की बेहतरी से जुड़ा हो तब तो उसे आज और अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। सुनीता, लक्ष्मी और कमल ने भी ऐसा ही किया है, और अब बारी आपकी और हमारी है। चलिए हम भी पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटें, आज से और अभी से। हम तो तैयार हैं, आप भी तैयार हैं ना?
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम पेरियार नदी। आशा है कि यह कार्यक्रम भी आपको जरूर पसंद आया होगा। लेकिन श्रोताओं, अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा समय भी समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी उदयपुर है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर। सवेरे के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त आंचल। तो स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे भारतीय संगीत जगत के दिग्गज बहुमुखी पार्श्व गायक संगीतकार और पॉप गायक रूप कुमार राठौड़ की। आज इनका बर्थडे है तो आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम समर्पित है रूप कुमार राठौड़ को। तो करेंगे इन्हीं की कुछ बातें और सुनेंगे इन्हीं के नगमे।

भारतीय संगीत जगत में कई ऐसे कलाकार हुए जिन्होंने अपनी आवाज से करोड़ों दिलों को छुआ है। इन्हीं कलाकारों में से एक प्रमुख नाम है रूप कुमार राठौड़ का। ये भारतीय सिनेमा के अत्यंत सम्मानित और बहुमुखी पार्श्व गायक, संगीतकार और लाइव परफॉर्मर है। इनकी आवाज में एक अनूठा ठहराव, सूफियाना अंदाज और शास्त्रीय संगीत की गहराई है जो उन्हें अन्य गायकों से अलग बनाती है।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
2: आरबीआई कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: पापा, लाइए 3,000।
5: क्यों भाई?
4: मेरी पॉकेट मनी।
5: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
4: अरे पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
5: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
4: अपना मोबाइल लाओ।
5: ले ले।
6: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।

कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से, जिसे आपने ट्यून किया है मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में आज हम बात कर रहे हैं मशहूर संगीतकार, गायक, कलाकार, पार्श्व गायक और लाइव परफॉर्मर रूप कुमार राठौड़ की। आज इनका बर्थडे है। रूप कुमार राठौड़ का जन्म संगीत के माहौल से समृद्ध एक परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित चतुर्भुज राठौड़ हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक बहुत बड़े और प्रतिष्ठित उस्ताद थे। इसी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण संगीत रूप कुमार के जीवन के शुरुआती दिनों से ही जुड़ गया था। उनके भाई विनोद राठौड़ भी बॉलीवुड के एक जाने माने गायक हैं।

रूप कुमार राठौड़ ने अपने संगीत सफर की शुरुआत एक गायक के रूप में नहीं बल्कि एक तबला वादक के रूप में की थी। 1980 के दशक में वे भारत के सबसे बेहतरीन तबला वादकों में गिने जाते थे और उन्होंने उस दौर के दिग्गज गजल गायकों जैसे जगजीत सिंह और पंकज उदास के साथ संगीत संगत की थी। तबला बजाते बजाते संगीत की बारीकियों को सीखते हुए धीरे धीरे उनका रुझान गायकी की तरफ बढ़ा।

कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से, जिसे आपने ट्यून किया है मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं पार्श्व गायक रूप कुमार राठौड़ की। रूप कुमार राठौड़ ने फिल्म अंगार वर्ष 1992 में प्रदर्शित, जो कि बॉलीवुड में अपने गायन करियर की शुरुआत करी थी, लेकिन उन्हें देशव्यापी पहचान और अपार सफलता 1997 में आई जेपी दत्ता की फिल्म बॉर्डर के देशभक्ति गीत संदेशे आते हैं से मिली। सोनू निगम के साथ गाया गया यह गीत रातों रात ब्लॉकबस्टर साबित हुआ और आज भी भारत के सबसे लोकप्रिय देशभक्ति गीतों में से एक है। इन्होंने इसके बाद बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक सदाबहार और रोमांटिक गाने दिए। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

रूप कुमार राठौड़, इनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो रूप कुमार राठौड़ का विवाह प्रसिद्ध गजल गायिका सोनाली राठौड़ से हुआ। दोनों की जोड़ी न केवल निजी जीवन में बल्कि संगीत के मंच पर भी बेहद सफल मानी जाती है। दोनों मिलकर देश विदेश में सोनाली और रूप कुमार राठौड़ के नाम से कई गजल और सूफी लाइव कॉन्सर्ट करते हैं और उनकी एक बेटी है रीवा राठौड़, जो खुद एक उभरती हुई गायिका और पियानो वादक है।

मौला मेरे मौला फिल्म अनवर से अभी आपने ये गीत सुना। सूफी संगीत का एक ऐसा अनमोल रत्न जिसने रूप कुमार की गायकी के सूफियाना और रूहानी अंदाज को अमर कर दिया। इन्होंने हिंदी के अलावा गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगू और बंगाली सहित कई क्षेत्रीय भाषाओं में भी अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा है।

रूप कुमार राठौड़ केवल एक गायक नहीं बल्कि भारतीय सुगम संगीत और गजल गायकी की एक धरोहर है। तबला वादन से लेकर पार्श्व गायन तक उनका ये सफर दिखाता है कि यदि कला के प्रति सच्चा समर्पण हो तो सफलता निश्चित मिलती है। उनकी रूहानी आवाज़ आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों को सुकून पहुंचाती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए संगीतकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। इसी के साथ आज के कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत के इस सफर से दीजिए इजाज़त आपकी रेडियो दोस्त आंचल को। नमस्कार।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उदयपुर। श्रोताओं, सुबह के 11 बज चुके हैं। आइए अब सुनते हैं राजस्थानी गीतों से सजा कार्यक्रम घूंघड़ा।

गोखड़ा कार्यक्रम हुनवा वाला सगला ही श्रोतागणा ने संगीता पैसारू राम राम सा गोखड़ा में आपरो स्वागत है। स्वीकार करो मारो प्यार भरो नमस्कार खमा गणी राम राम सा। गर्मी गणी पड़ रही है, तावड़ो भी बहुत जोर पड़ रही है और आपरो और अपने घर वाला रो सबरो ख्याल रखो सा। गर्मी में बाढ़ने मत निकलो, तावड़ा में जत्री वही सके वत्रो धूप और तावड़ा ने अवॉइड करनो छावे, क्योंकि जत्री गर्मी तेज पड़ रही है वत्रो ही पानी री भी जरूरत पड़े है। घर ने भी आप ही ठंडो ठंडो रखा। और मारो एक निवेदन सब हैं कि पेड़ जरूर लगावा, क्योंकि आप ही जतरा पेड़ लगाऊंगा वत्रो यो अपनो जो वातावरण है धरती माँ है सब राजी रहेगा। और आप ही भी यदि गर्मी कम पड़े यदि ठंडी कम पड़े यदि वर्खा घणो नुकसान नहीं करे यदि आप ही भी राजी रहवा सा, तो अना सब बातों रो ध्यान रखता तका। और अणी गर्मी में आपने थोड़ो सो राजी रखवाने वास्ते हुनावा सा आयो राजस्थानी गीत और हुनता री जो मारी ला रही।

जदी गर्मी गणी पड़े हे तो सबने गर्मी लागे हे, चाहे मनक वे, चाहे पशु पक्षी वे, चाहे पेड़ पौधा वे, सब सूख जावे हे। तो थोड़ो सो अभी पुण्य रो काम करा कि थोड़ो सो पानी और थोड़ा सा दाना, जो भी आपके घर में अनाज या दाना वे बालकनी में रख दवा या छत पे रखे वहाँ, तो पक्षी जो वे जड़ा ने प्यास लाग रही वे आइन पी ले वे, तो घणो ही पुण्य रो काम पे वे और गर्मी में एक इंसान ने ठंडक मिले। पेड़ पौधा ने भी जो अपने घर के आसपास है पानी देता रहा तो रूखड़ा होकेगा नहीं और हरियाली तो देगा ही, लारे लारे छाया और ठंडक भी देगा जो सबने सुकून देवे सा। तो हुणा अगलो गीत जो आपने सुकून दे।

0: ना सजाऊं थारे बंधन।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ,
3: 5,000 बच गए।
2: तो नई साड़ी ले ले।
3: ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िया,
3: जाओ भाई।
4: RBI कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
7: हाय यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
6: अरे वही अपना 60 रुपया।
7: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
6: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
7: और दूसरा?
6: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
7: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
6: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान।
5: हर लेन देन अब है आसान।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आप ही होनी हो प्यारा सो राजस्थानी गीत और लारी होनी हो संदेश अणी संदेश वास्ते बाद में आप रो पाछो स्वागत है कार्यक्रम गोखड़ा में। कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा तावड़ा री आप ही बात कर रहा हाँ तो दन्ने जदी आपने निकलनो वे जरूरी वे कि कई काम है जो अटक रियो है जानो इस पड़ेगा तो 10-4 बजारी बीच में जदि बहुत ज़्यादा धूप वे जदि तावड़ो वे जदि सूरज की किरण ही दी पड़ रही वे वदि नहीं निकलनो और बहुत ही ज़रूरी है निकलनो तो आपनो चेहरो हाथ पैर सब ढक कर निकलो। थोड़ो सो सनस्क्रीन लगाई निकलो और लारे थोड़ो सो एक बॉटल पानी ले निकलो ताकि पानी न ज़्यादा ठंडो वेणो जावे न गर्म वेणो जावे। अच्छो पीव तो जसो पानी ले निकलो और थोड़ा दूध गुड़ पानी ने पीता रहना जावे है जड़ियों की गर्मी में शरीर में पानी री कमी नहीं वेवे और डिहाइड्रेशन आप ही बच सका तो आप मारे लारे वण्या रो और आगे कार्यक्रम हुनता रो। हुणावा आपरी पसंद रो यू प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत माने खारी आवाज़ में।

आप सुन रहे हो कार्यक्रम गोखड़ा, राजस्थानी संगीत सजत को यो रूपारूसो कार्यक्रम आप तक पहुँचाई रहा हाँ। अणि तपती गर्मी में आपने थोड़ी ठंडक दिवारे वास्ते तो होना कार्यक्रम रो आखिरी गीत और अंडेला रही संगीता बाई सा ने दो इजाजत आप रो और आप रे परिवार वाला रो आप रे आसपास सब रो ध्यान रख जो और सब बड़ो बात जो मैं आपको कहना चाहूँ हूँ वो यह है कि हमेशा खुश रहो। यदि आप ही खुश रहा तो आप ही सबने खुश रख सका हाँ। यदि आप ही उदास या दुखी में वहाँ तो कन्ने हिम्मत नहीं दे सका हाँ। तो एक जो गृहिणी वे या जो गर्री मुखिया वे वह यदि हिम्मत रखे और खुश रहे तो सारो परिवार या सारो केदा आसपास रो वातावरण खुशनुमा बन जाए। तो हुन तारो मारे लारे राजस्थानी लोक संगीत रो यो कार्यक्रम गोखड़ा और दो इजाजत नमस्कार खम्मा गणी।

मीडियम वेव 266.6 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उदयपुर। श्रोताओं, अभी आपने सुना राजस्थानी लोक संगीत से सजा कार्यक्रम गोखड़ा। आइए अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आपका स्वागत। स्वीकार कीजिए आपकी दोस्त संगीता का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सुगम संगीत ऐसा रूहानी संगीत जो अपनी भावनाओं की स्पष्ट अभिव्यक्ति के कारण दिल की गहराइयों में उतर जाता है। इतनी सरल और मधुर धुनें सुगम संगीत में संजोई जाती है कि हर कोई इन्हें गुनगुनाने लगता है। ऐसा संगीत होता है सुगम संगीत जो सुनने में और समझने में बहुत सरल और मधुर होता है, और शायद इसीलिए हम सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। हम अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं इस संगीत से। कुछ संगीत जैसे शास्त्रीय संगीत थोड़े पेचीदा संगीत हैं, जिनमें राग, लय, ताल, सबका सुर, सबका बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन सुगम संगीत संगीत की ऐसी विधा है जो बहुत ही आसानी से सबको समझ में आ जाती है। सुगम संगीत के अंतर्गत इस कार्यक्रम में आपका स्वागत, और इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंकज उदास की कुछ चुनिंदा गज़लें। तो सुनते हैं, बातचीत हमारी जारी रहेगी, लेकिन सुनते हैं सबसे पहले ये प्यारी सी गज़ल रफ्ता रफ्ता।

0: पापा लाइए 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ।
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: संदेश के बाद फिर से आपका स्वागत है। पंकज उदास जी भारत के प्रसिद्ध गजल गायक। उनका जन्म 17 मई 1951 को जेतपुर गुजरात में हुआ था। अपनी मधुर आवाज़ और भावपूर्ण गायकी के कारण उन्होंने गजल को आम लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गजल गायकी के वो सबसे लोकप्रिय कलाकारों में से एक हैं और सरल और भावनात्मक प्रस्तुति उनकी पहचान है। हिंदी, उर्दू और गुजराती भाषा में भी उन्होंने गायन किया है। सुगम संगीत और गज़ल को नई ऊंचाइयों तक पंकज जी ने पहुंचाया है। तो सुनते हैं उनकी ही आवाज़ में अगली पेशकश।

सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, आपकी दोस्त संगीता के संग। पंकज उदास ने अपनी एक मधुर आवाज़ और भावपूर्ण गजलों से संगीत जगत में एक बहुत अच्छी पहचान बनाई है, विशेष पहचान बनाई है। उनकी गज़लें प्रेम, विरह और जीवन की भावनाओं को सरल शब्दों में व्यक्त करती है। वे सुगम संगीत और गज़ल गायकी के ऐसे सितारे हैं जिनकी रचनाएं आज भी श्रोताओं के दिलों में जीवित हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो उन्हीं की बेहद रूमानी आवाज़ में सुनते हैं अगली गज़ल।

सुगम संगीत का कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप जुड़े हैं आकाशवाणी उदयपुर से और मैं हूं आपकी दोस्त संगीता। श्रोताओं, कार्यक्रम की आखिरी गज़ल पंकज उदास की कुछ चुनिंदा गज़लें हमने आप तक पहुंचाई इस कार्यक्रम के माध्यम से, और आखिरी गज़ल इस कार्यक्रम की हम पहुंचा रहे हैं आप तक पंकज उदास की ही रूहानी आवाज़ में। इसी के साथ संगीता को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाज़त। नमस्कार।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
2: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
1: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
2: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
3: आरबीआई कहता है
0: वित्तीय समझ

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उदयपुर। श्रोताओं अभी हम

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। स्वीकार कीजिए आपकी दोस्त संगीता का प्यार भरा नमस्कार। तेरी मोहब्बत का असर कुछ यूं हुआ है मुझ पर, अब हर दुआ में तेरा नाम शामिल होता है। तुमसे मिलकर ऐसा लगा मुझे जैसे अधूरी जिंदगी को मुकम्मल जहां मिल गया। प्यार का रिश्ता इतना ही खूबसूरत होता है दोस्तों। जब किसी से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, तो हमें सारी दुनिया बहुत खूबसूरत नज़र आती है और एक कंप्लीट फीलिंग हमारे दिल में महसूस होती है जब सामने वाला भी आपको उतना ही प्यार करता है। इतनी खूबसूरत रिश्ते को आज जब हम देखें तो इसका बहुत बिगड़ा हुआ स्वरूप हमारे सामने आता है और ये सोचकर हमारा दिल बहुत घबराता है कि हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारा जो सब कुछ था वो हमने खो दिया है। कहीं ना कहीं वो बिछड़ता जा रहा है, छूटता जा रहा है हमसे। क्योंकि अगर हम आज देखें तो जो एक स्त्री का समर्पण और त्याग था वो कहीं न कहीं खो गया है। जो पुरुष का स्त्री के प्रति सम्मान था वो भी कहीं न कहीं खो गया है। तो बातें हम करते रहेंगे आपसे, पर सुनते हैं सबसे पहले ये एक प्यारा सा गीत लता जी की आवाज़ में। ये गीत हमें उन दिनों की याद दिलाता है जब लड़की की जब शादी होती थी तो एक पल में कैसे उसका पूरा संसार बदल जाता था। सुनते हैं पहले ये ट्रिक और फिर करेंगे आपसे ढेर सारी बातें। आपके साथ हूँ संगीता।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम हम अब तक पहुंचा रहे हैं और बात कर रहे हैं आज के रिश्तों की। अभी अभी हमारे सामने एक बहुत सेंसिटिव केस आया था कि एक लड़की को दहेज के लालच में मार दिया गया। क्या आज भी पढ़े लिखे समाज में, पढ़े लिखे लोगों के बीच ये संभव है? और ये संभव है तो ये कैसे संभव है, क्योंकि हम अब अगर उसी मानसिकता में जकड़े हुए हैं जहाँ पर इतने सालों से थे, तो हमारी प्रगति कहाँ हुई है और कैसे हुई है, इस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारी लड़कियों की जो जर्नी है वो बहुत आगे बढ़ रही है, बट रिश्तों का स्वरूप बदल

रहा है, बिगड़ रहा है, घर परिवार बिखर रहे हैं, इन सब के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है हमारी अपब्रिंगिंग। जब हम लड़कियों को बड़ा करते हैं तो हम उन्हें कभी ये नहीं सिखाते कि घर परिवार प्रायोरिटी होती है, देना एक स्वाभाविक गुण है औरत का, और हम ये उससे उसको वंचित रखते हैं। उसको कहीं ना कहीं हम पढ़ा लिखा के एक अहम की भावना उसमें भर रहे हैं कि ये काम तुम्हारा नहीं है, तुम्हें नहीं करना है। सेम थिंग जब हम लड़कों की अपब्रिंगिंग करते हैं तब भी वही गलती हम कर रहे हैं कि उनमें भी हम अहम भर देते हैं कि लड़के कब घर का काम करते हैं। अगर कोई हाथ बटाता है तो उसे ममाज बॉय कहा जाता है, या कोई बीवी का हाथ बटाता है तो उसे जुरू का गुलाम कहा जाता है। तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ हम थे और कहाँ हम पहुँच रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। स्टे ट्यून विद संगीता एंड सुनते रहिए प्यारे से नगमे।

कर रहे थे हम लड़कियों और लड़कों की अपब्रिंगिंग के बारे में, बिगड़ते रिश्तों के बारे में। श्रोताओं, जब भी कोई परिवार बिखरता है तो उसके साथ दो परिवार और जुड़े हुए होते हैं। आज जो विभत्स रूप हमारे सामने परिवारों का आ रहा है या हमारी संस्कृति का मखौल हमने उड़ा के रखा है, क्या यह सही है कि हम लड़कियों को ये नहीं सिखाएं, उन्हें पढ़ाना लिखाना, समझदार बनाना, ये पैरों पे खड़े करना, ये माता पिता की जिम्मेदारी है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें घर परिवार के सारे काम सिखाना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना सिखाना और उन्हें आज़ादी का मतलब सिखाना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। आज़ादी का मतलब कतई ये नहीं है कि वो बिल्कुल अकेले रहना चाहें। हम बात सिर्फ आज़ादी, आजकल की लड़कियों ने जो समझ रखा है वो सिर्फ कपड़ों को लेकर या रहने सहने को लेकर है, सोकर उठने को लेकर है। उन्होंने कहीं आज़ादी का मतलब मानसिक आज़ादी को नहीं माना है। जबकि जब हमारा पुराना भारतवर्ष था, हमारी संस्कृति और सभ्यता अपने चरम पर थी, तब हम लड़कियों की आज़ादी का मतलब उनकी मानसिक आज़ादी से लेते थे। वो कितनी समझदार हैं, वो कितना पढ़ी लिखी हैं, वो कितना अपने आप को इस्टेब्लिश करती हैं समाज में, परिवार में और अपने ओहदे में भी। आज हम जो उस रिश्ते का मतलब ले रहे हैं या उस बात का मतलब ले रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे की आज़ादी है। इसमें मानसिक आज़ादी कहीं नहीं है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये सोच माता पिता की कि हमारी लड़की अगर पढ़ी लिखी है तो वो कुछ भी नहीं करेगी या उसके साथ वैसा ही आप बिहेव करें कि वो एक लड़का हो, तो फिर हम लड़की को बर्थ ही क्यों दे रहे हैं। हम जो भगवान की बनाई हुई संरचना है उसी के साथ अन्याय कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप मेरी इस बात से भी सहमत होंगे। स्टे ट्यून विद मी, आगे बातें करते रहेंगे। पहले सुनते हैं आंधी फिल्म से ये गीत।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुमारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

कुछ रिश्तों के स्वरूप की। तो श्रोताओं, दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये पहल हमें ही करनी पड़ेगी। हमें बहुत अच्छे से हमारे बच्चों को पढ़ाना है, उनकी अपब्रिंगिंग करनी है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें ये ज़रूर सिखाना है कि एक अच्छा इंसान कैसे बने, एक दूसरे के साथ कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करें, त्याग और परिवार की जो कसौटी होती है कि एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करना, एक दूसरे की बातों को इग्नोर करना और आगे बढ़ना, ये बेसिक सी बातें हम उन्हें ज़रूर सिखाएं। तो आई थिंक कि हम हमारे इस संस्कृति को कि हमारे यहाँ जो रिश्ता होता है वो बहुत मज़बूत होता है और उसको कोई नहीं तोड़ सकता, ऐसा प्यारा सा रिश्ता हम बना पाएंगे। स्टे ट्यून विद मी और सुनते रहिए कार्यक्रम का अगला गीत। हम लेके आए फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से।

फिल्म संगीत हम अब तक पहुंचा रहे हैं और पहुंचा रहे हैं बहुत सारे प्यारे से बॉलीवुड सॉन्ग्स, साथ ही हम बातें कर रहे हैं बिगड़े हुए रिश्तों की और प्यार मोहब्बत की। तो

प्यार के आजकल के प्यार के बारे में बात करना चाह रहे हैं कि पहले का प्यार होता था जो कि हम कहते थे कि 7 जन्मों का प्यार है या ये बंधन इतना अटूट है कि कभी टूटे ना, बट आजकल डिजिटल लव है। एक मैसेज और एक टेक्स्ट के भरोसे ये प्यार हो गया है। थोड़ा सा जो ये हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जो डिजिटल लाइफ हमारी लाइफ में आई है उससे हमारी एरोगेंस बहुत बढ़ गई है। हमें हर मैसेज का जवाब तुरंत चाहिए, हर क्लिक पर, मतलब हमारे हर मैसेज पे लाइक चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्यार में भी हम एक दूसरे को जब रिश्ते में आज़ादी देते हैं तभी ये रिश्ता खूबसूरत बन पाता है। ज़बरदस्ती अगर हम किसी भी रिश्ते में थोपेंगे तो रिश्ता टूटने की कगार पर ज़रूर आ जाता है। थोड़ी सी समझदारी बनाए रखें और सुनते रहें प्यारे प्यारे गीत आपकी दोस्त संगीता के साथ।

ना जाने कैसा रिश्ता है तुमसे, हजारों अपने हैं पर याद सिर्फ तुम आते हो। मोहब्बत में जरा सा भी हिसाब नहीं होता, जो दिल से निभा जाए उसका जवाब नहीं होता। श्रोताओं, ऐसा ही रिश्ता होता है प्यार का, और इसकी खूबसूरती तभी है जब हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे को सम्मान दें। सबसे बड़ी बात होती है प्यार में, जब कोई होते हैं या हम किसी रिश्ते को अंत तक निभाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा वादा खुद से ही करना पड़ता है, लॉयल रहने का। जब हम वफादार होते हैं किसी भी रिश्ते के प्रति और निष्ठा से उस रिश्ते को निभाते हैं, तो ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो आपके सामने झुके ना। सुनते रहिए प्यारे से गीत।

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन। वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है
4: ब्रो? ये फटा है, सुन

0: फतेह पुराने नोट को
1: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
2: वाओ, नया नोट मिलेगा?
0: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
1: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
3: कूल रहो।
4: फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर के संग, और मैं हूँ आपकी होस्ट और आरजे संगीता आपके संग। श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम बात कर रहे थे प्यार की, मोहब्बत की। हर रिश्ते को एक पहचान चाहिए होती है, हर रिश्ते को एक नाम चाहिए होता है, और जब हम किसी से प्यार करते हैं तो खूबसूरत सा एक बंधन आपस में बन जाता है, जो दिल का बंधन होता है। तो आप किसी भी एटमॉस्फेयर में रहें, किसी भी परवरिश में रहें, किसी भी माहौल में रहें, लेकिन आपको सिर्फ़ एक ही बात ध्यान रखनी है कि अपना प्यार कभी नहीं छोड़ना है। बी लॉयल विद योर रिलेशनशिप और स्टे ट्यून विद संगीता।

0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर के साथ। मैं हूं आपकी होस्ट और आरजी संगीता। श्रोताओं, फिल्म संगीत के इस सफ़र को हम यहीं देते हैं विराम। आखिरी नगमा आप तक हम पहुंचाएंगे। मिलना बिछड़ना तो जिंदगी का दस्तूर है, लेकिन ये सफ़र कहीं ख़त्म ना होना चाहिए। और चलते चलते ये दुआ है हमारी कि हर कदम पर मिले आपको खुशियाँ सारी। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं वादों के साथ संगीता को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाज़त। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। सुनते रहिए ये आखिरी गीत फिल्म अनामिका से।
1: चले

वे 266.66 मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उदयपुर। श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आइए अब सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिनों का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिनों का हो गया है। इस अवसर पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की ओर से आज नई दिल्ली में एक विशेष बैठक बुलाई गई है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। इस बीच केंद्र सरकार के 12 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में देश भर के प्रमुख मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश में भी सुबह से ही विभिन्न मंदिरों में पूजा, आरती और प्रार्थना सभाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा की और देश प्रदेश में सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। आज विश्व नेत्रदान दिवस है। नेत्रदान के महत्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया संदेश में सभी से नेत्रदान का संकल्प लेने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि नेत्रदान का निर्णय किसी की अंधेरी दुनिया में नई रोशनी और नई उम्मीद बन सकता है। नेत्रदान दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम हो रहे हैं। लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। प्रदेश में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और आम लोगों को जिम्मेदारी पूर्वक वाहन चलाने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से विशेष यातायात और कानून पालन अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान पुलिस की ओर से चलाए जा रहे इस अभियान के 8वें दिन कल करीब 8,500 वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही की गई। यातायात पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक डॉ बीएल मीणा ने बताया कि इस दौरान वाहनों पर काली फिल्म लगाने, प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करने और नियम विरुद्ध नंबर प्लेट लगाने वालों तथा बिना अनुमति के वाहन मॉडिफाई करने वालों के खिलाफ विशेष कार्रवाई की गई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर रखरखाव प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित कई उपाय शुरू किए हैं। इसके तहत NHAI ने शहरी क्षेत्रों में जल निकासी प्रणालियों के मशीनों के जरिए रखरखाव और साफ सफाई तथा स्वचालित गड्ढा भरने के लिए उपकरणों की तैनाती के व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य आधुनिक प्रौद्योगिकियों और रखरखाव प्रक्रियाओं को अपनाकर राष्ट्रीय राजमार्ग रखरखाव और गुणवत्ता में सुधार करना है। प्रदेश में कल से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार हैं। इसके

0: असर से 14 जून तक जयपुर, अजमेर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के कुछ क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश होने और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। इस बीच आज तेज गर्मी से हाल बेहाल हैं। पश्चिमी हिस्सों में हीट वेव का असर देखा जा रहा है। कल कई सीमावर्ती इलाकों में दिन का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड हुआ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उदयपुर। श्रोताओं, दोपहर 1:05 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत।

0: नारी शक्ति है, नारी सम्मान है, नारी से ही परिवार और समाज की पहचान है। जिस घर में नारी का आदर होता है वहाँ सुख समृद्धि और खुशियों का वास होता है।
1: बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत लाइनों के साथ तुमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत की है दीपिका। और यत्र नार्यत्ते पूजन्ते तत्र रम्यन्ते देवता, तो कहते हैं ना कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। और इसी भावना के साथ हम जो हैं दोनों, आप सभी का स्वागत करती हैं महिला जगत कार्यक्रम में। मैं डॉक्टर रेखा जैन और मेरे साथ हैं
0: दीपिका पूर्व्या। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। बिल्कुल सखियों, आज समय है महिलाओं का, महिलाओं की सशक्तिकरण का। तो रेखा, आज हम बात करेंगे हमारी सखियों से कि महिला सशक्तिकरण के लिए सस्ती दरों पर वित्तीय सहायता कैसे प्राप्त की जा सकती है।
1: बिल्कुल सही बात है कि जब आप ये देखो कि जब भी महिलाओं को कुछ ना कुछ नया करना होता है ना लाइफ में, तो कितनी सारी चीज़ें होती है कि पैसे की कमी तो सबसे पहले ज़रूरी होती है। और जब पैसा यदि आ जाए हमारे पास और हमारा समाज जो है, हमारी सोसाइटी, स्पेशली यदि हम हमारी सरकार की बात करें, तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए हैं।
0: तो कभी कितनी बार होता है कि हम बात करते हैं किसी अपनी सखी से, कहते हैं अपने रिलेटिव की कोई महिलाएँ हैं, स्त्रियाँ हैं, तो वो उनसे पूछते हैं कि आप कुछ करती नहीं हो, घर पे बैठती हो, तो वो बस एक ही बात बोलती है कि पैसा कहाँ है। तो हम आज यही बताएंगे कि हम किस तरीके से अपनी सस्ती दरों पर वित्तीय सहायता किस तरीके से महिलाएं प्राप्त कर सकती हैं। महिलाएं किसी भी समाज और राष्ट्र की प्रगति का आधार होती है सखियो। जब महिलाएँ शिक्षित, आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त होती है, तब परिवार, समाज, देश का विकास तेजी से होता है। लेकिन आज भी अनेक महिलाएं आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती। ऐसे में सस्ती दरों पर वित्तीय सहायता महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में और भी प्रभावी माध्यम बना हुआ है।
1: बिल्कुल सही बात है। और आपको पता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसे PMMY कहा जाता है, इनके द्वारा महिला उद्यमियों को अपना नया व्यवसाय शुरू करने के लिए, पुराने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बिना कैलेट्रल, जैसे कि गारंटी के बिना, ₹10 लाख से 10 करोड़ तक का लोन जो है उपलब्ध करवाया जा रहा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत। और यदि हम स्त्री शक्ति योजना की बात करें, तो ये योजना महिला उद्यमियों को जो राज्य के अंतर्गत हैं उनके व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दर में रियायत देती है। तो आप देखो, सही बात है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब हम कोई भी बिजनेस करने जा रहे हैं, वहाँ पर ऐसा लगता है कि

0: यदि ब्याज देना पड़ेगा तो क्या पता हमारा बिजनेस चला नहीं चला, उतना मैनेज हुआ नहीं हुआ। एक डर मतलब हर महिला में होते हैं जब वो कोई नया व्यवसाय या स्टार्टअप अपना स्टार्ट करती हैं, चाहे युवा महिला हो चाहे कोई उम्र दराज हो, सभी को एक डर तो लगा ही रहता है। और सोचते भी ये हैं कि घर वालों से नहीं लें, उसका रीज़न होता है कि
1: भाई
0: उनकी जो डांट पड़ती है वो बहुत
1: हाँ
0: जबरदस्त पड़ती है।
1: बिल्कुल
0: तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार यदि वास्तव में इस तरह से योजनाओं पे इतना अच्छी योजनाएं बना रही हैं, तो हमको एक चीज़ और होती है कि हम जिम्मेदारी भी होती है हमारे अंदर कि अरे हमें ब्याज देना है,
1: ब्याज
0: भले वो
1: देना
0: कम
1: है
0: देना है,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जब हमारे पास ये जिम्मेदारी होती है कि हमें ब्याज देना है, तो हम ज़्यादा
1: एफर्ट्स
0: जैसे
1: करते हैं उसके, उसको आगे बढ़ाने के लिए पूरी जी
0: हाँ
1: जान से लग
0: बिल्कुल
1: जाते
0: जी जान से लगते हैं और
1: हैं
0: हम पूरा प्रयास करते हैं कि भाई वो ब्याज भी निकल जाए, हमारा मुनाफा भी हो जाए और हम जो है मूल पूंजी उससे भी चुका सकें, है ना।
1: बिल्कुल सखियो, वित्तीय सहायता का अर्थ है कि महिलाओं को कम ब्याज दर पर ऋण, बचत योजनाएं और स्वरोजगार के लिए सहायता प्राप्त होना, जैसा कि अभी रेखा जी ने बताया था, और साथ में व्यवसाय शुरू करने के लिए पूंजी उपलब्ध भी कराता है। तो जब महिलाओं को आसानी से और सस्ती दरों पर ऋण मिलता है, तो छोटे उद्योग, सिलाई कढ़ाई केंद्र, डेयरी, हस्तशिल्प, ब्यूटी पार्लर, ऑनलाइन व्यवसाय तथा अन्य स्वरोजगार की गतिविधियां शुरू कर सकती हैं। इससे उनकी आय तो बढ़ती है और वे परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाने में योगदान देती
0: बिल्कुल,
1: है।
0: बहुत सुंदर आपने बात बोली है। और आपको पता है कि इन सारे व्यवसायों को सुलभ बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए आप मुद्रा योजना के अंतर्गत 50,000 से लेकर 10 लाख तक की वित्तीय आवश्यकताओं के अनुसार आपके लिए ऋण उपलब्ध है। और स्वयं सहायता समूह बनाकर ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वयं सहायता जो समूह है वो आप बनाएं, उसके बाद बहुत ही कम ब्याज दर पर और आसान किश्तों पर बैंक पे ये ऋण जो है उपलब्ध होता है। और इसके लिए बड़ा आसान तरीका है कि वहाँ आवेदन कैसे करें, तो कहाँ से इसकी जानकारी लें, आप आधिकारिक पोर्टल पर सीधे यदि स्टार्टअप इंडिया पर जाकर महिला उद्यमियों के लिए उपलब्ध योजनाओं की जानकारी वहाँ पर आप ले सकती हैं, या फिर अपने नज़दीकी जो भी बैंक हो, जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, जिला उद्योग केंद्र में जाकर मुद्रा लोन या स्टैंडअप इंडिया के बारे में जानकारी जो है आप प्राप्त कर सकती हैं।
1: बिल्कुल
0: और गवर्नमेंट स्किल पोर्टल जिसे हम बात करेंगे, नॉट लास्ट ऑफ द लिस्ट, कि भारत सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी आप वहाँ से प्राप्त की जा सकती है। और आप किसी भी विशिष्ट व्यवसाय जैसे कोई दुकान है, कृषि है, कैटरिंग है, और जो दीपिका ने बताया सारे व्यवसाय जिस तरह के व्यवसाय आप करना चाहती हैं उनके लिए ऋण जो है वो प्राप्त करना चाहती हैं, तो आप बताएं ताकि आसानी से कुछ दस्तावेज हैं आवश्यक दस्तावेजों की लेकर और उसके बाद आप इसे शुरू कर सकती
1: बिल्कुल।
0: हैं।
1: और इन योजनाओं का उद्देश्य सखियों, महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना, उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और सस्ती दरों पर वित्तीय सहायता का सबसे बड़ा लाभ यह है सखियों कि महिलाओं को साहूकारों के ऊंचे ब्याज वाले कर्ज के जाल से बचाना। कम ब्याज पर मिलने पर ऋण उन्हें अपने व्यवसाय को विकसित करने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का अवसर देता है। आर्थिक स्वतंत्रता महिलाओं को अपने निर्णय स्वयं लेने की शक्ति भी प्रदान करता है। और महिला सशक्तिकरण जो है वो केवल आर्थिक विकास का विषय नहीं है, बल्कि यह सामाजिक समानता और सम्मान से भी जुड़ा हुआ है। जब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होती है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार, भविष्य के लिए बेहतर निर्णय ले सकती है, और इससे समाज में लैंगिक समानता को भी बढ़ावा मिलता है और राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित होती है।
0: बिल्कुल सही बात है कि सबसे बड़ी बात तुमने बोली लैंगिक समानता। तो यदि आप देखेंगे महिला पुरुष की जब समानता की बात आती है, तो वास्तव में जब हम प्रगति करते हैं, हम उन्नति करते हैं, तो एक तो हम इक्वलिटी पे आते हैं, दूसरी चीज़ हमारा राष्ट्र, जब हम 50% आबादी हैं, तो यदि हम विकास करेंगे, हम उन्नति करेंगे, हम कुछ काम करेंगे इनफैक्ट, तो आप देखिए कि सच में 50+50 पुरुषों की, तो 100% जब लोग काम करना शुरू करते हैं, तो उस राष्ट्र की प्रगति को कोई भी नहीं रोक
1: कोई
0: सकता,
1: नहीं रोक
0: है ना।
1: सकता, सही बात
0: और हम
1: है।
0: यही चाहते हैं कि इसी तरह से महिला, हमारी जो श्रोता सखियाँ हैं, वे भी उत्तरोत्तर प्रगति करें, वो जो भी करना चाहती हैं। इतनी सारी हमने योजनाएं बताई हैं, उनके माध्यम से आप जाकर के लोन लें और अपने उस व्यवसाय को पंख दें, अपने उस सपने को पंख दें और आगे बढ़ें,
1: बिल्कुल,
0: है
1: और
0: ना।
1: ऊंची उड़ान भरें, हम तो यही
0: बिल्कुल
1: चाहते हैं। तो सखियों, करा दें अपनी सखियों का मनोरंजन।
0: बिल्कुल, और करते हैं, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: तो सखियो, इस प्यारे से गीत के बाद कि हर मैदान में फतेह मिल रही है हमारी सखियों को, हमारी नारी शक्ति को।
1: बिल्कुल सही बात है। और जब हम कोई ना कोई व्यवसाय करते हैं तो डेफिनेटली शुरुआत में थोड़ा दर्द होता है, लेकिन जैसे ही जब आप उसमें ग्रो करते हैं, जब आप कुछ तरक्की करते हैं, तो वास्तव में ऐसा लगता है कि हाँ, मैदान फतह कर लिया
0: फतेह
1: है
0: कर लिया,
1: ना।
0: बिल्कुल।
1: और कई बार ये भी होता है कि तुमने ये देखा है कि मैदान फतह कर लिया।

0: लेकिन महिलाओं के साथ कुछ अलग तरह की चीज़ें भी हैं कि एक ईश्वर ने एक सुंदर सी जो है रचना रचने का अधिकार सिर्फ महिलाओं को दिया
1: महिला
0: है।
1: को दिया।
0: और आप देखेंगे कि जब हम गर्भवती होते हैं या प्रेगनेंसी के समय पर हमें एक ब्रेक लेना होता है, ब्रेक लेना थोड़ा लंबा हो जाता है उस समय पर, कि शुरुआत के 6 महीने से भी यदि आप ब्रेक लेती हैं, 6 मंथ से फिर आपका बेबी होता है, तो एटलीस्ट 2 ईयर्स उस बेबी को आपकी ज़रूरत होती है। तो मान के चलिए कि 3 साल का एक ब्रेक, 3 साल में बहुत सारी चीज़ें बदल
1: चेंजेस आ
0: जाती हैं,
1: जाती
0: है
1: हैं।
0: ना।
1: बिल्कुल
0: सो फिर वापस से अपने करियर को फिर से रीस्टार्ट करना अपने आप में एक तरह से कई बार कई लोगों के लिए तो बड़ा टास्क हो जाता है, और कई लोग उसे बड़े इजीली कर लेते हैं, है ना।
1: और कई लोग पीछे छूट भी जाते हैं,
0: हाँ,
1: है
0: तो
1: ना।
0: ये
1: होता
0: डिपेंड
1: है
0: करता है
1: क्योंकि
0: कि
1: कई लोग ये मानते हैं, कई
0: हाँ
1: हमारी बहनें ये सोचती कि नहीं, हमारा घर परिवार पहले। तो सबका अलग अलग रहता है, लेकिन फिर भी उस करियर में जो आपने छोड़ा है या पीछे रह गए हैं, उसमें पुनः वापसी हो सकती है।
0: बिल्कुल हो सकती है दीपिका, कि यदि आप
1: हाँ
0: ऐसा ठान लें कि नहीं मुझे ऐसा करना ही है। और अभी जैसे हमने पहले भी बात की कि जब हम इक्वलिटी की बात करते हैं महिला और पुरुष की, तो यही है कि वो हमेशा रेगुलरली अपने काम को करते रहते हैं। और यदि हम ये ठान लें कि भाई घर परिवार, बिकॉज देखिए दीपिका, वो महिलाएं भी घर परिवार चलाती हैं जो घर पर रहती हैं, ठीक है, मतलब जो ऑफिस जाती हैं, और वो महिलाएं भी घर परिवार चलाती हैं जो घर पर रहती हैं। तो
1: बिल्कुल
0: डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि वही काम जिसको हम थोड़े लंबे आवर्स में करते हैं या इस तरह से करते हैं, यदि आप जल्दी जल्दी करती हैं तो आप अपने ऑफिस के आवर्स को भी मैनेज कर सकती हैं, और कहते हैं ना दोनों फील्ड पे आप फतह पा सकती
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: सके। और आज हम ऐसे ही विषय पर बात करेंगे जो न केवल महिलाओं के जीवन से जुड़ा है, बल्कि हमारे समाज की प्रगति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और वह है करियर में पुनः वापसी करने वाली महिलाएं।
0: बिल्कुल
1: वह महिलाएं जो हमारे समाज की शक्ति हैं, वे परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन कई बार विवाह, मातृत्व, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की सेवा और अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण अपने करियर में कुछ समय के लिए दूर होना पड़ता है। यह निर्णय अक्सर परिस्थितियों के कारण लिया जाता है, न कि उनकी क्षमता या इच्छा की कमी के कारण।
0: बिल्कुल सही बात है। और जब आप वापस आना चाहती हैं तो आप आ सकती हैं, और लंबा ब्रेक लेने के बाद अपने जो कार्यस्थल है उसमें फिर से आप कदम रखिए, और बहुत सारे बेहतरीन अवसर और विशेष सुविधाएं, जैसे रिटर्नशिप कार्यक्रम कहा जाता है, वो उपलब्ध हैं आपके लिए। आत्मविश्वास और सही रणनीति के साथ आप आसानी से अपनी पेशेवर यात्रा फिर से शुरू कर सकती हैं।
1: बिल्कुल
0: और यदि हम बात करें महिलाओं के लिए विशेष रिटर्नशिप प्रोग्राम की, तो कई बड़ी कॉरपोरेट कंपनियाँ विशेष रूप से ऐसी महिलाओं को नियुक्त करने के लिए रिटर्नशिप या कमबैक प्रोग्राम चलाती है जिन्होंने शादी, बच्चों की परवरिश या अन्य पारिवारिक कारणों में ब्रेक लिया हो। इनमें आपकी रीस्केलिंग और ऑन द जॉब ट्रेनिंग का पूरा सहयोग मिलता है। देखिए,
1: बिल्कुल
0: तुमने देखा होगा कि शुरुआत में जब हम जॉब ज्वाइन करते हैं तब भी हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है हमारा, तो इसी तरह से यदि हम फिर से ज्वाइन कर रहे हैं तो एक ट्रेनिंग, रीट्रेनिंग पहले हो जाए और उसके बाद फिर से आप ज्वाइन कर सकती हैं।
1: कॉन्फिडेंस आ जाता है, वही
0: एक्चुअली
1: है।
0: ये देखिए कि देखो, साइकिल चलाना हमने शुरुआत में सीखा तो उस समय समय ज़्यादा लगता है, ठीक है, हमने 3 साल तक साइकिल नहीं चलाई, लेकिन जब हम चलाना शुरू करते हैं तो थोड़ा धीरे चलाएंगे पर आती तो है।
1: बिल्कुल। और समय बीतने के बाद जब वे महिलाएं दोबारा अपने करियर में लौटने का निर्णय लेती है, तो ये उनके साहस, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प का प्रतीक होता है। उन्हें नई तकनीकों को सीखना पड़ता है, बदले में कार्य वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना भी पड़ता है, और कई बार समाज की नकारात्मक सोच का भी सामना करना पड़ता है उनको।
0: बिल्कुल सही बात है। और ऐसा है, देखिए, यदि आप नकारात्मक बातों की तरफ जाएंगी तो आप ज़िंदगी में कभी भी तरक्की नहीं कर सकती हैं, कि हम क्योंकि आप कुछ भी करिए कोई ना कुछ तो आपको बोलेगा। तो इससे बढ़िया है जब आप बेहतर कर रही हैं, आपको पता है कि फाइनेंसिस से मेरे फैमिली में फ़ायदा हो रहा है, मेरे बच्चों को फ़ायदा हो रहा है, मेरा अपना विकास हो रहा है, तो आप दूसरों की बातों में नहीं लग के अपने उस
1: अपने
0: प्रोफेशन को
1: लक्ष्य को
0: ज़रूर,
1: निश्चित
0: बिल्कुल
1: कीजिए।
0: ज़रूर
1: बिल्कुल
0: करिए, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब बच्चे छोड़ के चले जाएंगे और कई सारी चीज़ें ऐसी हो जाएगी कि कई लोग जिनकी वजह से आपने छोड़ा वो संसार में नहीं रहेंगे, ठीक है, उस समय पर आपको ये ज़रूर दुखेगा कि अरे मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी सुहा कर दी। सो ये जो भूल है वो बाद में जाके बहुत खलेगी। यहाँ हम बात करें यदि कि कई ऐसे करियर में पुनः वापसी करने वाली महिलाओं के लिए ऐसे प्रोग्राम्स जिसमें गोल्डमैन एक सशुल्क कार्यक्रम है जो विभिन्न विभागों में वापसी के अवसर प्रदान करता है। इस तरह से कई सारी जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, वहां पर वैश्विक ब्रांड्स भी जो है महिलाओं की वापसी के लिए विशेष पहल के कार्यक्रम चलाते हैं। और यदि हम बात करें कि महिलाओं के लिए भारत के सबसे बड़े नेटवर्किंग और जॉब जो पोर्टफोलियो है उसमें हरके को हम कहते हैं कि वहाँ पर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और यदि शेवरिक करियर ब्रेक के दौरान

0: रिमोट या हाइब्रिड काम ढूंढने में भी ये आपको मददगार करती है।
1: बिल्कुल, और करियर में लौटने वाली महिलाएं केवल अपनी पहचान नहीं बनाती बल्कि वे अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनती है और ये संदेश देती है कि जीवन में कभी न कभी तो नई शुरुआत की जा ही सकती है यदि मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो और कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है। तो सखियो, कुछ ऐसे उदाहरण हैं हमारे सामने जिनको हम कह सकते हैं कि इन्होंने अपने जीवन में वापसी की और सफलता को प्राप्त करा।
0: बिल्कुल, और यदि आप बात करें इंदिरा नूई की, तो परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी के साथ करियर को जो है उन्होंने संतुलित किया और बाद में दुनिया की सबसे बड़ी पेप्सी की आपको फाउंडर रह चुकी हैं,
1: सीईओ रह चुकी हैं
0: और सफल कॉरपोरेट नेताओं में आप शामिल हुई हैं।
1: बिल्कुल, और किरण मजूमदार की बात करें तो शुरुआती कठिनाइयों और सामाजिक चुनौतियों के बावजूद अपने करियर को नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। और इसी तरह हम अगर मैरी कॉम की बात करें तो विवाह और मातृत्व के बाद भी खेल जगत में एक शानदार वापसी की और कई विश्व खिताब जीते और बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल तक जीता उन्होंने।
0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर, कितने अच्छे अच्छे उदाहरण आपने दिए हमारी श्रोता सखियों को, और उन इन सब उदाहरणों में आप भी बन सकती हैं, आप भी शामिल हो सकती हैं।
1: बिल्कुल, ऐसी हम यही कहेंगे कि ऐसी सखियां जिन्होंने अपना कार्य छोड़ दिया है किसी कारणवश, तो वह अब पुनः उसे शुरुआत करें। कहते हैं ना, जिस दिन सूरज उगे उसी दिन अपना सवेरा स्टार्ट होता है, ऐसे ही हमें भी अपनी शुरुआत करनी चाहिए।
0: एग्जैक्टली, जिस दिन आपकी नींद खुली उसी दिन सवेरा है। सो श्रोता सखियों, बहुत सारी बधाइयाँ जो आप शुरू करना चाहती हैं उनके लिए हम ये प्रेषित करना चाहते हैं बधाइयाँ कि भाई शुरू करें आप उसको और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। हम भी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आइए सुनते हैं ये गीत।

0: तो कितना खूबसूरत सा ये गीत था, है ना। और अभी हम बात कर रहे थे, तुमको पता है दीपिका, कि हमने बात की कि किस तरह से वापसी करें हम अपनी करियर में। तो जब करियर में वापसी की बात आती है तो कई सारे ऐसे जॉब्स भी होते हैं, कई बार समझ में नहीं आता कि क्या जॉब्स कर सकते हैं। तो यदि आप उस दौरान कुछ कुछ सीखती हैं और ब्रेक के बाद डिमांड वाले जो खास जॉब हैं हमारे श्रोता सखियों के लिए, तो वो हम बता दें कि डिजिटल मार्केटिंग का आप जो है जॉब आपको आसानी से मिल सकता है। फिर उसके बाद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसे SEO विशेषज्ञ कहा जाता है, ये आप इजीली कर सकती हैं। कंटेंट राइटिंग, कंटेंट स्ट्रेटेजिक, वर्क फ्रॉम होम, ये सब चीज़ें जो है आप कर सकती हैं। साथ में सोशल मीडिया मैनेजर, ऑनलाइन शिक्षक या शिक्षा विशेषज्ञ, HR मैनेजर या टैलेंट एग्जीबिशन, ग्राफिक या वेब डिज़ाइनिंग, ये सारे काम जो है आप आसानी से कर सकती हैं। और इनमें एक और स्पेशल बात है कि ये सारे काम आप चाहें तो घर वर्क फ्रॉम होम भी स्टार्ट कर सकती हैं।
1: बिल्कुल
0: तो ज़रूरी नहीं है, यदि आपका गर्भावस्था के बाद 1-1.5 साल का बेबी है तो आप घर पे उसे संभालते हुए भी
1: ये सारे
0: काम
1: कार्य कर
0: कर
1: सकते
0: सकती हैं।
1: हैं।
0: और कार्यस्थल में यदि आप जाना चाह रही हैं तो वहाँ वापसी के लिए कुछ, जिसे हम बोलेंगे व्यवहारिक कदमों की बात करें, तो अपने रेज्यूमे को आप अपडेट रखें, अपने ब्रेक में छुपाने के बजाय उसे स्वीकारें। और रेज्यूमे में हाल ही में सीखे गए कोई कौशल है, ब्रेक के दौरान किए गए किसी भी फ्रीलांस काम, ऑनलाइन कोर्स या स्वयंसेवी कार्य को इसमें आप ज़रूर शामिल करें। इस अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें। यदि IT या कॉरपोरेट क्षेत्र में आप जा रही हैं तो आधुनिक टूल्स के कोर्स करें। आप सेल्फ फोर्स रिटर्न्स ऑफ वर्क प्रोग्राम या ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स की मदद ले सकती हैं। और यदि आप नेटवर्किंग की बात करें तो अपने पूर्व सहयोगियों से आप जुड़ें, जो कि सोशल मीडिया पर कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, और महिलाओं के कमबैक समूहों का हिस्सा बने, इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे।
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी दी है रेखा आपने। अब तो सही में हमारी सखियाँ सोच ही लेगी इस कि भाई अब हो गया बहुत ब्रेक और अब आगे बढ़ा जाए।
0: बिल्कुल, हम और भी बातें करेंगे अपनी श्रोता सखियों से, लेकिन पहले सुनते हैं गीत, है ना। और गीत सुनने के बाद फिर हम बात करेंगे कि क्या और हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसी कौन कौन कौन सी हमारी सरकार की योजनाएं हैं जो हमारी महिलाओं को सशक्त बनाती है और हमारी कन्याओं को भी सशक्त बनाती हैं। तो श्रोता सखियों, जुड़े रहिएगा, हमारी रेडियो सेट पर हमारे साथ रहिएगा, स्पेशल सरप्राइज़ है।

0: बिल्कुल, राजकुमार जी आएंगे, महलों में ले जाएंगे, है ना। और
1: हाँ
0: बिटिया रानी, ये कितनी सुंदर लोरी है, जब हम इसे सुनते हैं तो एक अच्छी सी फीलिंग आती है। लेकिन जब भी किसी कन्या का जन्म होता है घर में, तो तुमने देखा होगा कि अलग सी चिंताओं की लकीर सबके माथे पे आ जाती है। उसका रीज़न होता है कि पालना पोसना बड़ा करना, वो तो ठीक है, लेकिन फिर जब बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि भारतीय समाज में बहुत सारी बेटी को चीज़ें दी जाती है, करी जाती है, तो एक अलग सी चिंता जो है वो शुरू हो जाती है कि जब ये बड़ी होगी तो मुझे इतनी सारी चीज़ें उसके लिए करनी है ना।
1: करनी है बिल्कुल।
0: और स्पेशली माँ की बात करें तो उसे तो और ज़्यादा ऐसा लगता है। सो श्रोता सखियो, ऐसी ही कई सारी आपकी समस्याओं का समाधान हमारी सरकार हर जगह आपके लिए लेकर आ रही है,
1: बिल्कुल
0: तो उसमें हम बात करते हैं आपसे कि पहले तो कुछ बात करें कि क्या स्पेशल वो है, हमने बोला था आपको सरप्राइज दे, तो वास्तव में सुकन्या समृद्धि योजना एक तरह से हमारी जितनी भी छोटी बच्चियां हैं उनके लिए सरकार की तरफ से एक तरह से सरप्राइज
1: बहुत ही अच्छी योजना है सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि विशेष रूप से बालिकाओं के लिए बनाई गई है।
0: है।
1: ये एक बचत योजना है और इस योजना के अंतर्गत माता पिता या अभिभावक 10 वर्ष से कम आयु की बेटी के नाम पर खाता खुलवा सकते हैं। यह खाता डाकघर या अधिकृत बैंकों में खोला जा सकता है और योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा विवाह के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
0: बिल्कुल सही बात है। और ये जो समृद्धि योजना है, ये हमारी बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए है स्पेशली। और आप ये देखेंगे कि इसमें जो है अभिभावक, माता पिता जो भी हैं हमारे उस बच्ची के, वो अपनी बेटी की 10 वर्ष की आयु पूरा होने से पहले कम से कम 250 से खाता खोल सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहें तो इसमें 1.5 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हैं, ठीक है। और इसके यदि हम खास बात करें तो इसमें ब्याज दर योजना पर वर्तमान में शानदार 8.2% प्रतिवर्ष का ब्याज जो है वो मिलता है। और निवेश की सीमा की यदि हम बात करें तो एक वित्तीय वर्ष में कम से कम, वित्तीय वर्ष जैसे 31 मार्च से नेक्स्ट 31 तक रहेगा, तो उस समय आप कम से कम 250 और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक इसमें जो है जमा कर सकते हैं। इसकी अवधि की यदि हम बात करें तो ये तारीख से, खाता खोलने की तारीख से 15 साल तक ही सिर्फ इसमें पैसे जमा कराने होते हैं,
1: अच्छा
0: और फिर आप इसे जो है मेच्योरिटी आप 21 साल पर कर सकती हैं। तो आप देखिए कि यदि आप शुरुआत में ही ये कर देती हैं तो कितना फ़ायदा
1: कितना
0: होता है।
1: फ़ायदा होता है। और सखियो, ये बहुत ही अच्छी लाभ वाली मतलब हमारी बेटियों के लिए रहती है। और इस योजना का सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जमा राशि पर आकर्षक ब्याज मिलता है,
0: बिल्कुल
1: साथ ही सरकार समय समय पर ब्याज की दरों की घोषणा भी करती रहती है। तो इसमें नियमित रूप से छोटी छोटी बचत करके आप भविष्य के लिए बड़ी राशि तैयार की जा सकती है। और यह योजना मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए विशेष रूप से लाभदायक रहती है।
0: बिल्कुल सही बात है। और इसकी जो है परिपक्व अवधि है, यह खाता 21 वर्ष की अवधि के बाद मैच्योर होता है। और खाता खोलने के इसमें कुछ नियम है कि बालिका भारत के निवासी होनी चाहिए, उसकी आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए, खाता संख्या एक परिवार में अधिकतम 2 बालिकाओं के नाम पर ही यह खाता खोला जा सकता है। और यदि इसे कहाँ खुलवाएं तो किसी भी नज़दीक भारतीय डाकघर में आप जा सकती हैं, या फिर SBI, PNB, HDFC, इनमें आप अधिकृत बैंकों में आप खाता खोल सकती हैं। इसके लाभ ये भी हैं कि उच्च शिक्षा और निकासी, जब बेटी 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेती है या 10वीं पास कर लेती है, तो उच्च शिक्षा विभाग के खर्चों के लिए जमा राशि का 50% तक

डाला जा सकता है। इस योजना में निवेश की गई राशि पर आपको 80C के तहत 1.5 लाख तक की छूट मिलती है और इससे मिलना वाला ब्याज और जो मैच्योरिटी की जो रकम है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है, ये इसकी सबसे बड़ी बात है। और जैसे ही बेटी 21 वर्ष की हो उसकी शादी के समय खाते को बंद किया जा सकता है और खाता खोलने के लिए सिर्फ कुछ आवश्यक दस्तावेज हैं जिसमें बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का पहचान प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और माता पिता अभिभावक का निवास प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज का फोटो। सिर्फ इतनी सी चीज़ों के साथ आप जो है इस योजना को कर सकती हैं। और श्रोता देखियो, और भी बातें करेंगे हम आपके लिए बेहतरीन अच्छी अच्छी कि कैसे फिटनेस रख सकती हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, पहले सुनते हैं गीत और उसके बाद हम करते हैं बात।

0: बिल्कुल, यदि हम बात करें तो ये जैसे ही तुमने गाना सुना तो जुम्बा डांस की आदत याद आ गई होगी, और ये जो है व्यायाम का आधुनिक स्वरूप है श्रोता सखियों। और जुम्बा या योगिक सूक्ष्म स्थूल व्यायाम का आधुनिक स्वरूप एक हाई एनर्जी फिटनेस वर्कआउट है। ये पारंपरिक व्यायामों और एरोबिक्स का एक फ्यूजन है जो वजन घटाने, हृदय का स्वास्थ्य अच्छा रखने, मानसिक तनाव को कम करने के लिए बेहद लोकप्रिय है।
1: बिल्कुल, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए बहुत कम समय होता था। ऐसे में जरूरत है व्यायाम की जो स्वस्थ के साथ साथ आनंद भी प्रदान करे, तो जुम्बा डांस वो सभी आवश्यकताओं का पूरा करता है। तो हम जुम्बा डांस की शुरुआत कोलंबिया देश से हुई थी और इसे 1990 के दशक में अल्बर्टो ने पेरिस नाम के एक डांसर और एरोबिक्स ट्रेनर ने बनाया था।
0: बिल्कुल, और यदि हम बात करें तो इसमें जुम्बा में लेटिन, हिप हॉप और बॉलीवुड जैसे कई डांस का फॉर्म का मिश्रण होता है और ये आपको वर्कआउट के दौरान बोर नहीं होने देता है। कार्डियो और स्ट्रेस ट्रेनिंग भी इस दौरान होती है कि इस एक्सरसाइज से इसमें लंग्स भी शामिल होते हैं जो मांसपेशियों को टोन को कम करते हैं।
1: बिल्कुल
0: सखियों, और बात करेंगे फिर कभी आपको जुम्बा डांस के बारे में। हमारा कार्यक्रम समाप्त होने को है तो आज्ञा लेते हैं आपसे। नमस्कार।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उदयपुर। श्रोताओं, दोपहर 1:45 हो चुके हैं। अभी महिलाओं ने सुना अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

श्रोताओं, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत। स्वीकार कीजिए आपकी होस्ट और दोस्त संगीता का प्यार भरा नमस्कार।

तेरी मोहब्बत ने मेरी जिंदगी के रंगों को भर दिया है, वरना हम भी कभी बेरंग जिया करते थे। प्यार दोस्तों वो नहीं होता जो हर रोज जताया जाए, प्यार तो वो है जो हर हाल में निभाया जाए। इन्हीं पंक्तियों के साथ आगाज करते हैं फिल्म संगीत का, और फिल्म संगीत की इस सेगमेंट में हम आपके लिए लाए हैं कुछ गीत नई फिल्मों से। पहला गीत हम आपको आप तक पहुंचाने जा रहे हैं अरिजीत सिंह और अरमान खान की आवाज़ में, धुरंधर फिल्म से।

0: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
1: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं नई फिल्मों से चुनिंदा ट्रैक्स। मोहब्बत जिंदगी का सबसे हसीन एहसास है, जो दिल में हो वो तो हर दिन खास है। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं फिल्म तेरे इश्क में से, जिसको आवाज़ दी है AR रहमान और दर्शन रावल ने, साथ में AR रहमान का ही संगीत है। तो सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप हैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता के संग। श्रोताओं, कार्यक्रम का आखिरी गीत

गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं फिल्म धड़क टू से जुबिन नौटियाल और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। इसी के साथ संगीता को दीजिए फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम से इजाज़त। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और मिलते रहेंगे इसी वादे के साथ। नमस्कार।

मिडिल वेव 266 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उदयपुर। श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म संगीत का कार्यक्रम। दोपहर 2 बजकर 10 मिनट होने को है। आइए अब आपको सुनवाते हैं विकास चर्चा। विकास चर्चा में आज का विषय है प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, यह प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत 13 अक्टूबर 2021 को नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इनका उद्देश्य देश में सड़क, रेल, हवाई अड्डे, बंदरगाह, गैस पाइपलाइन और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को एकीकृत योजना के तहत तेजी से विकास करना है। यह एक राष्ट्रीय अवसंरचना विकास योजना है। इसके तहत विभिन्न मंत्रालय एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलकर परियोजनाओं की योजना बनाते हैं ताकि समय और लागत की बचत हो। इस योजना के आने से कई क्षेत्रों में बहुत लाभ हुए हैं।

प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान भारत के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने का एक महत्वाकांक्षी पहल है। इसका उद्देश्य सड़क, रेल, हवाई और जल परिवहन को एक मंच पर लाकर तेज और समन्वित विकास करना है। इससे व्यापार, रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय प्रभाव और निवेश जैसी चुनौतियां भी हैं, फिर भी यह योजना भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का उद्देश्य देश के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक मंच पर लाकर इंफ्रास्ट्रक्चर को समन्वित विकास करना है। इससे परियोजनाओं में देरी कम होती है और संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है। गति शक्ति योजना में केंद्र सरकार के कई मंत्रालय और विभाग जुड़े हुए हैं। इनमें हैं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, पतन पोत वाहन एवं जल मार्ग मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ कोल यानी कि कोयला मंत्रालय और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय।

मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी जैसे कि सड़क, रेल, जलवायु, परिवहन का समन्वय करना इसका मुख्य उद्देश्य है। लॉजिस्टिक की लागत कम करना, उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना, परियोजनाओं को समय पर पूरा करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। यदि किसी क्षेत्र में नया औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाता है तो वहाँ गतिशक्ति के तहत पहले से योजना बनाई जाती है कि वहाँ सड़क, रेलवे स्टेशन, बिजली, गैस पाइपलाइन और इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसे पहुँचेगी। इसके बाद अलग अलग विभागों को बार बार काम नहीं करना पड़ता। इस योजना का सबसे ज़्यादा लाभ यह है कि जहाँ पहले मंत्रालय अलग अलग काम करते थे, वहीं गति शक्ति योजना सभी मंत्रालयों को एक मंच पर लाकर तेज, सस्ता और समन्वित विकास सुनिश्चित करती है। तो ये थी प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। आइए अब जुड़ते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से और

0: सुनते हैं हिंदी में समाचार कुछ ही पलों में। निगम
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की।
0: और सुनते हैं हिंदी में समाचार कुछ ही पलों में।
1: निगम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की।

0: कृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
1: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है, इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।
2: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, उसमें सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है।
3: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
0: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारत के गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2169 करोड़ रूपये की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
5: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
5: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज

0: है, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिस से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का इस कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। दो प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
1: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
2: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि एलपीजी कनेक्शनों को पीएनजी कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
3: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जडमरु मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के 5वें बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इजरायली बलों ने बैरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए।

0: जवाब में ईरान ने भी इजरायली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अफगानिस्तान के कुनार्क होस्त और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए, इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उदयपुर। श्रोताओं, दोपहर 2:30 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं किसान भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत होने वाला हंगले किसान भाई बहन ने नंदू भाई और
1: उपासना जैन रो
0: राम राम, राम, राम सा। देखो किसान भाई बहनों अने कार्यक्रम में मारो जावा सा और आप रे वाते भांत भांतरी जानकारी लेने आवा सा।
1: हाँ
0: चाहे
1: सा।
0: देखो समसामयिक मुद्दा पे जानकारी वो अंडे अलावा देखो समय समय पर मां कृषि विशेषज्ञ जो है वणाने भी अपने स्टूडियो में बुलावा और वणो भी देखो आधुनिक कई कृषि में नवाचार वीरा है वंडी बारे में जानकारी दा सा। अंडे अलावा देखो खेती री और पशुपालन री जानकारी तो दा लारे लारे देखो अपने किसान भाई बहन ने उपासना भाई साहब भी राजस्थानी लोकगीत भी हुनावा सा।
1: हाँ बिल्कुल हुनावा सा भाई। देखो अपनो पिटारो जो है वो खूब भरियो थको है सा, तो भाई कार्यक्रम री शुरुआत करा और पिटारा ने खोला और सबो पहला आप ही जानकारी करावा कृषि यंत्र रा रख रखाव रा बारा में।
0: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। देखो वर्तमान कृषि में आप ही जाना कि देखो उन्नत यंत्र और मशीना जैसे कि ट्रैक्टर है, हैरो है, कल्टीवेटर है, रोटावेटर, लेजर लेवलर है, ड्रिल मशीन है, अणी तरह री नरी जो है बुआई री और पछे जुताई री और अलग अलग मशीना जो है अपने काम में आई रही है सा। और अणा मशीना री देखो बना में अपने सिंचाई पंप भी हैं, चारा मशीन, रिपर, कंबाइन, अलग अलग तरह री मशीना है जी। कुछ तो बिजली चाले और कुछ जो है डीजल पेट्रोल चाले सा। और अणा मशीना रो जो है रख रखाव करनो बहुत ही ज़्यादा जरूरी वे वे सा।
1: हाँ जी बात है सा। देखो भाई बहुत सारा जो हस्तचालित तो औजार वे वणो देखो कटे चोट लागवारी और दुर्घटना री भी संभावना वे वे।
0: बिल्कुल सा।
1: तो अणी जासे भाई जतरा भी हस्तचालित औजार वे तो अपने ये ध्यान रखनो है कि नाना टाबर वे तो वणो दूर रखनो है, आप जिन्हें चलाता नहीं आवे वी भी वंडे हाथ नहीं लगा तो भी कई चोटू बच सके। और अगर आप ही अणा औजारा ने कटे भी खुला स्थान पे अगर रखा तो आपने यो ध्यान रखना भी बाहर रखांगा तो वंडो जो भाग है वो प्लास्टिक रो भाग देखो धूप पूरे कारण खराब भी जाएगा और लोहा रो वेगा तो पानी लागो वण में जंग लाग जाएगा। तो अणा जो औजारा ने वणा ने खुला में नहीं रखना, वणा री धार भी होनी कम भी जावे और जंग लागवा कारण देखो औजार जो है भी बेकार भी जावे।
0: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। देखो अपना औजार घना महंगा आवे सा और बड़ी मशीनर रख रखाव री जटे बात वही रही है तो जैसे कंबाइन हार्वेस्टर है,

0: ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, पावर टीलर, सीड ड्रिल मशीन है, प्लांटर, ई जी मशीन है। अणा ने देखो अपने मशीना ने अक्सर आप ही बाण छोड़ देवा, जणियों कही एक नट बोल्ट पर जंग आई जा, मिट्टी और बारिश पड़वा पर मशीना रा हिस्सा खराब हो जावे और जंग लगवारी आशंका भी रहवे सा। तो आपने कोशिश करनी है कि देखो काम खत्म होवारे बाद अणा यंत्रा ने अच्छी तरह अपने पानी साफ कर लेना है, धोईन पचे धूप में थोड़ी देर सुखाइन पचे कणी छतरे नीचे आपने राखनो है सा।
1: हाँ सा, और देखो वही सके तो जंग बचावा वाली जगह रो आपने प्रयोग करना है। अणियों कही है कि जी यंत्र है या मशीना है ये देखो आप ही लंबे समय तक काम में ले सकांगा, और अगर जगह नहीं है जोटे जगह नहीं वे तो जिस तरह की प्लेट डिस्क है या चेन पुराणो तेल या पचे ग्रीस लगे न पचे वन में छोड़ सका आप ही, तो और आणो कही वेगा कि जंग नहीं लगेगा और सुरक्षा भी जाएगा। और मशीना ने रखती टाइम पे अपने यू भी देख लेना है कि वंडो कोई हिस्सों टूट फूट तो नहीं गयो है, अगर टूट फूट है तो वने तुरंत बदल देनो, जैसे कि नट बोल्ट है या चेन है तो ये कही है कि देखो ढीला वेवा वाला जी कल पुर्जा है वड़ाने भी कस देना है, और अगर भी निकल गया है तो पाछा लग ही देना है। और अणियों कही वेगा कि अगली बार यदि आप ही काम करवा रही टाइम पे बनाने निकालांगा तो उन्हीं एंड टाइम पे कटे अपने समय नहीं खबर बात वेगा, क्योंकि भाई तैयार स्थिति में वेगा तो तुरंत आप ही वने काम में ले सका।
0: बिल्कुल आप ठीक ही रहे हो। अबे देखो जुताई यंत्र रे रख रखाव री बात करा तो देखो जुताई यंत्र ने रातता टाइम कुछ खास विशेष बातों रे ध्यान रखनो, जैसे कि खेत री जुताई व्यवहार बाद यंत्र ने अच्छी तरह साफ करनो है, स्वच्छ करीन पचे अपने वन ने रखनो है। कुछ भागा में देखो मिट्टी लागी रही जावे तो वनी टाइम पे वना ने भी बिल्कुल साफ कर देनो है सा।
1: हाँ सर, देखो वावणी करवारा जी यंत्र वे यानी कि सीट कम फर्टी ड्रिल ने रखता था अपने कुछ वना रखती टाइम पे कुछ आतारो ध्यान रखना पड़े, बीज और खाद ई दो ही जो है नमी सोखने पचे लोहारी जो सीट है वने गले ही देवे।
0: बिल्कुल सर,
1: तो वावणी करती टाइम और खाद डालवारे बाद अणा यंत्र ने अपने अच्छी तरह साफ पानी धोई लेना चाहे, और अगर हवा लगावारो कोई प्रावधान वे तो वन पे हवा भी लग सका आप ही, और पचे धूप में भी वणा ने रखने सुखाई सका हम, और सुखावारे बाद पचे अपने अगर जरूरत नहीं वे तो भाई वणा ने ग्रीस या तेल लगाने पचे रख देना चाहिए ताकि वनारा कल पूर्जा में कणी तरह रो नुकसान नहीं वे वे।
0: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। अबे अभी हार्वेस्टिंग मशीन रो रख रखाव री बात करा तो अणी में भी आपने कुछ ध्यान रखना है, जैसे थ्रेशर ने अच्छी तरह साफ करनो है, एक बार थ्रेशर घुमाइन फसल रा कुछ अवशेष जो है अच्छी तरह निकाल देना है, अणा मशीना ने पूरी तरह पूर्जा ने अपने साफ करनो है, पानी धोनो है और थोड़ी देर अने धूप में रखनो है, और यो भी देख लेना है कि कोई हिस्सों या नट बोल्ट उनको ढीलो तो नहीं है, पेज कटे कोई गिरी तो नहीं गयो है, और अंडी मरम्मत कर देनी है और कुछ जगह पर चिकनो तेल लगे देना है। कुछ कुछ जगह पर आपने यो भी ध्यान रखना है कि ग्रीस भी भर देना है जनी जगह पर ग्रीस पॉइंट है, अंडे अलावा बेल्ट उतार देना है, और कोशिश करनी है कि मशीन ने उठाइन सपोर्ट लगाइन रखना है, टायर ऊपर रहवा खराब नहीं रहेगा और छतरे नीचे भी अपने रखना है सा।
1: हाँ सा, देखो अगर ऐसी कोई सुविधा नहीं वे तो तिरपाल या पछे पॉलीथीन री पन्नी वंडे ऊपर लपेट देनी, और अगर बिजली रो मीटर लागो तक है तो ध्यान रखनो कि वन में पानी बिल्कुल नहीं जावे।
0: बिल्कुल सा,
1: और मशीन ने धोती टाइम भी ध्यान रखना है वने ढाक ने रखनी है, क्योंकि देखो पानी चलो जाएगा तो पानी अगर जटा तक वो सूखेगा नहीं वटा तक करंट आवारो खतरो रहेगा।
0: बिल्कुल सा,
1: और अनेक तरीका

0: चलो जाएगा तो पानी अगर जटा तक वो सूखेगा नहीं, वटा तक करंट आवारो खतरो रहेगा।
1: बिल्कुल सर।
0: और अणि तरीका फसल डालो वाला जो हिस्सा है बनाने वहाँ पे कपड़ा बांध देना, जणियों की कोई भी जीव जंतु वहीं ड्रम में नहीं जा सके। और बिजली रा तार ने लपेट ने पछे वो कणी थैला में बांधने रख देना है।
1: बिल्कुल आप ठीक ही रहे। और अभी देखो छिड़काव करवा वाला यंत्र जटे बात करा तो अन्य भी देखो अच्छी तरह धोइन साफ करीन पचे आपने राखनो है। और नोजल नु पूरो केमिकल निकल जावे अणि वात्रो भी ध्यान राखनो है। लीवियर इत्यादि जितना भी है बनाने भी अच्छी तरह साफ करना है। और केमिकल छिड़काव करवा पर प्लास्टिक या मेटल नु प्रतिक्रिया करीन यंत्र ने अपने खराब कर सके। तो छिड़काव यंत्र ने बच्चों पहलू बनारी पहुँचू भी दूर राखनो है। फिल्टर पेपर में लपेटीन या बांधी नना ने राखी सका। जटे भी ओपनिंग वेवे वणी स्थान पर कीट पतंगा रे घुसवारी संभावना रहे तो अणा यंत्र ने सबों पहले अपने जोड़ना है। जो पाइप इत्यादि टाइट कर लेना है और देखना है कि भी ढीला तो नहीं है। और कसीन बिल्कुल अच्छी तरह वणा ने बंद कर देना है। और अगर
0: हाँ
1: बैटरी है तो वन्ने अपने निकाल देनी है सा।
0: हाँ तो भाई देखो अणि तरीकों किसान भाई जो है अपना कृषि यंत्रारी देखभाल करेगा, वणारो रख रखाव करेगा तो भी लंबा समय तक वणारे काम में आएगा और वणाने बार बार बार बार अंडे ऊपर खर्चो नहीं करना
1: बिल्कुल
0: पड़ेगा
1: आप ठीक
0: सा।
1: कह रहे हो। और कुछ यंत्र और है अंडे बारे में भी अपने किसान भाई बहनों ने जानकारी दांगा। लेकिन पहली आप ही एक राजस्थानी लोकगीत अपने किसान भाई बहनों ने हुणावा सा।
0: हाँ सा।

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
4: ब्रो ये फटा है।
5: सुन, कटे फटे या पुराने नोट को
6: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
4: वाओ, नया नोट मिलेगा?
5: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
6: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
7: तो उपासना भाई सा यो हुने आपी राजस्थानी लोकगीत।
8: हाँ,
7: और लारे लारे संदेश भी हुने सा। और कार्यक्रम में आप ही बात कर रहा है कि देखो, अपना जितना भी कृषि यंत्र है बना रही, टेम टेम पे सफाई करनी है अपने, वना ने अच्छी तरह अच्छी जगह पे भंडारित करीन रागनी, और वना में ग्रीस तेल और जो भी वना में आवश्यकता है और नट बोल्ट वगैरह टाइट करवा रही, वना टेम पे अपने ध्यान रखनो ऐसा।
8: हाँ,
7: अब देखो आप प्रशिक्षण और मशीन चालक री बात करा तो बंडे बारे में बतावा सा।
8: हाँ सा, देखो मशीन आने खरीदते टेम पे अपने एक बात रो ध्यान रखनो चाहे कि मशीन राजी कल पूर्जा है, वना निरीक्षण अपने जरूर कर लेना चाहे कि वनडे बाद जो है मशीनरी जो एक कार्य पुस्तिक आवे वह अपने जरूर दुकानदारू ले लेनी चाहे सा। वणियों कही मशीन ने चलाणो कणी तरीका चलाणो है, वनडो काम किस तरह वेगा, यो सब वणी कार्य पुस्तिका जो वे वन में लिखियो तक हो, तो वो अपने पढ़ने पछे अच्छी तरह समझ लेनो चाहे ताकि कही आप अच्छा तरीका वणी मशीन ने चलाई सका। और वनडे बाद अगर आपने कोई असुविधा वी रही तो भाई देखो आप चलाते टाइम भी पछे अगर आपने कई असुविधा वी रही है तो आप कार्य पुस्तिका में देख सका।
7: बिल्कुल उपासना भाई साहब, आप ठीक ही रहा। कणी भी प्रकार री मशीन रे भाग ने सही तरीका परीक्षण आपने करना जरूरी है, और टेम टेम पे वंडा जी भी कलपुर्जा है वनारी अपने जांच भी करनो जरूरी है। जणियों कही एक मशीन चलाता समय घर्षण ने अपी भी कम कर सका, और मशीन रख रखा और लंबा समय तक वना ने बढ़िया रखी सका सा। और जांच पहले अपने पिस्टन पर अतिरिक्त तेल या सीट ड्रिल रे आसपास लीकेज की जांच जरूर करनी सा, और सही बिंदु रो उपयोग भी सुनिश्चित करनो है। हर बिंदु पर कई प्रकार रा तेल और ग्रीस वेवेसा, चिकनाहट री जांच करनो, बड़ी मशीन रे लारे लारे वनारी समस्या रो निदान करवारो भी एक अच्छो तरीको है सा।
8: हाँ सा, देखो सभी तरह री जी स्वचालित मशीन है वनारे लिए भी सफाई करनो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जिस तरह के कुछ इंजन कंपार्टमेंट हीट MCA चेंजर वे या रेडिएटर और नियंत्रण केंद्र कुछ क्षेत्र है, एक बार उपकरण साफ व्यवहारे बाद किसान ने अच्छी तरह सेवा करनी चाहे और मशीन ने चिकनो कर लेनो चाहे। ऑपरेशन परफॉर्मेंस चेक के अलावा गियर या बेल्ट, लूज नट बोल्ट, ऑयल लीक और सभी पार्ट्स की जांच अपने करनी चाहे।
7: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। अबे आपने किसान भाई बहन ने बतावा चाहूंगा कि कृषि यंत्रारो उचित चुनाव कितर करनो है। तो
8: हाँ
7: देखो, कृषि यंत्रारो चुनाव करता समय अपने कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना है, जैसे कि मशीन खेती में काम ने पूरी अच्छी तरह करवा में सक्षम हैगनी है तो इस अपने वह मशीन खरीदनी है सा।
8: हाँ सा, देखो मशीन में लागवा वाली ऊर्जा या शांति रो भरपूर उपयोग अपने अपने काम में करना चाहे, जणियों कहिए कि वंडी जो कार्य कुशलता है वो ज्यादा ज्यादा अपने मिल सके।
7: बिल्कुल श्री क्रिया, मशीन चलावा रे बात प्रशिक्षित व्यक्ति कोई अपने काम पे रखना चाहवा, अंडे अलावा मशीन रा कलपुजारी बरावट जो है अच्छी तरह वणी विथ की वेणी चाहे ताकि वे लंबा समय तक अपनी प्रयोग कर सका सा।
8: हाँ सा, और यंत्रारी मरम्मत या खर्च कम वे अंडो अपने ध्यान रखनो है और स्थानीय कारीगरों ने ठीक कराई लेना है।
7: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो सा। या तो देखो अपनी कृषि यंत्रारो अपने देखभाल कितर करनी है, वना ने कई कई ध्यान रखनो या बातचीत की दिशा

0: पूर्णिमा पी राजस्थानी लोकगीत
1: हाँ
0: और
1: सर,
0: कार्यक्रम में देखो आप ही आगे बढ़ा तो देखो थोड़ा टाइम में वर्कर और टाइम आवा वालो है और मानसून पूर्व देखो अपनी मशीना जितनी भी है अपने कृषि कार्य में काम आवे वनारू सर्विसिंग जो है वना ने बहुत ही जरूरी है क्योंकि देखो मानसून रे मौसम में नमी जंग वंचावारे बात है यो काम करना जरूरी है। मानसून रे दौरान नमी रे कारण कहीं पर भी प्रकार की मशीन चाहे ट्रैक्टर वो औद्योगिक मशीन वो घरेलू उपकरण वो वना ने शॉर्ट सर्किट जंगू मचावा रे बात है अपने बहुत तरह का काम करना पड़े। अन इस तरह समूह पहली री आपकी बात करा कि मशीनरी संपूर्ण धुलाई अपने करना है, धूल मिट्टी हटाना है, लारे लारे ऑयल और ग्रीस साफ करना है, पुराना चिपचिपका ग्रेस ने साफ करना है क्योंकि देखो नमी रे संपर्क में आई नहीं कठोर भे जावे और नयो ग्रीस लगाना है साथ।
1: हाँ सर। अंडे अलावा देखो जंग रोधी उपचार भी आपने करना पड़ेगा, क्योंकि मानसून में आपने देखा कि हवा में भी नमी वेवे और नमी बहुत ज़्यादा व्यवहार कारण लोहा और धातुराजी पूर्जा है वहाँ पे जंग लागवारी संभावना बढ़ जावे है। तो अनिवासी मशीनरा जतरा भी बाहरी हिस्सा है और नट बोल्ट और एंटी रस्ट स्प्रे वनारे ऊपर या पचे WD-40 रो छिड़काव आपने करनो चाहिए। और पचम जंगू बचावा रे लिए आप देखो वंडाऊ रंग जदि उतर जावे तो वंड पे आपने पेंट भी कर देना चाहे, तो दो ही तरीका वंडी सुरक्षा भी
0: बिल्कुल
1: सके।
0: सान अंडे अलावा देखो मशीन रा चालवा वाला जितना भी पुर्जा है वना ने सुचारू रूपू चलावा वाते पर्याप्त रूपू लुब्रिकेशन भी वना पे जरूरी है और अंडे वाते नया ऑयल पेंट रो उपयोग करनो है। अंडे अलावा सभी जोड़ा पर बेरिंग पे चेन ड्राइव में नयो और अच्छी गुणवत्ता वालों ग्रीस लगानो है सान।
1: हाँ सर, देखो मानसून रे दौरान बारिश और नमी रे कारण बिजली चालो वाली जी मशीना है और मणा में और मोटरा में शॉर्ट सर्किट रो खतरो समूह ज़्यादा भी जावे। अणि वास्ते आपने वायरिंग री चेकिंग करनी
0: बिल्कुल
1: बहुत
0: सान
1: जरूरी है। मशीन रा जतरा भी तार है, प्लग है, स्विच बोर्ड है, वणा ने सेब ने आपने चेक कर लेनो चाहे कि भाई तार कटू कटी तो नहीं गयो है, छिल तो नहीं गयो है। और वन पे वाटर प्रूफ इंसुलेशन टेप जो वे वह अच्छी तरह लगे ने वने ढक देनो या पचे वने बदल देनो चाहे।
0: बिल्कुल उपासना भाईसान। अंडे अलावा फिल्टर और एयर इंटेक री सफाई भी करनो चाहिए वैसा। यदि एयर फिल्टर गंदो है तो इंजन ने पर्याप्त रूप में हवा नहीं मिलेगा जेन्यू मशीनरी कार्य क्षमता कम भई जाएगा सा और ईंधन री खपत भी बढ़ेगा तो अन्य टाइम पे साफ करनो है। अंडे अलावा फ्यूल प्रिंटर फिल्टर में पानी जमा हुआ पर इंजन बंद रह सके तो मानसून उपेली वंडी भी जाँच अपने करनी पड़ेगा।
1: हाँ सर, देखो मशीन जो है भी भारी काम रे दौरान गर्म भी जावे
0: बिल्कुल
1: आने
0: सा
1: वास्ते वहाँ ने कूल वनारो कूलिंग सिस्टम भी सही होना जरूरी है, जिस तरह की रेडिएटर और कूलेंटर वास्ते रेडिएटर ने साफ कर लेनो और जांच लेनो कि कूलेंटर जो सही स्तर वो सही है कि नहीं है। अगर कूलेंट पुरानो भी गयो है तो उन्हें बदल देना है और एंटी फ्रीज कूलेंटर इस्तेमाल करना चाहे जो कि जंगू भी बचो थे कोरे वही।
0: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। अपनी मशीन जो है वन्ने सही स्थान पर रखना भी जरूरी है और वन्ने देखो स्थान अशो वेणो चाहे कि मशीन ने हमेशा कहीं सूखी ढकी थकी और हवादार जगह जैसे कि टीन शेड है वन्ने नीचे रखनो है। अंडे अलावा वन्ने कवर करीन भी राखी सका, तिरपाल है वाटरप्रूफ कवर है वो वनी ऊपर डाल सका।
1: हाँ
0: और
1: सर,
0: अंडे अलावा देखो कृषि मशीन रा अपने कई हफ्ता तक वनाने खड़ो रखनो है तो वनाने जेक पे खड़ो करनो जेणु कहिए कि टायर पे दबाव नहीं पड़ेगा और भी खराब भी नहीं बेगा सा।
1: हाँ सर, देखो हाइड्रोलिक सिस्टम और बैटरी भी जांच करनी बहुत ज़रूरी है। सभी हाइड्रोलिक पाइप और सील्ड जांच कर लेनी है और पाइप में अगर दरारा है तो वड़ा ने तुरंत बदल देना है, और क्योंकि देखो पानी जो है वो हाइड्रोलिक तेल में मिलने वने खराब कर सके है। और मशीन में लगे थका रबर बेल्ट भी कस लेना है और वड़ा री स्थिति री जाँच भी कर लेनी है, क्योंकि नमी रे कारण रबर ढीला भी वही जावे और टूट भी जावे है।
0: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि देखो आपने तो अपने किसान भाई बहना ने यही कहना है कि देखो मानसून आवा वालो है और आपने कृषि कार्य में कई तरह की कई तकलीफ नहीं हुए। अंडे बात है देखो पहले से आपने मशीना ने तैयार कर लेनी है वनारे सर्विसिंग कर लेनी है और वना में कहीं कहीं चीज़ की जरूरत है वनने भी अपनी देखी वनडो सही रिपेयरिंग कर देनी है सा।
1: हाँ जी बात है सर। नंदू भाई देखो भाई जानकारी आप ही खूब करावा हाँ, और हाथे हाथे गीत रो दौर भी चालतो रहे
0: बिल्कुल
1: है,
0: सा
1: तो भाई अभी एक और गीत होना ही था सा।
0: हुणावा सा।

0: तो उपासना भाई यो तो हुणियों आपी राजस्थानी लोकगीत और अबे घड़ियाड़ी देखा तो आपने चालवारो टाइम बेरो है तो किसान भाई बहनों अगेला सा राम
1: राम
0: राम
1: राम
0: सा।
1: सा।

0: मीडियम वेव 266.66 मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उदयपुर। श्रोताओं, अभी आपने सुना कृषि जगत कार्यक्रम। आइए अब जुड़ते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस अवसर पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को मंजूरी दी है।
2: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन

0: होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। दो प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2,169 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और कई केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। कई विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं सहित एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि उन्होंने होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास अमरीकी हमलों के जवाब में आज जॉर्डन में एक अमरीकी अड्डे और खाड़ी में 21 अन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि होर्मुज जलडमरू मध्य में स्थित केशम द्वीप और सिरिक बंदरगाह शहर पर हमला किया गया। इस बीच जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने भी हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने ईरान से अल अजराक की और दागी गई 5 मिसाइलों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। अप्रैल में दोनों देशों के बीच हुए युद्ध विराम समझौते के बाद यह बड़ी झड़प है। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया आई। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमेरिका के 5वें बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत ने वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वाशिंगटन में है। अफगानिस्तान के कुनार खोस और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए, इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दमन के लिए पाकिस्तान के अधिकारियों के हिंसक कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उदयपुर। श्रोताओं, दोपहर 3:05 हो चुके हैं। हमारी दोपहर सभा के प्रसारणों को यहीं देते हैं विराम। साय 5 बजे सायकालीन प्रसारणों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का व्यापक केंद्र है। शाम 5 बज रहे हैं। ये वक्त हमारी इस सांध्यकालीन सभा के आरंभ होने का। हमारे एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज के साथी भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए अब सुनते हैं युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: मंजिलें खुद चल कर नहीं आती, ये सफ़र हमें तय करना पड़ता है। सुबह का उजाला पाने के लिए रात के अंधेरों से लड़ना पड़ता है। हर मोड़ पर मिले इम्तिहानों में खुद को आजमाना पड़ता है। ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए कई तूफानों से गुजरना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं खूबसूरत पंक्तियों के साथ हम स्वागत करते हैं आप सभी का आपके और हम सभी के पसंदीदा कार्यक्रम युवावाणी में। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त मानसी और मेरे साथ है
1: गीतांजलि।
0: तो स्वीकार करें हमारा प्यार भरा नमस्कार।

0: दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कंगला फोर्ट की, मणिपुर की ऐतिहासिक धरोहर की। एंग्लो मणिपुर वॉर के इतिहास से जुड़ा कंगला फोर्ट भारत के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में से एक माना जाता है। यह मणिपुर की राजधानी इम्फाल में स्थित है और सदियों तक मीति राजाओं की राजधानी तथा शासन का मुख्य केंद्र रहा। कंगला शब्द का अर्थ मीति भाषा में सूखी भूमि या पवित्र भूमि माना जाता है। यह केवल एक किला नहीं बल्कि मणिपुर की संस्कृति, परंपरा, राजनीति और धार्मिक आस्था का प्रतीक है।
1: जी दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार कंगला फोर्ट की स्थापना लगभग 33 AD में राजा नोंगडा लेरेन पखनबा ने की थी। कई सदियों तक यह मीति साम्राज्य की शक्ति का केंद्र बना रहा। यह किला अनेक युद्धों, राजनीतिक संघर्षों और विदेशी आक्रमणों का साक्षी रहा। 1891 के एंग्लो मणिपुर वॉर के बाद ब्रिटिश सेना ने इस किले पर कब्जा कर लिया और इसके बाद कई हिस्सों को नष्ट भी कर दिया गया। बाद में इसे आसाम राइफल्स के नियंत्रण में रखा गया। साल 2004 में कंगला फोर्ट को आम जनता के लिए दोबारा खोला गया, जिसके बाद यह मणिपुर के गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी बन गया।
0: कंगला फोर्ट की वास्तुकला मीति शैली और प्राचीन भारतीय निर्माण कला का अद्भुत उदाहरण मानी जाती है। यह किला पहले विशाल दीवारों, गहरी खाइयों और सुरक्षा द्वारों से घिरा हुआ था। किले के अंदर राजमहल के अवशेष, प्राचीन मंदिर, धार्मिक स्थल, जलाशय, संग्रहालय, पारंपरिक सभा स्थल आज भी मौजूद हैं।
1: जी दोस्तों, कंगला फोर्ट की सबसे प्रसिद्ध पहचान कंगला शाह स्टैचूज है। ये विशाल ड्रैगन लायन आकृतियाँ शक्ति, सुरक्षा और साहस का प्रतीक भी मानी जाती है। ब्रिटिश शासन के दौरान इन्हें नष्ट तो कर दिया गया था, लेकिन बाद में दोबारा पुनः निर्माण भी किया गया। आज ये मणिपुर की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
0: दोस्तों, कंगला फोर्ट केवल एक सैन्य किला नहीं था बल्कि ये धार्मिक गतिविधियों का भी प्रमुख केंद्र था। यहाँ कई पवित्र मंदिर और देवस्थल बनाए गए थे जहाँ राजाओं द्वारा धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे। मीति समुदाय आज भी

0: स्थान को अत्यंत पवित्र मानता है। कई पारंपरिक उत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए जाते हैं।
1: जी दोस्तों, अगर इसके हम कुछ रोचक तथ्य की बात करें तो कांगला फोर्ट लगभग 2000 वर्ष पुराने इतिहास से जुड़ा माना जाता है। यह कभी इंफाल रिवर के दोनों किनारों पर फैला हुआ था। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने की चर्चा भी हो चुकी है। कांगला फोर्ट मणिपुर की स्वतंत्रता और शाही विरासत का प्रतीक भी माना जाता है। यहाँ की प्राचीन दीवारें और स्थापत्य कला उस समय की इंजीनियरिंग स्किल्स को दर्शाती है।
0: दोस्तों, आज कांगला फोर्ट मणिपुर का एक प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। यहाँ आने वाले पर्यटक प्राचीन इतिहास, मीति संस्कृति, धार्मिक विरासत, प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक वास्तुकला को करीब से देख सकते हैं। यह स्थान खासकर हिस्ट्री लवर्स, फोटोग्राफर्स और रिसर्चर्स के लिए बेहद आकर्षक माना जाता है।
1: जी दोस्तों, कांगला फोर्ट केवल ईंट और पत्थरों से बना एक किला नहीं बल्कि मणिपुर की आत्मा, संस्कृति और गौरव का भी प्रतीक है। इसकी प्राचीन वास्तुकला, वीरता की कहानियाँ, धार्मिक महत्व और ऐतिहासिक संघर्ष इसे भारत की सबसे महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट्स में शामिल करते हैं। सदियों पुराना यह किला आज भी मणिपुर के गौरव और पहचान की दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: जी दोस्तों, अब हम आपसे बात करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर डेयरी सेक्टर। तो दोस्तों, आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। डेयरी सेक्टर केवल दूध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब यह एक बड़ा स्टार्टअप और अपन बोल सकते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बन चुका है। गांवों से लेकर शहरों तक युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए डेयरी सेक्टर रोजगार और आत्मनिर्भरता का मजबूत माध्यम बन रहा है। भारत सरकार भी डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिससे नए स्टार्टअप फाउंडर्स और डेयरी एंटरप्रेन्योर्स को फंडिंग, सब्सिडी, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग मिल रही है।
3: दोस्तों, भारत में करोड़ों परिवारों की आय का मुख्य स्रोत डेयरी है। खासकर ग्रामीण महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का बड़ा साधन बना है। आज दूध, दही, पनीर, घी, फ्लेवर्ड मिल्क, ऑर्गेनिक डेयरी प्रोडक्ट्स और A2 मिल्क जैसे क्षेत्रों में नए स्टार्टअप तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसी के लिए सरकार की भी कुछ संस्थाएं, जैसे कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, यह भारत की सबसे बड़ी डेयरी विकास संस्था है, जिसे 1965 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य किसानों और डेयरी सहकारी समितियों को मजबूत बनाना है।
2: जी दोस्तों, अगर हम बात करें सरकार की प्रमुख डेयरी योजनाओं के बारे में, तो सबसे पहली आती है इसमें नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, NPDD। यह योजना डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए चलाई जा रही है। इसके तहत मिल्क चिलिंग प्लांट्स, मिल्क टेस्टिंग लैब्स, कोल्ड स्टोरेज प्रोसेसिंग यूनिट, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य किसानों को ऑर्गेनाइज्ड मार्केट से जोड़ना और उनकी इनकम को बढ़ाना है। और अगर इसी में हम दूसरी बात करें तो डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट।
3: सरकार डेयरी एंटरप्रेन्योर्स को लोन और सब्सिडी देती है, ताकि वे डेयरी फार्म, मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट, पनीर यूनिट, आइसक्रीम प्लांट, कैटल फीड बिजनेस जैसे स्टार्टअप शुरू कर सकें। साथ ही राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इस योजना का उद्देश्य देश

0: गायों की नस्ल सुधारना और दूध उत्पादन बढ़ाना है। इसके तहत आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ब्रीड इम्प्रूवमेंट, काउ हेल्थ सर्विसेज, इंडिजीनियस कैटल प्रमोशन पर काम हो रहा है।
1: जी दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें तो वो आता है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, AHIDF। इस योजना में डेयरी प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन बिजनेस के लिए करोड़ों तक का लोन भी दिया जाता है। इससे मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डेयरी यूनिट्स स्थापित भी किए जा सकते हैं। और अगर स्टार्टअप फंडिंग और हम सहायता की बात करें तो आज डेयरी स्टार्टअप्स को कई प्रकार की फंडिंग मिल रही है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। और इस योजना के तहत प्रोटोटाइप बनाने के लिए ₹20 लाख तक ग्रांट, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए 50 लाख तक की सहायता भी दी जाती है।
0: साथ ही मुद्रा लोन स्कीम भी है जिसके तहत छोटे डेयरी बिजनेस शुरू करने के लिए कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है। जैसे शिशु, किशोर और तरुण कैटेगरी में लोन उपलब्ध है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम महिलाओं और SC ST एंटरप्रेन्योर्स के लिए विशेष लोन सुविधा दी जाती है। डेयरी सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी, AI आधारित डेयरी सेवाएँ, अमूल ने सरलाबेन AI शुरू किया है जो लाखों डेयरी फार्मर्स को पशुओं की देखभाल, वैक्सीनेशन, फीडिंग, ब्रीडिंग, गवर्नमेंट स्कीम्स की जानकारी देता है।
1: जी दोस्तों, अगर हम बात करें राजस्थान में डेयरी विकास की तो राजस्थान भारत का दूसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है। यहाँ सरकार और NDDB मिलकर हजारों गांवों को डेयरी कोऑपरेटिव से जोड़ रहे हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 के तहत बेहतर मिल्क प्रोक्योरमेंट, ट्रांसपेरेंसी, फार्मर्स इनकम ग्रोथ, सस्टेनेबल डेयरी फार्मिंग पर काम किया जा रहा है।
0: साथ ही दोस्तों, बात करें कि डेयरी स्टार्टअप्स में क्या अवसर है तो आज युवा इन क्षेत्रों में स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। जैसे ऑर्गेनिक मिल्क हो गया, A2 मिल्क, देसी घी, पनीर मैन्युफैक्चरिंग, आइसक्रीम स्टार्टअप, फ्लेवर्ड मिल्क, डेयरी डिलीवरी एप्स, काउडंग प्रोडक्ट्स, बायोगैस प्लांट, कैमल मिल्क प्रोडक्ट, क्लाइमेट रेजिस्टेंट डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी काम बढ़ रहा है।
1: जी दोस्तों, अगर हम सोचें कि महिलाओं की क्या भूमिका रहती है तो भारत की डेयरी अर्थव्यवस्था में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। गांवों में लाखों महिलाएं दूध उत्पादक, पशुपालन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, डेयरी कोऑपरेटिव्स के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रही है। और अगर इसकी चुनौतियों की बात करें तो हालांकि डेयरी सेक्टर तेज़ी से बढ़ रहा है, फिर भी कुछ चुनौतियाँ हैं, जैसे पशुओं में बीमारी, चारे की कमी, दूध की कीमतों में उतार चढ़ाव, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कमी, अवेयरनेस में कमी, लेकिन सरकार लगातार नई योजनाएं और डिजिटल सॉल्यूशंस ला रही है।
0: तो दोस्तों, डेयरी सेक्टर आज केवल खेती का हिस्सा नहीं बल्कि भारत की स्टार्टअप इकोनॉमी का महत्वपूर्ण पिलर बन चुका है। गवर्नमेंट स्कीम्स, AI टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप फंडिंग और कोऑपरेटिव मॉडल की मदद से भारत का डेयरी सेक्टर नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। यह क्षेत्र युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए रोजगार, इनोवेशन और आत्मनिर्भरता का मजबूत माध्यम बन रहा है। आने वाले समय में डेयरी स्टार्टअप भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाएंगे।
1: जी दोस्तों, ये तो हम बात कर रहे थे गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर डेयरी सेक्टर। अब हम बात करेंगे आपसे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान। भारत तेजी से मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ओर भी बढ़ रहा है। सरकार PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, हाईवेज, मेट्रोज, लॉजिस्टिक पार्क्स और डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत भी बना रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ट्रांसपोर्टेशन को तेज, सस्ता और बेहतर बनाना है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें PM गति शक्ति प्लान की तो यह योजना 2021 में शुरू की गई थी, इस जिसमें 16 मंत्रालयों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया ताकि सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटेड तरीके से पूरे हो सके। इस योजना में के जो मुख्य लक्ष्य है वो है फास्टर ट्रांसपोर्टेशन, बेटर लॉजिस्टिक्स, रिड्यूस ट्रैफिक कंजक्शन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस।
0: साथ ही दोस्तों, बात करें प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की तो भारतमाला प्रोजेक्ट, देश भर में नए एक्सप्रेसवेज और हाईवेज बनाए जा रहे हैं ताकि राज्यों और शहरों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत हो सके। सागरमाला प्रोजेक्ट पोर्ट और कोस्टल डेवलपमेंट को बढ़ावा देकर व्यापार और शिपिंग को मजबूत बनाया जा रहा है। रेलवे मॉडर्नाइजेशन, इंडियन रेलवेज के तहत बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स, हाई स्पीड रेल, मॉडर्न रेलवे स्टेशन, कवच सेफ्टी सिस्टम पर काम हो रहा है। 2026 तक PM गति शक्ति के तहत 300 रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जा चुकी है।
1: जी दोस्तों, डिजिटल एंड स्मार्ट

0: इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत में स्मार्ट सिटीज, 5G नेटवर्क्स, भारत नेट इंटरनेट प्रोजेक्ट, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से विकसित किए जा रहे हैं। जी दोस्तों, रोजगार और विकास की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से लाखों युवाओं को रोजगार मिल रहा है। कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में नए अवसर भी बढ़ रहे हैं।
1: साथ ही सरकार का लक्ष्य भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब और बेटर कनेक्टेड नेशन बनाना है। इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान देश को मॉडर्न, कनेक्टेड, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से भारत आने वाले वर्षों में दुनिया की प्रमुख इकोनॉमीज में और मजबूत स्थान बना सकता है।

0: दोस्तों, अब हम बात करेंगे यूथ एम्पावरमेंट थ्रू सेट डेकोरेशन। आज के समय में सेट डेकोरेशन इवेंट डिजाइनिंग केवल सजावट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह युवाओं के लिए एक बड़ा करियर अपॉर्चुनिटी बन चुका है। फिल्म इंडस्ट्री, थिएटर, वेडिंग्स, OTT प्लेटफॉर्म, एग्जीबिशन और इवेंट मैनेजमेंट सेक्टर में स्किल्ड सेट डेकोरेटर्स और डिजाइनर की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है। भारत की एंटरटेनमेंट और इवेंट इंडस्ट्री युवाओं को क्रिएटिविटी, एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के नए अवसर दे रही है। बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स, डेस्टिनेशन वेडिंग्स, अवार्ड शो, एग्जीबिशंस और फिल्मों में आकर्षक सेट्स तैयार करने के लिए हज़ारों युवाओं को काम मिल रहा है। मानसी, सेट डेकोरेटर कौन होता है?
1: जी बिल्कुल, मैं बताती हूँ कि सेट डेकोरेटर वह व्यक्ति है जो सेट डेकोरेशन, फिल्म सेट्स, वेडिंग थीम्स, एग्जीबिशन स्टॉल्स, थिएटर बैकग्राउंड, लाइटनिंग एंड प्रॉप्स को डिज़ाइन करता है, ताकि किसी भी कार्यक्रम या कहानी को विजुअली अट्रैक्टिव बनाया जा सके। आज OTT प्लेटफॉर्म और बॉलीवुड फिल्मों के बढ़ने से इस फील्ड में कैरियर अपॉर्चुनिटीज लगातार बढ़ रही है, और इसमें जो यूथ एम्पावरमेंट है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे यह क्षेत्र युवाओं को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज, क्रिएटिव स्किल्स, लीडरशिप, टीम वर्क सिखाता है। कई युवा आज अपना खुद का डेकोरेशन बिजनेस और इवेंट स्टार्टअप भी शुरू कर रहे हैं, और सरकार भी स्किल इंडिया, वोकेशनल ट्रेनिंग और इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स के माध्यम से युवाओं को स्किल बेस्ड करियर की ओर बढ़ावा दे रही है।
0: जी बिल्कुल दोस्तों, इसके लिए जो ज़रूरी स्किल्स है कि आप अच्छे सेट डेकोरेटर बने, उसके लिए आपको क्रिएटिविटी, कलर कॉम्बिनेशन, डिज़ाइनिंग सेंस, कम्युनिकेशन स्किल, बजट मैनेजमेंट, टीम डेकोरेशन कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी माने जाते हैं। आज 3D डिज़ाइनिंग और डिजिटल विजुअलाइजेशन जैसी टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग भी बढ़ रहा है।
1: जी दोस्तों, इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इस फील्ड में युवा फिल्म सेट डिज़ाइनर, आर्ट डायरेक्टर, वेडिंग डेकोरेटर, इवेंट डिज़ाइनर, एग्जीबिशन डिज़ाइनर, थिएटर सेट आर्टिस्ट भी बन सकते हैं। कई इंस्टीट्यूट्स भी प्रोडक्शन डिज़ाइन और सेट डेकोरेशन के प्रोफेशनल कोर्सेज भी उपलब्ध करा रहे हैं।
0: सेट डेकोरेशन आज केवल कला नहीं, बल्कि यूथ एम्पावरमेंट का मजबूत माध्यम बन चुका है। यह क्षेत्र युवाओं को क्रिएटिविटी के साथ रोजगार, पहचान और एंटरप्रेन्योरशिप का अवसर देता है। आने वाले समय में इंडिया की एंटरटेनमेंट और इवेंट इंडस्ट्री के विस्तार के साथ इस क्षेत्र में करियर अपॉर्चुनिटीज़ और भी तेज़ी से बढ़ेंगी।

0: जी दोस्तों, अब हम बात करेंगे ऐसी पर्सनालिटीज़ की जिन्होंने अपने स्ट्रगल, हार्डवर्क और पैशन से सक्सेस का अलग बेंचमार्क सेट किया। सबसे पहले जानेंगे टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले सुंदर पिचाई के बारे में। इसके बाद मिलेंगे भारतीय उद्योग जगत के दूरदर्शी नेता राहुल बजाज से, और इसके बाद मिलेंगे हम साउथ इंडियन सिनेमा के सुपरस्टार और जनसेवक नंद मुरी बालकृष्णन की। तो
1: दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये खास सफ़र। सुंदर पिचई का जन्म 10 जून 1972 को मदुरई तमिलनाडु में हुआ। उनका पूरा नाम पिचई सुंदर राजन था। उनके पिता इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और माता स्टेनोग्राफर थी। परिवार बहुत साधारण था, लेकिन शिक्षा को हमेशा प्राथमिकता दी गई। उनकी मेमोरी इतनी तेज़ थी कि वे एक बार डायल किया हुआ नंबर आसानी से याद रख लेते थे। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद वे हायर स्टडीज़ के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गए।
0: जी दोस्तों, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सुंदर पिचाई ने कुछ समय प्रोडक्ट मैनेजमेंट और कंसल्टिंग के एरिया में काम भी किया। 2004 में उन्होंने गूगल ज्वाइन किया। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक दिन यही व्यक्ति पूरी कंपनी का नेतृत्व करेगा। गूगल में उन्होंने शुरुआत में गूगल टूल बार और सर्च प्रोडक्ट पर काम किया। बाद में उन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट लीड किया जिसने इंटरनेट की दुनिया बदल दी।
1: दोस्तों आज हम में से ज़्यादातर लोग क्रोम ब्राउज़र का उपयोग करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गूगल क्रोम के डेवलपमेंट और सक्सेस में सुंदर पिचाई की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। जब क्रोम लॉन्च हुआ तब ब्राउज़र मार्केट में पहले से ही कई बड़े ब्राउज़र मौजूद थे, लेकिन पिचाई की विजन और लीडरशिप के कारण क्रोम दुनिया का सबसे पॉपुलर ब्राउज़र बन गया।
0: जी दोस्तों, क्रोम की सफलता के बाद सुंदर पिचाई को गूगल की कई महत्वपूर्ण प्रोडक्ट्स की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने जीमेल, गूगल मैप्स, गूगल ड्राइव, एंड्रॉयड और अन्य प्रोडक्ट्स की टीम को भी लीड किया।
1: उनकी काम लीडरशिप स्टाइल, टीम वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ने उन्हें कंपनी के सबसे भरोसेमंद लीडर्स में शामिल कर दिया। 2015 में उन्हें गूगल का CEO नियुक्त किया गया। इसके बाद 2019 में वे गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के भी CEO बने।
0: जी दोस्तों, सुंदर पिचाई की सबसे बड़ी खासियत उनकी सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी मानी जाती है। वे मानते हैं कि एक अच्छा लीडर वही होता है जो दूसरों की बात सुने, नई सोच को प्रोत्साहित करे और टीम को आगे बढ़ने का अवसर भी दे। उनकी लीडरशिप में गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल इनोवेशन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है।
1: उनकी लीडरशिप में गूगल ने AI बेस्ड टूल्स, लैंग्वेज टेक्नोलॉजीज, हेल्थ केयर इनोवेशंस और एजुकेशन सॉल्यूशंस पर एक्सटेंसिवली वर्क किया है। टेक्नोलॉजी को अधिक लोगों तक पहुंचाने और उसे उपयोगी बनाने में उनका कंट्रीब्यूशन उल्लेखनीय माना जाता है। उनका एक फेमस कोट है, वियर और फेलियर एज अ बैज ऑफ ऑनर, मतलब असफलताओं से डरिए मत बल्कि उनसे सीखिए।
0: जी दोस्तों, बिल्कुल सही कहा गीतांजलि आपने। अब हम दोस्तों टेक्नोलॉजी की दुनिया से अब हम आगे बढ़ते हैं इंडस्ट्री और एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया की ओर। एक ऐसा नाम जिसने भारतीय इंडस्ट्री वर्ल्ड को नई डायरेक्शन दी, क्वालिटी, ऑनेस्टी और लीडरशिप को बिजनेस की पहचान भी बनाया। आइए जानते हैं फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट राहुल बजाज के बारे में।
1: राहुल बजाज का जन्म 10 जून 1938 को कोलकाता में हुआ था। उनके दादा जमनालाल बजाज इंडियन इंडिपेंडेंस फाइटर और महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी थे। 1960 में राहुल बजाज ने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया और धीरे धीरे लीडरशिप संभाली। उन्होंने बजाज को एक छोटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से ग्लोबल ऑटोमोबाइल जायंट में बदल दिया। ईयर 2006 में राहुल बजाज को राज्यसभा का मेंबर नॉमिनेट किया गया था। राहुल बजाज को उनके आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए कई प्रेस्टिजियस अवार्ड्स और ऑनर्स से सम्मानित किया। उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 2001 में और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला 2017 में।
0: जी दोस्तों, अब हम बात करेंगे साउथ इंडियन सिनेमा के सुपरस्टार और जनसेवक नंद मुरी बालकृष्ण की। जी दोस्तों, नंद मुरी बालकृष्ण का जन्म 10 जून 1960 को चेन्नई में हुआ था। फिल्मी दुनिया में प्यार से बालैया के नाम से प्रसिद्ध नंदमुरी बालकृष्ण ने अपने दमदार एक्टिंग, शानदार डायलॉग डिलीवरी और जनता के प्रति समर्पण से एक अलग पहचान बनाई है। वे महान अभिनेता, निर्देशक और पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव के पुत्र भी है। बालकृष्ण ने बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने मुख्य अभिनेता के रूप में अपनी पहचान भी बनाई।
1: उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में अपना एक्टिंग डेब्यू तत्तम्मा

कला से किया। उन्होंने अडल्ट रोल में अपना डेब्यू 1984 में ससामे जीवितम मूवी से किया। उनकी फिल्म में हिस्टोरिकल, बायोग्राफिकल, माइथोलॉजिकल और साइंस फिक्शन कैरेक्टर्स का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। नंदामुरी बालकृष्णन ने अपने करियर में 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। उनकी चर्चित फिल्मों में शामिल है अखंडा, सिम्हा, आदित्य 369, गौतमी पुत्र सतीकर्णी, भैरवा द्वीपम। फिल्मों के साथ साथ बालकृष्ण राजनीति में भी सक्रिय हैं। वे तेलुगु देशम पार्टी से जुड़े हुए हैं और जनता की

0: बसाक्वत्रम इंडो अमेरिकन कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के चेयरमैन भी हैं।
1: उन्हें उनकी टैलेंट और मेहनत के लिए कई प्रेस्टीजियस अवार्ड भी मिले, जैसे कि बात करें पद्मश्री, पद्म भूषण जो कि उन्हें 2025 में मिला, एनटीआर नेशनल अवार्ड्स 2024 में, नंदी अवार्ड्स 2001 में और सिनेमा 2014 में। ये फॉर बेस्ट एक्टर मेल, बेस्ट एक्टर लेजेंड, थर्ड IIFA उत्सवम गोल्डन लेगेसी अवार्ड। तो दोस्तों यह थी कहानी नंदमुरी बालकृष्णन की, एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने फिल्म, राजनीति और समाज सेवा तीनों क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ी।

0: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जी दोस्तों, अब तक हमने टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री वर्ल्ड के तीन महान पर्सनालिटीज और की इंस्पायरिंग स्टोरीज भी जानी। अब समय है मनोरंजन और संगीत की दुनिया के एक ऐसे सितारे की बात करने का जिनकी आवाज़ सुनते ही माहौल में ऊर्जा भर जाती है। आइए मिलते हैं लोकप्रिय गायक मीका सिंह से। मीका सिंह का जन्म 10 जून 1977 को डूंगरपुर, वेस्ट बंगाल में हुआ था। उनका असली नाम अमरिक सिंह है। वे एक संगीत प्रेमी परिवार से आते हैं। उनके बड़े भाई है प्रसिद्ध गायक डेलर मेहंदी, जिनकी सफलता ने संगीत की दुनिया में एक अलग ही मुकाम बनाया। उनके कुछ फेमस सॉन्ग्स हैं जैसे कि बस एक किंग, मौजा ही मौजा, इबन बतूता, धन्नो, धिंक चिका और चिंता ताता। मीका सिंह की सबसे बड़ी ताकत है उनकी एनर्जेटिक सिंगिंग।
4: दोस्तों, उनकी आवाज़ में एक ऐसा अलग तरह की ऊर्जा और कॉन्फिडेंस महसूस होता है। चाहे पार्टी सॉन्ग हो, डांस सॉन्ग हो या लाइव कॉन्सर्ट, मीका हमेशा ऑडियंस को एंटरटेन करने में सफल रहते हैं। दोस्तों, मीका सिंह की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है, जैसे कि अपनी अलग पहचान बनाइए, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, स्किल पर काम करते रहिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। इसी कारण उन्हें उनके टैलेंट और मेहनत के लिए कई प्रेस्टीजियस अवार्ड्स भी मिले, जैसे आईफा अवार्ड उन्हें 2012, 13 और 15 में मिला, इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड 2014 में, स्टार डस्ट अवार्ड 2015 में एंड इंडियन टेली अवार्ड 2015 में। तो दोस्तों, चाहे आपका ड्रीम टेक्नोलॉजी में हो, बिजनेस में हो या म्यूज़िक में, याद रखिए सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत, धैर्य और सकारात्मक सोच ही आपको मंजिल तक पहुंचाती है। दोस्तों, अब समय है ऐसे खिलाड़ी की कहानी जानने का जिसने शारीरिक चुनौतियों को अपनी ताकत में बदल दिया। दोस्तों, हम आपको मिलवाने जा रहे हैं भारत की ऐसे खिलाड़ी से जिन्होंने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी चुनौती सफलता के रास्ते में बाधा नहीं बन सकती। आइए मिलते भारत के गौरव पैरालंपिक इतिहास के महानतम खिलाड़ी में से एक देवेंद्र झाझरिया से।
3: जी दोस्तों, देवेंद्र झाझरिया का जन्म 10 जून 1981 को राजस्थान के चूरू में हुआ था। लेकिन जब वे केवल 8 वर्ष के थे तब उनके जीवन में एक बड़ा हादसा हुआ। खेलते समय उन्होंने गलती से एक हाई वोल्टेज बिजली के वायर को छू लिया। इस दुर्घटना में उनका बायां हाथ गंभीर रूप से घायल हो गया और डॉक्टरों को उससे काटना भी पड़ा। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने खेलों में अपनी प्रतिभा दिखानी शुरू कर दी थी। विशेष रूप से भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो में उनकी रुचि बढ़ती गई। कई लोगों ने उन्हें कहा कि एक हाथ से खेलों में आगे बढ़ना मुश्किल है, लेकिन देवेंद्र ने इस बातों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने लगातार अभ्यास किया, कठिन मेहनत भी की और धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान भी बनानी शुरू कर दी। साल 2004 में ग्रीस के राजधानी एथेंस में आयोजित 2004 समर पैरालंपिक्स में देवेंद्र झाझरिया ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने भाला फेंक मुकाबले में 62.15 मीटर का थ्रो करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक भी जीत लिया। पहले स्वर्ण पदक के बाद साल 2016 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित 2016 समर पैरालंपिक्स में उन्होंने फिर से इतिहास रचा। उन्होंने 63.97 मीटर का थ्रो किया, अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा और दूसरा स्वर्ण पदक भी जीत लिया।
4: इस उपलब्धि के साथ वे दो पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट बन गए। इसके बाद टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में भी देवेंद्र झाझरिया ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने भाला फेंक प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। उनकी निरंतरता, अनुशासन और समर्पण युवाओं के लिए शानदार उदाहरण है। देवेंद्र झाझरिया को भारत सरकार द्वारा अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, FICC पैरा स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड और पद्म भूषण जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया गया। दोस्तों, खेलों की दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने वाले देवेंद्र झाझरिया की प्रेरक यात्रा के बाद हम बढ़ते हैं ऐसे खिलाड़ी की ओर जिन्होंने भारतीय बैडमिंटन को विश्व मानचित्र पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मिलते हैं महान बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण से।
3: जी दोस्तों, प्रकाश पादुकोण का जन्म 10 जून 1955 को बेंगलुरु में

0: हुआ था। उनके पिता स्वयं बैडमिंटन से जुड़े हुए थे, इसलिए बचपन से ही प्रकाश का झुकाव इस खेल की ओर हो गया। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने बैडमिंटन रैकेट हाथ में लिया और जल्द ही अपनी प्रतिभा को सबको प्रभावित करना शुरू भी कर दिया। 1970 के दशक में प्रकाश पादुकोण भारतीय बैडमिंटन के सबसे बड़े नाम बनकर उभरे। उन्होंने लगातार कई बार नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतकर अपनी श्रेष्ठता साबित भी करी। उनकी खेल शैली बेहद शांत, संतुलित और रणनीतिक थी। वे सिर्फ ताकत पर नहीं बल्कि तकनीक और धैर्य पर भरोसा करते थे।
1: यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। युवाओं के लिए सीख है कि सफलता सिर्फ धैर्य प्रतिभा से नहीं बल्कि सही रणनीति और लगातार अभ्यास से मिलती है। प्रकाश पादुकोण का सबसे बड़ा सपना था भारत को विश्व बैडमिंटन में पहचान दिलाना। उनकी मेहनत का सबसे बड़ा परिणाम 1980 में देखने को मिला जब उन्होंने प्रतिष्ठित ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत कर इतिहास रच दिया। ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप को बैडमिंटन की दुनिया का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित टूर्नामेंट माना जाता है। इसे जीतना किसी भी खिलाड़ी का सपना होता है। प्रकाश पादुकोण इसी प्रतियोगिता को जीतने वाले पहले भारतीय बने। यह उपलब्धि भारतीय खेल इतिहास के सबसे गौरवशाली क्षणों में से एक मानी जाती है।
0: खेल से संन्यास लेने के बाद प्रकाश पादुकोण ने भारतीय बैडमिंटन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। उन्होंने युवा खिलाड़ियों के प्रशिक्षण पर ध्यान दिया और नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रयास भी किए। प्रकाश पादुकोण को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अनेक सम्मान प्राप्त हुए, जैसे कि पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड, स्पोर्ट्स स्टार एक्सेस लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो दोस्तों, अगर सपने बड़े हो या छोटे, उन्हें सच करने के लिए मेहनत, विश्वास और निरंतर प्रयास सबसे ज़रूरी है।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जी दोस्तों, अब हम बात करेंगे आज के इतिहास की। तो सबसे पहले 1793 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान एक फरमान के बाद पेरिस फ्रांस में स्थित जॉर्डन डेस प्लांट्स को आधिकारिक तौर पर एक सार्वजनिक संग्रहालय और वनस्पति उद्यान के रूप में खोला गया। इसके बाद हम बात करते हैं 1891 की। तो महात्मा गांधी के औपचारिक रूप से लंदन के बाद में प्रवेश दिया गया, जिससे उन्हें बैरिस्टर के रूप में वकालत करने की अनुमति भी मिल गई।
5: अब बात करते हैं 1966 की। तो प्रसिद्ध MIG लड़ाकू विमान को पहली बार भारत में महाराष्ट्र के नासिक स्थित ओझर हवाई अड्डे पर डिज़ाइन किया गया था। साथ ही 1986 में भारत ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर अपना पहला टेस्ट मैच जीतकर क्रिकेट जगत में एक बड़ी जीत हासिल की।
4: जी दोस्तों, 1999 में स्लोबोदान मिलोसेविच द्वारा कोसेवो के सर्वियाई सेनाओं को वापस देने पर सहमति जताने के बाद नाटो ने यूगोस्लाविया के खिलाफ अपने हवाई हमलों को निलंबित भी कर दिया। और इसी के बाद 2026 में
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक तौर पर भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री बनकर एक रिकॉर्ड बनाया। 26 मई 2014 को शपथ लेने के बाद उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निर्बाध कार्यकाल को पीछे छोड़ दिया।
4: जी दोस्तों, इसी के साथ अब हम बात करते हैं आज के शेयर बाज़ार की। तो सेंसेक्स हल्की बढ़त के साथ 73,983 अंक पर बंद हुआ, यानी करीब 64 अंकों की तेजी देखने को मिली। वहीं निफ्टी 50 में मामूली गिरावट रही और ये 23,214 अंक पर बंद हुआ।

0: दोस्तों, इसी के साथ वक्त हो चला आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलने के वादे के साथ आज मैं थी आपकी रेडियो दोस्त गीतांजलि और मेरे साथ
1: मानसी।
0: नमस्कार।
2: युवा साथियों ने सुना अभी उनका दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का व्यापक केंद्र है, जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। सुनते हैं हिंदी में समाचार।
3: अरोड़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्रियों और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक नई दिल्ली में जारी है। ये बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर आयोजित की गई है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा के शीर्ष नेता बैठक में शामिल हैं। बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं तथा उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने बताया कि इन प्रस्तावों में युवाओं के लिए कार्यक्रमों का विशेष उल्लेख किया गया है।
4: प्रधानमंत्री जी युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमियता और फिटनेस को बहुत एक एम्फेसिस के साथ कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए, जिसमें भारत को एक बहुत बड़ी खेल शक्ति के रूप में उभरा है, वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के रूप में उभरा है। मिशन चंद्रयान और वैज्ञानिक क्षमता हमारी देश की इस कार्यकाल में बहुत बड़ी है।
3: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग एक सप्ताह

0: से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ती आंतरिक कलह के बीच पार्टी के अब तक दो सांसदों ने इस्तीफा दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। ये उपग्रह संकेतों की प्राप्ति और ट्रैकिंग में बाधा उत्पन्न करने के साथ साथ भ्रामक सिग्नल भेजकर दुश्मन की स्थिति निर्धारण क्षमता को प्रभावित कर सकती है। इन प्रणालियों के शामिल होने से अधिक जोखिम वाले वातावरण में भारतीय नौसेना के जहाजों की संचालन सुरक्षा में वृद्धि होगी। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने पेरू की इनेस कैस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियो पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर।
2: दिस इज आकाश,
1: ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कुछ फिल्मी तराना कार्यक्रम फिल्म संगीत में। कार्यक्रम में सुनते हैं ये तराना, फिल्म का नाम है चोरी चोरी चुपके चुपके। इस फिल्म का ये गीत आइए सुनते हैं, आवाजें अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
6: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
7: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
6: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
7: आकाशवाणी पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
6: बुकिंग है तो संपर्क करें,
8: मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।
9: ये संदेश अभी आपने सुने, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम का अगला और अंतिम तराना आइए अब सुनते हैं, एयर लिफ्ट, इस फिल्म से ये गीत।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से, सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 6:40 पर आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी और 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। समाचार बस कुछ ही पलों में।
1: जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने की उपलब्धि पर मंत्रिमंडल ने उनके सम्मान में प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कल जयपुर दौरे पर विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नागौर बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग 62 के 4-लेन निर्माण कार्य को मंजूरी दी और पचपदरा स्थित राजस्थान रिफाइनरी से इसी महीने उत्पादन शुरू होने के आसार। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौर और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से बने रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने इस ऐतिहासिक अवसर को देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण बताया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अपने बधाई संदेश में प्रधानमंत्री के इस कार्यकाल को राष्ट्रीय यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग बताया है। इस उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता मौजूद रहे। इस दौरान विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी विकास योजनाओं और 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र में बनाने के दृष्टिकोण की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस बैठक में शिरकत की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी प्रधानमंत्री के सम्मान में आज एक प्रस्ताव पारित कर उन्हें इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में मीडिया को इसकी जानकारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री की इस उपलब्धि को 140 करोड़ देशवासियों के विश्वास का प्रतीक बताया।
2: जो बहुत ही साधारण परिवार से आए और जिन्होंने अपने कार्य से, अपने विचार से और अपने नेतृत्व के साक्षी रूप से जिस तरह से देश को आगे किया, उनको 140 करोड़ देशवासियों ने उन पर विश्वास जताया और एक ऐसा कीर्तिमान बनाया जो कि भारत के लोकतांत्रिक पैमाने पे एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है।
1: प्रधानमंत्री श्री मोदी के राष्ट्र सेवा के 12 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने उन्हें पत्र लिखकर 8 करोड़ प्रदेशवासियों की ओर से शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने लिखा कि

0: मोदी की नीतियों से सांस्कृतिक पुनर्जागरण को आधुनिक स्वरूप मिला है। इस उपलक्ष में आज प्रदेश भर में देवस्थान विभाग की ओर से विशेष पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की गई।
1: ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वंदमान सदा शास्त्री यजमानो अविर्भिः अहीडमानो वरुणेह बोध्युर्षगं समान आयुः प्रमोखी।
0: देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने पाली में कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने हर क्षेत्र हर वर्ग के कल्याण के लिए काम किया है।
2: बीते 12 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी निस्वार्थ भाव से राष्ट्र सेवा में समर्पित हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। देश के गांवों, गरीबों, किसानों, पशुपालकों, युवाओं, महिलाओं और समाज के प्रत्येक वर्ग के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है।
0: इस उपलक्ष में विभिन्न स्थानों पर नारी चौपाल, नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम भी रखे गए। प्रदेश भर से विभिन्न नेताओं और सामाजिक संगठनों की ओर से प्रधानमंत्री की इस उपलब्धि पर बधाई और शुभकामनाओं का सिलसिला जारी है। प्रगतिशील किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी रंगलाल सिंह लमोरिया ने भी राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व को अनुकरणीय बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में होने वाली इस बैठक का विषय 2027 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास रखा गया है। ये हर भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। बैठक में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ाने तथा देश में स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव कल जयपुर दौरे पर रहेंगे। वे विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री वैष्णव आकाशवाणी जयपुर परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। वे MNIT भी जाएंगे। इसके बाद वे दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शिरकत करेंगे। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री श्री मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इसके माध्यम से देश में हुए ऐतिहासिक विकास, सुशासन और जनहित कामों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। रामगढ़ ट्रांसमीटर उद्घाटन समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन आज जयपुर पहुंचे और सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में आकाशवाणी के 38 केंद्र हैं जो राज्य के 94% क्षेत्र को कवर करते हैं। इस ट्रांसमीटर के उद्घाटन के साथ ही प्रदेश में कुल FM ट्रांसमीटरों की संख्या 39 हो जाएगी। प्रसार भारती के चेयरमैन पद्मश्री प्रसून जोशी भी जयपुर पहुंच गए हैं। फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने भारत में अपना पहला AI सक्षम डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। 168 मेगावाट क्षमता का ये केंद्र गुजरात के जामनगर में बनाया जाएगा। ये दुनिया के सबसे गतिशील डिजिटल बाजारों में से एक होगा, जहां उत्पादों और AI क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश में CNG की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइप वाली प्राकृतिक गैस PNG की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि LPG कनेक्शनों को PNG कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
3: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना CNG की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं। इनफैक्ट LPG के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू PNG कनेक्शन।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नागौर बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग 62 के फोर लेन निर्माण कार्य को मंजूरी दी है। इससे करीब 1,359 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बीओटी मॉडल यानी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर पर विकसित किया जाएगा। इससे नागौर और बीकानेर के बीच संपर्क बेहतर

होगा। साथ ही निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा उद्योग और पर्यटन गतिविधियों को भी रफ्तार मिलेगी। बालोतरा जिले के पचपदरा स्थित राजस्थान रिफाइनरी से उत्पादन इसी महीने शुरू होने के आसार हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बताया कि इससे प्रदेश में निवेश, रोजगार और राजस्व के नए अवसर विकसित हो सकेंगे। मुख्य सचिव आज दिल्ली से हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अधिकारियों की बैठक को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि HPCL रिफाइनरी के LPG और अन्य उत्पादों का अधिकतम उपयोग राजस्थान के लिए सुनिश्चित किया जाए।

के अधिकारियों की बैठक को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि HPCL रिफाइनरी के LPG और अन्य उत्पादों का अधिकतम उपयोग राजस्थान के लिए सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एक अनुमान के मुताबिक यहां से 4 मिलियन मीट्रिक टन डीजल सालाना रिफाइन किया जा सकेगा। उन्होंने रिफाइनरी उत्पादनों की बिक्री संभावनाओं को तलाशने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा की अध्यक्षता में समिति गठित करने के निर्देश दिए। जयपुर खो नागोरियान पटाखा फैक्ट्री अग्निकांड में थानाधिकारी सहित 9 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने इस भीषण अग्निकांड की घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए लापरवाही के लिए जिम्मेदार पाए गए इन पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। वहीं पुलिस टीम ने इलाके में सर्च अभियान चलाते हुए अब तक 5 अवैध पटाखा फैक्ट्री गोदामों को सील किया है। हादसे के बाद इस क्षेत्र में की गई कार्यवाही के दौरान बड़ी मात्रा में बारूद, पोटाश, मशीनें और अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। इस बीच FSL टीम मौके से नमूने इकट्ठे कर मामले की जांच कर रही है। राज्य में मौसम का मिला जुला मिजाज देखने को मिल रहा है। अधिकतर हिस्सों में जहां भीषण गर्मी का प्रकोप है, वहीं दिल्ली और हरियाणा से सटे राज्य के कुछ जिलों में बादलों की आवाजाही के साथ धूल भरी आंधी चली। अलवर, हनुमानगढ़, झुंझुनू और भरतपुर के कई इलाकों में बारिश भी हुई। इस बीच श्रीगंगानगर, चूरू, पिलानी, फलौदी, बीकानेर और जैसलमेर में दिन के पारे में उछाल आने से लू का सबसे अधिक असर रहा। इन स्थानों पर अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री के बीच मापा जा रहा है। राज्य में कल से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। मौसम विभाग ने बीकानेर, अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में कल से 14 जून तक तेज रफ्तार हवाएं चलने की संभावना जताई है। इसी दौरान कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। विभाग ने इन संभागों के कुछ क्षेत्रों के लिए ऑरेंज तथा येलो अलर्ट भी बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 26 जून तक स्वीकार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने की उपलब्धि पर मंत्रिमंडल ने उनके सम्मान में प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कल जयपुर दौरे पर विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नागौर बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग 62 के 4 लेन निर्माण कार्य को मंजूरी दी। और पचपदरा स्थित राजस्थान रिफाइनरी से इसी महीने उत्पादन शुरू होने के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से सलूम्बर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख कमलेश कुमार झड़ोला ने तैयार किया है। जल संरक्षण से विकास तक प्रशासनिक सक्रियता और जनभागीदारी का एक अनूठा संगम बीते माह जिले में देखने को मिला। एक तरफ राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को जमीन पर उतारने के लिए जिला प्रशासन गांव-गांव तक पहुंचा, तो दूसरी ओर जल संरक्षण, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास से जुड़े अभियानों में आमजन की भागीदारी भी बढ़ती नजर आई। इस दौरान मौसम ने भी कई रंग दिखाए। मई के अधिकांश दिनों में तेज गर्मी और लू ने लोगों को परेशान किया, लेकिन जून की शुरुआत में आंधी, बादल और हल्की बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। कुल मिलाकर बीता महीना सलूम्बर में विकास कार्यों, धार्मिक आयोजनों, जन कल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक सक्रियता के नाम रहा। भीषण गर्मी के चलते ग्रामीण इलाकों से लेकर जिला मुख्यालय तक पेयजल की समस्या कई जगह सामने आई। ऐसे समय में प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता जलापूर्ति व्यवस्था को बनाए रखना रही। जिला कलेक्टर मोहम्मद जुनैद पीपी ने विभिन्न पेयजल योजनाओं, जलाशयों और हैंडपंपों का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए।

0: कि किसी भी गांव में पेयजल संकट नहीं होना चाहिए। इस बीच जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान सबसे बड़ा और चर्चित अभियान बनकर उभरा। 25 मई से 5 जून तक चले इस अभियान के तहत जिले भर में जल चौपाल, श्रमदान, पौधरोपण, साइकिल रैली, जल स्रोतों की साफ सफाई और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। सरणी नदी, जैसमंद झील, कमल तलाई और विभिन्न गांवों की बावड़ियों और तालाबों पर सफाई अभियान चलाया गया। जिला प्रशासन का प्रयास था कि जल संरक्षण केवल सरकारी कार्यक्रम रहने के बजाय जन आंदोलन का रूप ले। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सामाजिक संगठन, विद्यार्थी, महिलाएं और ग्रामीण भी बड़ी संख्या में इन गतिविधियों में शामिल हुए। जल संरक्षण के साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष जोर दिया गया। हरियालो राजस्थान अभियान की तैयारियां पूरे महीने चलती रहीं। जिले में संचालित 10 नर्सरियों में लाखों पौधे तैयार किए गए। पंचायती राज विभाग को 6 लाख, शिक्षा विभाग को 4 लाख और वन विभाग को 3 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई और जिले भर में पौधरोपण के कार्यक्रम आयोजित हुए। एक पेड़ माँ के नाम और एक पेड़ लोकतंत्र के नाम जैसे अभियान भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बने और बड़ी संख्या में लोगों ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण पहले हुई। टीबी मुक्त भारत अभियान, एचपीवी वैक्सीनेशन, डेंगू जागरूकता कार्यक्रम और विभिन्न स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। आयुर्वेद विभाग ने योग और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम शुरू किए। वहीं जिले में अवैध चिकित्सा गतिविधियों के खिलाफ ऑपरेशन शटर डाउन की भी तैयारियां की जा रही हैं। इस अभियान के तहत बिना पंजीकरण और बिना डिग्री संचालित क्लिनिकों, झोला छाप डॉक्टरों और अवैध जाँच केंद्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन के तहत विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों और सरकारी संस्थानों में योगाभ्यास का सिलसिला चल रहा है। जैसमन की पाल और सेरिंग तालाब पर नियमित योग किए जा रहे हैं। जिला कारागृह में बंदियों के लिए योग कार्यक्रम शुरू किए गए। प्रशासन और आयुर्वेद विभाग का उद्देश्य योग को जन जन तक पहुँचाना रहा। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी ये महीना काफी महत्वपूर्ण रहा। जैसमंद की पाल स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का लाइव प्रसारण भी लोगों ने देखा। इसके अलावा विभिन्न गांवों में धार्मिक अनुष्ठान, सत्संग, कथा, भजन संध्या और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित हुए जिनमें लोगों की अच्छी भागीदारी रही। ईद उल अजहा पर भी लोगों ने मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की, एक दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। सलूमर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। श्री नरेंद्र मोदी भारत रा सबू लंबा बगत ताई प्रधानमंत्री रहवण वाला नेता बनिया। ई उपलब्धि माथे मंत्रिमंडल मारा मान माय प्रस्ताव पास कीनो। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव काल जयपुर पधारेला। न्यारा न्यारा कार्यक्रम माय शिरकत करण रो कार्यक्रम। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नागौर बीकानेर नेशनल हाईवे नंबर 62 ना 4 लेन रो बनावन री मंजूरी दीनी। और पचपदरारी तेल रिफाइनरी इनी महीना उत्पादन स्वरूप है वन रा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। श्री नरेंद्र मोदी देश में सबू लंबा बगत ताई प्रधानमंत्री रहवण वाला नेता बन क्या है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री मोदी ने ई सारू बधाई दीनी है। सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए राष्ट्रपति इन्हें देश री जनता रा वारी अगुवाई माई अटूट भरोसा रो सबूत बतायो। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन वारा बधाई संदेश माए प्रधानमंत्री मोदी रा ई कार्यकाल ने देश माए बदलाव लावन वालो जमानो बतायो। ये मौके आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए री नई दिल्ली माय खास मीटिंग राखी ची। मीटिंग माय एनडीए गठबंधन रा सदस्य दलां और भारतीय जनता पार्टी रा आला नेता मौजूद रहा। इस दौरान देश रा विकास रा न्यारा न्यारा कार्यक्रम

0: ਹਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਾਗੈ। ਸਾਲ 2047 ਤਾਈਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਬਣਾਵਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੋ ਜਾਇਜ਼ੋ ਲਿਓ ਚਿਓ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਏ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਫਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਰਮਾਨ ਮਾਏ ਆਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਰ ਮਾਨਾ ਈ ਉਪਲਬਧੀ ਸਾਰੂ ਬਧਾਈ ਤੀਨੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਾਛੇ ਸੂਚਨਾ ਔਰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨਈ ਦਿੱਲੀ ਮਾਏ ਖਬਰ ਨਵੀਸਾਂ ਨਾ ਇਨਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੀਨੀ। ਵੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੀ ਈ ਉਪਲਬਧੀ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਰੀ 140 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਤਾਯੋ।
1: जो बहुत ही साधारण परिवार से आए और जिन्होंने अपने कार्य से, अपने विचार से और अपने नेतृत्व के साक्षी रूप से जिस तरह से देश को आगे किया, उनको 140 करोड़ देशवासियों ने उन पर विश्वास जताया और एक ऐसा कीर्तिमान बनाया जो कि भारत के लोकतांत्रिक पैमाने पे एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है।
0: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ई प्रधानमंत्री मोदी रा लाडला 12 साल रा बेहतरीन कामकाज सारू वाने कागज लेकर राज्य री 8 करोड़ जनता री ओर शुभकामनावां दीनी है। मुख्यमंत्री खत्माय मांड्यो के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई माए प्रदेश ही विकसित राजस्थान 2047 रो संकल्प साचो करण ओड़ी बढ़ रियो है। ई मौके आज देवस्थान विभाग री ओर आखा राज्य माए खास पूजा अर्चना कर खुशहाली री कामना करी ची।
2: ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वंदमान सुदा जास्ती यजमानो हविर्भिः अहीडमानो वरुणेह बुद्धिर्षगुं समान आयु प्रमोखी।
0: देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत पाली माए कहो के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई वाली एनडीए सरकार हर हलका और हर तबका रा भला सारू काम कीनो है।
3: बीते 12 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी निस्वार्थ भाव से राष्ट्र सेवा में समर्पित हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। देश के गांवों, गरीबों, किसानों, पशुपालकों, युवाओं, महिलाओं और समाज के प्रत्येक वर्ग के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है।
0: ई मौके न्यारी न्यारी ठोड़ा नारी चौपाल और नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम ही राखी चिया। देश परदेश न्यारा न्यारा नेतावां और संगठन नारी ओर प्रधानमंत्री मोदी ने आ उपलब्धि हासिल करन पर बधाइयां और शुभकामनावां मिल रही है। प्रगतिशील किसान यूनियन रा राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी रंगलाल सिंह लामोरिया ही देश सेवा सारू समर्पित प्रधानमंत्री मोदी रा व्यक्तित्व ने अनुकरणीय बतायो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो काल नई दिल्ली माए नीति आयोग री गवर्निंग काउंसिल री मीटिंग री सदारत करन रो कार्यक्रम है। राष्ट्रपति भवन माए भेवन वाली ई मीटिंग रो खास मुद्दो 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास राखी जियो है। मीटिंग माए उद्यमिता और कौशल विकास ने बधावो देवन और देश माए काम धंधा रा स्थायी मौका मुहैया करावन रे बारा माए विचार करियो चावेला। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव रो काल जयपुर पधारण रो कार्यक्रम है। वे आकाशवाणी परिसरों जैसलमेर रा रामगढ़ माए 20 किलोवाट बूतारा एफएम ट्रांसमीटर रो वर्चुअल तरीका उद्घाटन करेला। इस आगे प्रदेश माए एफएम ट्रांसमीटर री तादाद 39 हो जावेला। फिलहाल राज्य माए आकाशवाणी रा 38 केंद्र है जो प्रदेश रा 94% हलका ताई पहुंचे है। श्री वैष्णव रो मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रो दौरो करण रो ही कार्यक्रम है। इन पाछे वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई वाली केंद्र सरकार रा 12 साल पूरा फेवन रा सिलसिला माए कृषि अनुसंधान केंद्र माए राख्या जावन वाला विकसित भारत संकल्प सम्मेलन माए शामिल भेला। इरे जरिए देश माए लारला 12 साल माए भिया ऐतिहासिक विकास सुशासन और जनता रा भला रा कामारी जानकारी समाज रा हर तबका ताई पुकाई चावेला। केंद्रीय मंत्री प्रदेश भाजपा मुख्यालय माए राखे चावन वाली प्रेस वार्ता नई संबोधित करेला। प्रसार भारती रा अध्यक्ष पद्मश्री प्रसून जोशी जयपुर पथार क्या है। रामगढ़ ट्रांसमीटर उद्घाटन समारोह री तैयारियां रो जायजो लेवन सारू आकाशवाणी रा महानिदेशक राजीव कुमार चैनी आज जयपुर पधार्या। अमरीकी कंपनी मेटा गुजरात रा जामनगर माए मारो पहलो एआई सक्षम डेटा सेंटर खोलन रो ऐलान कीनो है। ओ दुनिया रा सबों 32 हलचल वाला डिजिटल बाजारा

0: માં શામેલ ભયેલા જઠા સામાન અર એઆઈયું જોડ્યા બૂતાને મજબૂત બનાવણ સારું વિશ્વ સ્તરરો બુનિયાદી ઢાંચો મુહૈયા કરાયો ચાવેલા એ સમાચાર આપ આકાશવાણી જયપુર અજમેર સુન રહ્યા હો પ્રાદેશિક સમાચાર બુલેટિન આપ માણા એક્સ હેન્ડલ એટ એઆઈઆર ન્યૂઝ અંડરસ્કોર જયપુર યુટ્યુબ ચેનલ રાજસ્થાન એઆઈઆર ન્યૂઝ અર ફેસબુક માથે એઆઈઆર ન્યૂઝ રાજસ્થાન પર આઈ સુન સકો હો પેટ્રોલિયમ અર પ્રાકૃતિક ગેસ મંત્રી હરદીપ સિંઘ પુરી કહ્યું હૈ કે દેશમાં સીએનજી રી કોઈ કમી નહીં હૈ વે કહ્યું કે ઘરાં તાઈ પાઇપલાઇન જરીએ રસોઈ ગેસ રીપૂર્તિ કરી જા રહી હૈ શ્રી પુરી કહ્યું કે એલપીજી કનેક્શન ને પીએનજી કનેક્શન માં બદલણ રી કોશિશ કરી જા રહી હૈ કેન્દ્રીય મંત્રી કહ્યું કે કુછ લોગ ગલત જાણકારીયાં દેર દુનિયારા મોજૂદા હાલાત રો ફાયદો ઉઠાવણ રી કોશિશ કર રહ્યા હૈ
1: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया कोई कमी नहीं है ना सीएनजी की कमी है ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं इनफैक्ट एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नागौर बीकानेर नेशनल हाईवे नंबर 62 ने चार लेन रो बनावण रा काम ने मंजूरी दे दी नी है इन्हें करीब 1,359 करोड़ रुपये बत्ता खर्चों बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर बीओटी मॉडल माथे विकसित करियो चावेला इन्हों नागौर और बीकानेर बीच जुड़ाव बेहतर वेला बालोतरा जिला रा पचपदरारी राजस्थान रिफाइनरियों उत्पादन इन्हीं महीना शुरू भेवन रा आसार है मुख्य सचिव वी श्रीनिवास बतायो कि इन्हो प्रदेश में निवेश नौकरी धंधा और आमदनी रा नुआ मौका बनेला मुख्य सचिव आज हिंदुस्तान पेट्रोलियम रा एहलकारा सागे वर्चुअल तरीकों राखी जी मीटिंग माई पोल रहा है वे कहो के एचपीसीएल रिफाइनरी रा एलपीजी और दूजा उत्पादन ने बत्ताऊ बत्ता काम ले तय करियो चावेला मुख्य सचिव बतायो के 8 सालाना 4 मिलियन मीट्रिक टन डीजल री सफाई करी जा सकेला जयपुर रा खो नागोरियान हलका माए पटाखा बनावन रा एक कारखाना माए काल लाई लागण हुई मौताना मामला माए एक एएसआई समेत 9 पुलिस वाला ने मुअत्तल कर दिया चिया है पुलिस इन हलका माए जांच रो अभियान चलार गैर कानूनी तौर चल रही 5 पटाखा फैक्ट्रियां और गोदामा ने सील कर दीना हादसा पाछे इन हलकाओं मोटी तादाद माए बारूद मशीना और दूजी विस्फोटक सामग्री बरामद करी ची एफएसएल री टीम मौकाओं नमूना भेड़ा कर मामला री जांच कर रही है रेल मंत्रालय उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्यालय और अजमेर मंडल ने बेहतरीन काम सारू उत्कृष्टता प्रमाण पत्र देर नवाजो है अजमेर मंडल रा रेल प्रबंधक राजू भूतड़ा बतायो कि मंडल ने डिजिटल पहल एचआरएमएस आदर्श एडॉप्शन डिप्लॉयमेंट और री इन्वेंटिंग ऑफ सर्विसेज रातेत रेल सेवा ने आधुनिक पारदर्शी और कर्मचारी अनुकूल बनावन सारू नवाजी चियो है हनुमानगढ़ में पहली वाला फौजियां और वीरांगनावां री परेशानियां आगे करण सारू 12 जून ने पूर्व सैनिक समस्या समाधान शिविर लगायो चावेला जिला सैनिक कल्याण अधिकारी बतायो कि शिविर माए पहली वाला फौजियां और वीरांगनावां री पेंशन स्वास्थ्य सेवा और दूजी सरकारी योजनावां जुड़ी समस्यावां मौके निपटावण री कोशिश करी जावेला रबे मौसम राज्य रा घणखर हलका माए जोरदार गर्मी पड़ रही है श्रीगंगानगर चूरू पिलानी फलौदी बीकानेर और जैसलमेर माए 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तापमान बीच लू रो घणो असर रह्यो दूजी कानी दिल्ली और हरियाणा लाग्योड़ा राज्य रा कुछ हलका माए बादला मनबा सागे आंधी चाली अलवर हनुमानगढ़ झुंझुनू और भरतपुर रा कई हलका माए बारिश हुई मौसम विभाग बीकानेर अजमेर भरतपुर और जयपुर संभाग रा कुछ हलका माए काल 14 जून ताई जोरदार बायरो बाजण सागे कठे कठे बादला ने गाज और बीजनिया री चमक बीच बिरखा वेवन रा आसार जताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 28 जून दीतवार ने विचार बतावेला आ इन कार्यक्रम रे 135वीं कड़ी भेला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे

0: 26 जून ताई राय दे सको हो। नंबर ओजू सुन ले रहा सा 1-800-117-800। नरेंद्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम जरिए ही विचार भेजा जा सके है। आखिर में खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहो। श्री नरेंद्र मोदी भारत रा सब लंबा बगत ताई प्रधानमंत्री रहवन वाला नेता बनिया। ई उपलब्धि माथे मंत्रिमंडल मारा मान माए प्रस्ताव पास कीनो। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव काल जयपुर पधारेला। न्यारा न्यारा कार्यक्रम माए शिरकत करेला। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नागौर बीकानेर नेशनल हाईवे नंबर 62 ने 4 लेन रो बनावन री मंजूरी दीनी। और पचपदरा री तेल रिफाइनरियों इनी महीना उत्पादन शुरू हेवन रा आसार। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजा हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। शाम 7 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं ग्रामीण परिवारों का दैनिक कार्यक्रम खेती और घर।

0: राम राम नंदू भाई।
1: राम राम उपासना भाई सर, राम राम।
0: खेती और घर कार्यक्रम होने वाला सगले जना ने भी अपनो
1: राम राम
0: सा। भाई देखो कार्यक्रम रे महीने जानकारी रे हाते बढ़िया बढ़िया सा गीत भी लेने आप ही हाजिर हाँ सा।
1: बिल्कुल सा।
0: तो भाई कार्यक्रम भी शुरुआत करा सा।
1: बिल्कुल सा।
0: तो भाई देखो सबों पहले आप ही जानकारी करावांगा, आज किसान भाइयों के लिए बहुत जरूरी विषय है दुधारू पशुओं में पोषण प्रबंधन कई तरीकों करना चाहे सा।
1: बिल्कुल आप ठीक ही रहा हो। देखो आप ही खेती करा, आप ही किसान हाँ, तो देखो आप ही खेती रे लारे लारे पशुपालन भी करा सा।
0: हाँ
1: और पशुपालन जो है अपने खेती रे लारे अतिरिक्त आय रो जो है वो साधन बने सा, बनी आपने जो भी प्राप्त वे बनी आपने जो है घर बनी में अतिरिक्त आय आवे। और अन्य बात देखो अपना दुधारू जी पशु है वनारी देखभाल करनी भी अपनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है सा।
0: हाँ सा भाई देखो दुधारू पशु जो वे वनारे बेहतर स्वास्थ्य रे लिए और ज्यादा ज्यादा दूध उत्पादन लेवारे वास्ते वैज्ञानिक तरीकाओं पोषण प्रबंधन करनो बहुत ही जरूरी है।
1: बिल्कुल सा।
0: पोषण प्रबंधन में आप ही कुछ खास वाता या कुछ काम ऐसा कर सका जणियू जो है वणा ने सही पोषण मिल सके।
1: बिल्कुल आप ठीक क्रिया हो। देखो अपना दुधारू पशु अपने वास्ते बहुत ही जरूरी वे और अनारो पोषण प्रबंधन भी अपनो एक महत्वपूर्ण काम है। और आहार रो सही अनुपात राखनो यो अणि में सबू बढ़िया और सबू पहलो काम है सा।
0: हाँ सा।
1: और बरसीम है, जई है, नेपियर है या मक्का रो हरो चारो जो है पशुआरी पाचन क्रिया ने बहुत ही बढ़िया रखे, सही रखे और विटामिन ए री कमी ने भी पूरी करे। और रोजाना अगर आप 15-20 किलोग्राम हरो चारो जो आप पशुआ ने दा तो वो बनारी सेहत वाते बढ़िया व्यवसाय।
0: हाँ सा देखो गेहूं रो भूसो, धान रो पुआल या फिर ज्वार बाजरा जो बाजरा री जो कड़बी वे वा पशु रे पेट में रुमेन ने सही करे है तो सही तरीका काम करवा में मदद करे है। अणी वास्ते पशु ने रोज 4-5 किलोग्राम सूखो चारो भी देनो चावे सा।
1: बिल्कुल उपासना भाई साहब ठीक ही रहा हो ना। देखो अंडे अलावा आप ही बात करा कि अनाज मक्का गेहूं खली सरसों बिलोरारी और चोकर रो मिश्रण भी आप ही अपने पशुओं ने देना चाहवा। शरीर रख रखाव रे वाते गाय ने 1-1.5 किलोग्राम और भैंस ने 2 किलोग्राम दाना रोज देनो चाहे
0: हाँ
1: ताकि
0: सा।
1: वनारो स्वास्थ्य ठीक रहे वे साहब।
0: हाँ सा। और देखो अच्छो दूध उत्पादन करवारे लिए भी गाय ने हमेशा 2.5 लीटर दूध पे 1 किलो और भैंस ने 2 लीटर दूध पे 1 किलो अतिरिक्त दाणो आपने देनो चाहे।
1: बिल्कुल उपासना भाई साहब अपने किसान भाई बहनों ने आप ही बताना चाहूँगा कि देखो दूध रे लारे पशु रे शरीर में भारी मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो बाहर निकले और अणि में हमेशा 50-60 ग्राम जो है अच्छी गुणवत्ता वालों खनिज मिश्रण जरा दाना जो है मिले इन अपने पशु ने देना चाहवा। अणु कही एक पशु री उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी वेवे और थनेला रोग जैसी बीमारियां जो है वी भी अणियों नहीं वेवे और अणियों अपना पशु वंचो रह जावे साहब।
0: हाँ सा देखो।

0: चारा में 20 से 30 ग्राम साधारण नमक मिलाणो चावे, या पछे खूंटा पे सेंधा नमक रियो एक ढेलो बांध देणो
1: बिल्कुल
0: चावे।
1: सा।
0: जाणियो कहीए कि जनाळ पशु ने जरूरत लागे वणी हिसाबु वी वणी नमक ने चाट लेवे तो वणा वंडी पूर्ति वेती रहे।
1: बिल्कुल आप ठीक ही रही हो ना। देखो, दूध में लगभग 85 से 87% भाग जो है वो पानी वेवे। अणि में ये दुधारू पशु ने प्रतिदिन 70 से 90 लीटर साफ और ताज़ा पानी देना चाहवा सा। पशु ने दिन में कम उ कम 3 से 4 दाना अपनी जो है वंडी इच्छा अनुसार पानी मिल जावे तो वो बहुत ही बढ़िया रहे। पानी री थोड़ी सी भी कमी वे जावे तो देखो आपने पशु रे दूध उत्पादन में कमी वे जावे लग और बनियो देखो आपने आर्थिक रूप भी थोड़ी नुकसान वेणो शुरू वे जावे सा।
0: हाँ सा, देखो दुधारू पशु जो वे वो ब्यावारी टाइम पे यदि वे तो अगर मणि टाइम पे अपा सही पोषण नहीं रखा तो भी वंडे स्वास्थ्य रो बहुत नुकसान वे। तो वणी टाइम पे अपने अलग तरह रो प्रबंधन करनो पड़े है। तो गर्भावस्था रा आखिरी 2 महीना जो वे वो ब्यावारे 2 महीना मतलब पशु रे लिए सबों ज़्यादा संवेदनशील वे। और अणी टाइम पे अपने वंडो दूध निकालनो पूरी तरह बंद कर देना चाहे, और अणि दौरान पशु ने बाईपास फैट और उच्च प्रोटीन वालों आहार देना चाहिए।
1: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। बिहाने रे तुरंत बाद ऊर्जा री कमी हूँ वंचावा रे बात है। शुरुआत में 3-4 दिन तक आपने गुड़, अजवाइन, मेथी और सौंठ रो गाढ़ो काढ़ो या दलियो आपने पशु ने आपी देगा तो वनारे स्वास्थ्य वाते ठीक रहेगा सा।
0: हाँ सा, देखो दुधारू पशुआरे पोषण प्रबंधन रे लिए आपी साइलेज और अजोला भी वणी सका, वो भी एक आधुनिक विकल्प है।
1: बिल्कुल सा।
0: गर्मी या तेज सर्दी रे टाइम पे हरा चारा री कमी ने दूर करवा रे लिए मक्का या ज्वार वणी थे कि अचार यानी कि साइलेज रो उपयोग आपाने करनो चाहिए। अणियों कही हुए कि दूध उत्पादन जो है वो कम नहीं वेगा।
1: बिल्कुल उपासना भाई सा, अंडे अलावा अपने किसान भाई बहना ने आप ही बताना चाहूँगा कि देखो अजोला एक जलीय फर्न है। जड़ियों का ये कि जड़ी में 20 से 30% जो है प्रोटीन वेवे और अन्य कम लागत में उगैन चारा रे ला रहे खिलाऊ दाणा रो खर्चो भी आपने कम लागे तो अणियों देखो आपने यो अतिरिक्त फायदो भी वेवे सा।
0: हाँ सर, तो मतलब कहवा रो यो है कि दुधारू पशु जो है वो अपने लिए बहुत महत्व रखे है। तो अणि वास्ते वंडी देखभाल थोड़ी विशेष तरीका आपाने करनी पड़े है। तो आपा जो बताया आभार अतरा सारा उपाय ई जो है किसान भाई ध्यान में रखेगा तो वणारो जो दुधारू पशु है वो बहुत अच्छो दूध उत्पादन करेगा। और दूध उत्पादन अच्छो वेगा तो किसान रे आप ही कही सका कि भाई आर्थिक रूप मैंने बहुत सारो
1: बिल्कुल
0: फायदो
1: सर।
0: वेगा सा। और जटे फायदो वेगा वटे खुशी वेगा, और खुशी वेगा तो गीत संगीत हुनारो घणो ही मन करेगा सा।
1: बिल्कुल सर।
0: तो आनी वास्ते आपने किसान भाई ने हुनाई था एक बढ़िया सु गीत।
1: हुणावा सा।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो उपासना भाई सा यो होने आप ही राजस्थानी लोकगीत
3: हाँ
2: और लारे लारे संदेश भी होने सा।
3: हाँ
2: और देखो कार्यक्रम में आप ही आगे बढ़ा तो मौसम की जानकारी जो है अपने किसान भाई बहन वास्ते बड़ी महत्वपूर्ण व्यवस्था।
3: हाँ।
2: क्योंकि देखो किसान भाई बहन मौसम पे आधारित अपना काम जत रही है भी करवा रही कोशिश करे और कतिर दान आप ही देखा कि मौसम की जानकारी अभाव में देखो किसाना ने कतरो नुकसान भी भेजा वैसा। और देखो अब आप ही मौसम की जानकारी री बात करा तो देखो आवा वाला दिन में उदयपुर के तापमान की बात करा तो मुख्य रूपों गर्म और मौसम शुष्क रहेगा सा। अधिकतम तापमान की जो बात भी है तो 35 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस।

0: चरचरे वाली संभावना है सा।
1: हाँ सा।
0: और कुछ क्षेत्र में तेज हवा भी चली सके। और किसानों ने सलाह दी जा रही है कि अणि तेज गर्मी में और धूप में फसला ने सुखाऊ वंचावर वाते हल्की सिंचाई कर सके और निराई गुड़ाई रो काम भी कर सके सा।
1: हाँ सा भाई देखो दिन रो तापमान जो है आप बार बतायो कि 35 से 40 डिग्री रहवारी संभावना है और तेज़ धूप और गर्मी भी रवनी थे की रहेगा, पर रात रो तापमान आप बताई दा कि भाई 25 डिग्री और 27 डिग्री रहवारी संभावना है, ऐसा अनुमान है सा।
0: बिल्कुल सा।
1: और हवारी स्थिति जो है वह संभाग्रा कुछ हिस्सा में 15 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हूँ तेज और धूल भरी हवा चाल वाली संभावना है सा।
0: बिल्कुल आप ठीक रहे हो ना। आवा वाला टाइम में देखो आपने कृषि संबंधी कशा कशा कार्य करना है अंडे बारे में आपने किसान भाई बहन ने बात करा। और देखो सबों पहली सिंचाई की बात करा तो देखो चिलचिलाती धूप और गर्म हवारे यानी कि लू रे कारण मिट्टी की नमी जो है तेजी कमी देगा सा। फसला ने सुखाऊ वंचावरे वाते आवश्यकता अनुसार हल्की और नियमित सिंचाई भी आपने किसान भाई बहना ने करनी पड़ेगा सा।
1: हाँ सा। और अबार अना दना में जना खेता में खरीफ री फसल जैसे मक्का या सोयाबीन री है वावणी किसान भाई कर सके, बटे जुताई करने खेत ने खुला छोड़ देना है ताकि तेज धूप रे कारण मिट्टी रा हानिकारक कीड़ा जो है या खरपतवार बीजे भी नष्ट हो जाएगा सा।
0: बिल्कुल आप ठीक क्रिया हो ना। अबे खाद और उर्वरक की बात जटे करा तो तेज हवारे दौरान खड़ी फसला में रासायनिक खाद या कीटनाशक और छिड़काव अनि टाइम पे किसान भाई नहीं करे सा। नहीं करके ये कि दवाइयाँ रे उड़वारे कारण नुकसान व्यवहारो खतरो वण्यो थको रहेगा सा।
1: हाँ सा देखो अपना जी ढांडा चोपा है वणारो भी आपने बार विशेष ध्यान रखनो है भाई, क्योंकि देखो गर्मी रो असर तो वणारे ऊपर भी पूरो वेगा,
0: बिल्कुल
1: तो
0: सा।
1: आणी चिलचिलाती धूप रे कारण दोपहर टाइम पे जो दुधारू पशु है या दूसरा जो भी ढांडा चोपा है अपना वणा ने छाया में रखना है और वणा ने पानी री मात्रा जो है वह बराबर देता ट्रेणो चावे सा।
0: बिल्कुल आप ठीक ही रहे हो। देखो अपना पशु जो है अपने वास्ते बड़ा महत्वपूर्ण हुए वे तो पशुओं को ध्यान रखना भी आपने बहुत जरूरी है। वणा ने गर्म हवाओं बचावर वास्ते टाट में वणी में आप पिरा की सका सा। अंडे अलावा देखो टाट में देखो ठंडो पानी भी डाल सका। और अंडे अलावा जो है वणा ने नियमित रूप दिन में 2-3 दान कम ठंडो पानी पिलाना अणी टाइम पे जरूरी है सा।
1: हाँ सा भाई देखो अणी तो तरीकों किसान भाई ध्यान रखेगा तो मौसम रो जो बुरो असर है वो आना ढांडा चोपा पे भी नहीं पड़ेगा और किसान भाइयारे ऊपर भी नहीं पड़ेगा सा।
0: बिल्कुल या तो देखो मौसम की जानकारी और आवा वाला टाइम में अपना कृषि संबंधी कशा कशा कृषि कार्य करना है अंडी जानकारी आपने किसान भाई बहना ने दीदी सा। अबे आपको तो एक राजस्थानी लोकगीत आपने किसान भाई बहना ने और हुनावा सा।
1: हाँ सा।

0: तो उपासना भाई से यो हुणियो आपी राजस्थानी लोकगीत। और देखो कार्यक्रम में आप ही आगे बढ़ा तो देखो आपनी चाहे केंद्र सरकार वो चाहे राज्य सरकार वो आपने लोगारी भलाई रे वाते समय समय पर अलग अलग योजना लावे सा।
1: हाँ सा।
0: और सरकारी उद्देश्य ये आवंडो एक किस तात्पर्य बनी योजना रे लावर होवे कि देखो ज्यादा से ज्यादा लोग बनी योजना रो लाभ ले और बनारी जाहे आर्थिक और सामाजिक उन्नति वे वैसा।
1: हाँ
0: और अनिस तरह देखो किसाना रे बातें भी सरकार समय समय पर अलग अलग योजना लावे और सरकार किसाना रे भलाई रे बातें बनारी आय में बढ़ोतरी रे बातें बना योजना रे क्रियान्वयन करे सा।
1: हाँ सा।
0: और आज अनि संबंध में आप एक योजना रे बारे में आपने किसान भाई बहना ने दा जानकारी दा कृषि यंत्रीकरण उप मिशन योजना सा।
1: हाँ सा। देखो कृषि यंत्रीकरण उप मिशन केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना है। अंडो मुख्य उद्देश्य किसाना ने सब्सिडी पे आधुनिक कृषि यंत्र और मशीना उपलब्ध कराना है ताकि खेती री लागत घट जावे, समय बच जावे और फसल री जो उत्पादकता है वन में बढ़ोतरी वही जावे।
0: बिल्कुल आप ठीक ही रहे हो। देखो सरकार कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन केंद्र या केंद्र सरकार द्वारा यह योजना चली रही है अणि योजना री विशेषता और लाभ री बात आप ही करा तो देखो लघु सीमांत और महिला और STSC किसान जो है वणा ने 50% से 80% तक रो अनुदान यानी कि सब्सिडी अणि योजना रे अंतर्गत दी जावे। जबकि सामान्य श्रेणी रे किसाना री बात करा तो देखो कशो भी यंत्र खरीदवा पे 40% तक री सब्सिडी जो है वणा ने दी जा रही है सा।
1: हाँ सा। देखो अणि योजना रे तहत लगभग 91 प्रकार रा उन्नत कृषि उपकरण जिस तरह की ट्रैक्टर है, रोटावेटर, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, थ्रेशर और फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र जिस तरह की सुपर सीडर है अणा सब पे अनुदान दियो जावे है सा।
0: बिल्कुल आप ठीक ही रहा हो। देखो जो किसान भारी या महंगा उपकरण खरीदवा में असमर्थ है और वणा रे वाते गांव या ब्लॉक स्तर पर कही है कि कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करवा रहे वाते भी सरकार प्रयास कर रही है और अणा कस्टम हायरिंग सेंटर पर किसान मामूली किराए पर देखो ट्रैक्टर है या दूसरी जितनी भी मशीना है भी किराए पर ले सकेगा और अपना कृषि संबंधी कार्य टेम पे और सही तरह करूँ कर सकेगा सा।
1: हाँ सा। भाई देखो योजना

0: लिए आवेदन करती टाइम पे अपने कुछ दस्तावेज अपने साथ रखना पड़े हैं, जिस तरह की आधार कार्ड जो कि पहचान प्रमाण के लिए जरूरी है, भूमि री जमाबंदी या रिकॉर्ड वंडो, बैंक पासबुक री पहली प्रति जो खाता और विवरण झंडे अंदर लिखे होते होवे वो जरूरी है, और पासपोर्ट साइज रो फोटो चाहेगा, और जाति प्रमाण पत्र अगर आप कोई SC ST या OBC हो तो आप रो वो चाहेगा जाति प्रमाण पत्र, और ट्रैक्टर चलित यंत्रा के लिए आवेदक रे नाम पे पंजीकृत जो ट्रैक्टर है वंडी RC
1: बिल्कुल
0: चाहेगा।
1: सर,
0: तो ये सब दस्तावेज लेने पछे ही आपने आवेदन री प्रक्रिया शुरू करनी चाहे सर।
1: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखो अपना राजस्थान में राज किसान सारथी पोर्टल या SSO ID रे माध्यमों आपी राज किसान सेवा पर आवेदन आपी कर सका सा। अंडे अलावा पूरा भारत रे वाते माई स्कीम पोर्टल जा है, वहीं पे जाइन आपी अणि योजना री पात्रता और आवेदन प्रक्रिया री जांच भी आपी कर सका सा।
0: हाँ सर, तो भाई देखो किसान भाई, या जो आपकी जानकारी अबार दी दी है अंडे बारा में थोड़ा हावचेत भी जावे और अन्य योजनारों भी लाभ लेवे तो वनारे लिए बहुत ही फायदेमंद योजना है
1: बिल्कुल आप
0: सर।
1: ठीक कह रहे हो। देखो सरकार रो उद्देश्य जटे आपी बात की दी कि किसानों रे हित करनो है, वनारी आय जो है वन्ने बढ़ानो है, और अणिस तरीकों देखो कणी भी योजना रे अगर आपी कणी योजना रे बारे में अपने कन्ने खबर है और कणी किसान भाई बंधु ने बनी योजना री अगर आपी जानकारी दें और वो बनी योजना रो लाभ उठाई सके तो यो तो बहुत ही बढ़िया है सा।
0: हाँ जी बात है साहब। भाई देखो आप ही तो यही कोशिश करा कि सब तरह किसान भाइयों रो फायदो ही फायदो बेवे,
1: बिल्कुल
0: चाहे
1: सा
0: वो स्वास्थ्य रहो, चाहे खेती बाड़ी रहो, चाहे वनारे घर परिवार रहो।
1: बिल्कुल आप ठीक ही रहो ना। फायदा री जटे बात भी रही है तो देखो किसान भाई बहन रो मनोरंजन भी बनो चावे सा,
0: हाँ
1: और अबे
0: सर,
1: आपको तो एक राजस्थानी लोकगीत अणि कार्यक्रम में अपने किसान भाई बहन ने और हुणावा सा।
0: हाँ सर, सुनावा नहीं।

0: तो नंदू भाई देखो आप ही बढ़िया सु गीत हुनायो सा
1: बिल्कुल सा
0: और पाछा आप ही चला जानकारी री तरफ। तो जानकारी में आज आप ही किसान भाई ने देखो जानकारी देवांगा कि कृषि उपकरण री समय समय पर सर्विसिंग करनो कतरो जरूरी है।
1: बिल्कुल आप भी क्रिया देखो अपना कृषि उपकरण जो है अपने बात घना महत्वपूर्ण व्यवसाय और जैसे कि ट्रैक्टर है रोटावेटर है हार्वेस्टर है आदि री अपने समय पर सर्विसिंग करवाऊँ कही है कि ईंधन री बचत वेवे अंडे अलावा अपना जो ई कृषि उपकरण है ई अपनी कार्य क्षमता ने भी बढ़ाई देवे। कटाई हो बुआई हो समय पर अचानक मशीन खराब हो जाए तो देखो आप ही कतरो नुकसान झेल सा।
0: तो अणी वास्ते भाई देखो अगर आप ही समय पे सर्विसिंग कर लांगा तो यो जोखिम अपने नी वेगा।
1: बिल्कुल आप ठीक रहे हो सा।
0: भाई देखो कृषि उपकरण री नियमित जांच करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। हर बार उपयोग करवाऊ पेला बोल्ट कसना और उपयोग रे बाद मशीनों मिट्टी या धूल साफ करनो बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल आप ठीक रहे हो ना। टाइम टाइम पे देखो इंजन ऑयल भी बदलते रहना चाहे एयर फिल्टर भी साफ करते रहना चाहे हटाया या खोलवा जा सका वाला जी भी हिस्सा है जैसे कि बेरिंग है चेन है अना सब बारी भी ग्रीसिंग टाइम टू टाइम बेहती रहनी चाहे सा।
0: हाँ जी बात है सा। देखो अगर अबार कटाई और बुआई रो समय नहीं है और तो वणी टाइम पे भी आपने जनार मौसम समाप्त हुई जा तो मशीना ने अच्छी तरह धोई ने पेंट करने सुरक्षित स्थान पे ढाकने रख देनो चाहे सा।
1: बिल्कुल आप ठीक क्रिया हो देखो आधुनिक कृषि उपकरण री जो सर्विसिंग रो टाइम री जटे बात करा तो ट्रैक्टर हर 250-300 घंटा जनान बनने भी जावे तो वही टाइम पे इंजन ऑयल और फिल्टर जो है अपने बदल देना चाहे सा।
0: हाँ सा देखो रोटावेटर और हेरो जो वे वने ब्लेड री धार जो है वह चेक करनी चाहे और जरूरत पड़वा पे बदलनी भी चाहे ट्रांसमिशन गियर बॉक्स रा ऑयल चेक करता रहनो चाहे स्प्रेयर वे तो वंडो नोजल और प्रेशर रेगुलेटर री जाँच करनी चाहे ताकि और बंडे ऊपर दवारो छिड़काव आप ही कर सका आने वास्ते बंडी जांच करनी जरूरी है।
1: बिल्कुल आप ठीक क्रिया हो थ्रेशर है हार्वेस्टर है अनारे बेल्ट री कसावट मूविंग पार्ट्स रा वियर और टीयर यानी कि घिसावरी जांच भी आपने करते रहना चाहे सा। राज्य सरकार द्वारा कृषि यंत्र री खरीद और बंडे रख रखाव पर सब्सिडी और सहायता भी दी जावे अंडे लिए आप ही देखो राज किसान साथी माय स्कीम पोर्टल पे जैन वंडे बारे में जानकारी भी ले सका सा।
0: हाँ
1: अंडे अलावा अपने किसान भाई बहना ने यो भी ध्यान रखना है कि देखो कृषि यंत्रारो चुनाव करता समय अपने यो ध्यान रखना है कि मशीन खेती रे काम करवा रहे वाते पूरी तरह सक्षम वैसा।
0: हाँ सा और

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो उपासना भाई सा ये हुए आप ही राजस्थानी लोकगीत और लारे लारे संदेश भी हुए सा। और कार्यक्रम में देखो आप ही आगे बढ़ा तो देखो अपना कृषि विभाग जो है किसान ने बहुत सारी योजना पर देखो अनुदान रूप में आर्थिक सहयोग भी करे सा।
3: हाँ सा।
2: और किसान भाई बहन जो है अनारो लाभ लेना चाहे तो देखो एनी टाइम पे राज किसान पोर्टल पे ऑनलाइन आवेदन भी कर सके सा। और कशी कशी योजना पे देखो कतरो कतरो अनुदान मिल रहा है वनडे बारे में जानकारी दा तो देखो सबों पहली तारबंदी अपने किसान भाई बहना रे बात गणी महत्वपूर्ण वे।
3: हाँ।
2: तो अंडो अगर लाभ लेनो है तो किसान भाई बहना ने आवश्यक दस्तावेज कशा कशा चाहेगा अंडे बारे में बात करा तो अणी महीने अपने जमाबंदी चाहेगा जहाँ 6 महीना पुरानी नहीं बहनी चाहे पटवारी द्वारा प्रमाणित ट्रेस नक्शो भी चाहेगा अंडे अलावा लघु सीमांत प्रमाण पत्र लागू वे तो वो भी जरूरी पड़ेगा। और अणी में बात करा तो देखो अनुदान री जटे बात करा तो लघु और सीमांत कृषक जो है वणा ने 60% या अधिकतम 48,000 तक रो अणी में जो है अनुदान सरकार जो है वो देवे। सामान्य कृषक री बात करा तो देखो 50% या अधिकतम 40,000 रुपया तक रो अनुदान जो है अणी में मल्ले। सामुदायिक आवेदन री जटे बात करा तो 70% या अधिकतम 56,000 तक रो तार मंदिर अनुदान जो है किसान ने मल्ले सा। और मुख्य बिंदु री जटे बात करा तो देखो एकल या संयुक्त खातेदारी जो एक जगह पर न्यूनतम 2 बीघा जमीन बनी जरूरी है सा।
3: हाँ सा देखो अंडे अलावा का खेत पे कोई तालाब पौंड बने थे को वे तो वनडे लिए भी अनुदान मिले है। तो जमाबंदी अण में चाहेगा दस्तावेज री बात कर रहा हाँ तो जमाबंदी 6 माह पुरानी नहीं वे यो ध्यान रखनो है। और जणी खसरा में निर्माण करनो है वनडो ट्रेस नक्शो चाहेगा लघु सीमांत प्रमाण पत्र भी चाहेगा। और अगर देखो जो भूमि रो मालिक है खेत रो मालिक जो है वणारे अगर वणारे पिताजी री मृत्यु हुई गई है या नामांतरण रे कमी है हाल नी व्यो है नामांतरण तो वणी टेम पे नेशनल शेयर प्रमाण पत्र भी वेणो जरूरी है सा।
2: बिल्कुल सा।
3: और देखो किसान रे पास एक जगह पे न्यूनतम 30 एकड़ जमीन वेणो जरूरी है। और न्यूनतम 4 लाख लीटर जल भराव क्षमता रे जो फार्म रो जो पौंड है वनडो निर्माण पे ही अनुदान मिलेगा सा।
2: बिल्कुल सा।
3: और आवश्यक भूमि स्वामित्व विवाह पे एक किसान रे पास एक उ ज्यादा फार्म पौंड पे भी अनुदान ले सके मतलब ज्यादा नहीं लेना चाहे। और देखो

0: किसान भाई जो है वन में भी अलग अलग तरह रो देखो अनुदान मिले हैं, तो कच्चा पे तो देखो 70% या पछे 73,500 रुपया जो मतलब SC ST रा है वनारे लिए
1: बिल्कुल
0: हैं,
1: सर,
0: और 60 दूसरी श्रेणी रा जो वे वनारे लिए 60% या पछे 63,000 रुपया रो मिले हैं, और पक्का रूप में अगर है तो वनडे लिए ना SC ST वाला रे लिए तो 90% या पछे 1,35,000 रुपया रो अनुदान है, और दूसरी श्रेणी वाला रे लिए 80% या पछे 1,20,000 रुपया रो अनुदान है सर।
1: बिल्कुल उपासना भाई साहब, कोई डिग्गी निर्माण वास्ते अगर आवेदन करना चाहिए रो है तो वनडे पास भी जमाबंदी वेनी चाहे, जो 6 महीने पुरानी नहीं वेनी चाहे, जणी खसरा रे निर्माण करना है वनडो ट्रेस नक्शो भी वेनो चाहे, लघु सीमांत प्रमाण पत्र भी वेनो चाहे अगर लागू है तो, और पिता री मृत्यु रे उपरांत नामांतरण रे अभाव में भूमि स्वामित्व नाम न वेवा पर नेशनल शेयर रो वनडो प्रमाण पत्र वेनो चाहे, डिग्गी निर्माण वास्ते न्यूनतम 4 लाख लीटर रो जल भराव क्षमता रो जो है निर्माण वेगा तो वहीं पे अनुदान दे है। अनुदान री जटे बात वीरी है तो किसान रे पास में स्वयं रो पंप सेट बैणो भी अनिवार्य है सा।
0: हाँ सर,
1: और अनुदान री जटे बात करा तो लघु लघु और सीमांत कृषक अगर है तो वहां ने 85% या अधिकतम 3,40,000 तक रो अनुदान मिलेगा सा। दूसरा किसान है तो वहां ने 75% या अधिकतम 3 लाख रुपया तक रो अनुदान मिलेगा सा।
0: हाँ सर, देखो किसान भाई जो है वड़ाने पाइपलाइन की जरूरत पड़े है तो वनडे लिए भी अनुदान में ले ही सके है, तो अण में भी वही नियम है जमाबंदी 6 माह पुरानी नहीं हुए यो ध्यान रखना है, लघु सीमांत प्रमाण पत्र लागू हुए तो वो लेना है, और क्षेत्र प्रमाण जण में खसरो जो है वन में जटा तकरो पाइपलाइन बिछानी है वंडो पूरो नक्शो वेणो चावे, और पितारी मृत्यु उपरांत और नामांतरण रे अभाव में भू स्वामित्व नाम न वेवा पे नौशल शेयर वो वेणो जरूरी है, और सिंघाई स्त्रोत खसरा रे नाम पे वेणो वेवारो एफिडेविट या प्रमाण पत्र वेणो जरूरी है सा। और देखो PVC HDPE या ले फ्लैट लेमिनेटेड तीन ही तरह रा जी पाइप है वहाँ पे अनुदान दे हैं, और स्वयं रे नाम पे सिंचाई समेत नहीं वेवा पे भी जणी किसान रे सिंचाई वास्ते पानी लेनो है वंडो एफिडेविट या प्रमाण पत्र वेणो जरूरी है, वंडो लिए भी आवेदन कर सके हैं, और संयुक्त तो खातेदारी में जमीन और सिंचाई स्रोत वेवा पे वन पे भी सभी खातेदार अलग अलग अनुदान ले सके हैं, और अनुदान देखो कई तरीकों मिलेगा, लघु सीमांत कृषक जो है वड़ा ने 60% या अधिकतम 18,000 रुपया, और दूसरा जी किसान भाई है वड़ा ने 50% या अधिकतम 15,000 रुपया रो अनुदान मिले है सा।
1: बिल्कुल आप ठीक ही रहे हो, देखो आना आना योजना पर देखो एनी टाइम पे आवेदन जारी है सा। और किसान भाई बहन अगर ऑनलाइन आवेदन करना चाह रहा है तो राज किसान साथी पोर्टल पे जैन स्वयं जैन आवेदन भर सके या नज़दीकी ई मित्र रे माध्यम यू आवेदन कर सके। आवेदन री अंतिम तिथि री जटे बात करा तो 15 जुलाई 2026 अंडी अंतिम तिथि है सा। और किसान भाई बहन अंडे बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाह रहा है तो राज किसान साथी पोर्टल पे जैन अंडे बारे में ज़्यादा जानकारी भी ले सके सा।
0: हाँ सर, देखो भाई किसान भाई हाव चेत रहे तो सब जगह वणा वणारो मुनाफो मुनाफो भी आराम ले सके
1: बिल्कुल
0: सा।
1: सा
0: भाई देखो आप ही भी मुनाफो करावा वणारे स्वास्थ्य रो लाभ करावा, और एक और बढ़िया सो गीत होना ही था वणा ने।
1: बिल्कुल होना वासा।

ग्रामीण पर्यावरण सुनाभिन का दानी कार्यक्रम खेती और घर मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। रात्रि 8 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कुछ फिल्मी तराने कार्यक्रम फिल्म संगीत में। कार्यक्रम में ये गीत आइए आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है गंगा जमुना सरस्वती।

ये गीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम में अगला गाना आइए आपको सुनवाते हैं, हीरा पन्ना इस फिल्म का ये गीत। आइए सुनते हैं संगीत आर डी बर्मन का, आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ।
2: हमें मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
3: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

ये गीत अभी आपने सुना, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम में अगला तराना आइए आपको सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है दोस्ती। इस फिल्म का आइए ये गीत सुनते हैं, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला तराना ही आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है यादों की बारात, संगीत आरडी बर्मन का। सुनते हैं ये गीत, उससे पहले ही संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: आप भी अपने उत्पाद का विज्ञापन आकाशवाणी पर कीजिए और अपने व्यापार को आकाश की ऊंचाई तक पहुंचाइए। अधिक जानकारी के लिए नजदीक के आकाशवाणी केंद्र से संपर्क करें या हमें मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।

कार्यक्रम आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम का अगला और अंतिम तराना ही आपको सुनवाते हैं, अदालत। इस फिल्म का ये गीत आइए सुनते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13

0: हजार करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी वे आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
1: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: श्री मोदी ने कहा कि एनडीए राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
1: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन, एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही। और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
0: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर सही स्थान पर सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और एनडीए शासित सभी 22 राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली

0: जी म्यूंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
4: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
3: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है।

0: AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन पीएलआई योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियो पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला टी20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi assures aspirations of 140 crore Indians will definitely be fulfilled, says Vikasit Bharat must be the dream of every single person. National Democratic Alliance lauds Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest serving elected Prime Minister. Union Cabinet approves second phase of Ahmedabad Metro Rail Project, also gives nod to infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. Government approves 96 companies under third round.

अब जो गजल पेश कर रहा हूं उसके शायर हैं जनाब शेख आदम अबू वाला।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुगम संगीत, कार्यक्रम का अगला और अंतिम नजराना। आवाज तलत अजीज की।

0: कार्यक्रम सुगम संगीत अभी आपने सुना, ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, सुनते हैं चर्चा का विषय है।
1: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल, प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: सदियों पुराना इतिहास और उस इतिहास के पन्नों पर करवट लेता एक आधुनिक महाशक्ति का संकल्प। साल 2014 से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने देश को सिर्फ नीतियां नहीं दी बल्कि एक नया आत्मविश्वास दिया।

0: आज का भारत थमने वाला भारत नहीं है। गांव से लेकर वैश्विक मंच तक, खेतों से लेकर अंतरिक्ष तक, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर नारी सशक्तिकरण तक, भारत ने बदलाव की एक ऐसी कहानी लिखी जिसे दुनिया ने भी गौर से देखा और महसूस किया। आज का भारत केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है, बल्कि तेजी से उभरती हुई एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, G20 की सफल अध्यक्षता, रक्षा उत्पादन में नई उपलब्धियां, ऑपरेशन सिंदूर जैसे निर्णायक कदम, डिजिटल इंडिया की क्रांति, किसानों और गरीबों के जीवन में बदलाव लाने वाली योजनाएं, इन सब ने एक नए भारत की तस्वीर गढ़ी है। ये है बदलता हुआ भारत, ये है निखरता हुआ भारत। साल 2014 से लेकर अब तक विकास के इस महायज्ञ में भारत ने हर क्षेत्र में जो लंबी छलांग लगाई है, आज हम उसका विश्लेषण करेंगे। और इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ दो बेहद प्रतिष्ठित और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर और देश के जाने माने मीडिया विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर KG सुरेश। आप दोनों का आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: सबसे पहले शेखर जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। अगर चर्चा की शुरुआत हम विदेश नीति से करें, एक ऐसा विषय जहां भारत ने पिछले एक दशक में बहुत प्रगति की है, भारत की विदेश नीति में एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिला है पिछले एक दशकों में। आज का भारत संकट के समय मूक दर्शक नहीं रहता, बल्कि यूक्रेन संकट से लेकर पश्चिम एशिया के तनाव तक अपना स्वतंत्र रुख रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की इस स्वतंत्र और मुखर विदेश नीति को कैसे देखते हैं?
2: बिल्कुल आनंद जी, ये पिछले 12 साल में भारत की जो लीडरशिप रही है, नेतृत्व कहा जाए, बड़े बड़े क्राइसिस में भारत की आवाज, भारत की अर्थशेप, भारत की कूटनीति, ये बहुत बदलाव आया है। वो रशिया यूक्रेन युद्ध हो या अभी जो चल रही है ईरान के युद्ध हो, जहां भारत की आवाज, भारत की कोशिश किसी तरह विश्व शांति लाने की बड़ी पैगाम लगी, इसीलिए हो रहा है कि आज की जो भारत है, ये भारत जो विश्व भर में एक प्रकार से देखा जाता है कि ये देश जो लोक कल्याण की बात करती है, केवल भारतीय लोगों की कल्याण नहीं है, विश्व कल्याण और विश्व शांति की हमेशा कोशिश रहती है। कई जगह पर हमने देखा है कि भारत की जो विचार, भारत की जो दृष्टिकोण, ये सारे वर्ल्ड के जितने लीडर्स हैं बहुत गंभीरता से सुनते हैं। वो आपके G7 के एक्सटेंडेड समिट हो, G23 की समिट हो, या जहां पे भी भारत UN जनरल असेंबली की प्रधानमंत्री की भाषण हो, या कोई बायलेटरल समिट हो जहां दोनों देशों के बीच में नेताओं की परस्पर जो बातचीत हो, हर जगह पर भारत की बात सुनने के लिए वर्ल्ड के जो प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट भारत आए, और हमारे प्रधानमंत्री जब भी बाहर जाते हैं, और भारत की जो आर्थिक चेंज जो हो रहा है, एक प्रकार से सबके सामने एक एग्जाम्पल बन गया है। उदाहरण के लिए जिस तरह हमारी डिजिटल मिशन रहा है, डिजिटल पेमेंट की जो बात, ये G23 में सब नेताओं ने इसको एक मॉडल के रूप में देखा कि विश्व भर में कैसे गरीबों के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए कैसे हम इसको अपना सकते हैं। इस तरह कई चीजें जो है आप देख रहे हैं कि जहां पे स्ट्रेटेजिक विषय हो, जहां पे आपको लग रहा है कि भारत का भूमिका कि विश्व शांति के लिए, उसके लिए जो भूमिका ये कर सकते हैं, वो सारे देश भारत की ओर देख रहे हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि पहले इस तरह की भारत की भूमिका नहीं रही हो, लेकिन आज जिस गंभीरता से भारत की भूमिका ली जाती है, ये पहले कभी नहीं हुआ। उसका ज्यादा कारण हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व।
0: सुरेश जी, एक और क्षेत्र पिछले, अगर हम कहें कि 12 वर्षों में बहुत बदलाव के सफर पर आगे बढ़ा, वो है रक्षा क्षेत्र। रक्षा क्षेत्र में भारत कभी दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में गिना जाता था, लेकिन आज हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। तेजस, ब्रह्मोस और INS विक्रांत जैसे गौरव हमारे पास हैं, और दुनिया के कई देशों में हम निर्यात भी कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के सफर को आप कितनी बड़ी रणनीतिक जीत मानते हैं?
3: मैं तो समझता हूं कि अगर इस 12 वर्षों का माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल को देखेंगे, तो मैं इसमें 2-3 महत्वपूर्ण आयाम इसमें देखता हूं। जो एक आजादी, एक खुली छूट, या आप इसको कहें कि एक ऑटोनॉमी, स्वायत्तता जो हमारे सेनाओं को दी गई है कि वो विकट परिस्थितियों में उनका हाथ खोल दिए गए हैं, ये चाहे आपने गालवान में देखा हो या पाकिस्तान की तरफ जो सरहदें हैं वहां हमने देखी हो कि हमने हमारे फौजियों के जो हाथ बांध कर हमने उन सरहदों पर खड़ा किया था, उनके हाथ खोल दिए हैं, उनको ये अधिकार दिया है कि वो बीफिटिंग मैनर में जो है वो जवाब दे सकते हैं दुश्मन को, उनको कहीं भी

0: हर एक जगह अनुमति लेने के चक्कर में कई दिनों तक आप जो है लोग इंतजार में रहते हैं और तब जाके निर्णय लिया जाता था। आज उनको ये हमारे आत्मरक्षा में कदम उठाने का उनको स्वायत्तता दी गई है, पहली बात। दूसरा, पूरा स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो उसमें सीडीएस जैसे इंस्टीट्यूशन, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का इंस्टीट्यूशन बना दिया गया है ताकि एक बेहतर समन्वय तीनों सेनाओं में, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, इन सब में जो है एक कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, इसके लिए जो है इंटीग्रेटेड जो कमांड की पूरी एक व्यवस्था की गई है, यह मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके से बहुत सारे, हमने यहां आपने भी उसका जिक्र किया कि विदेशों में आज कई देश, मैं भी अभी एक हाल ही में एक विदेशी मुल्क का देख रहा था कि वो किस तरीके से उनके परेड में आकाश के मिसाइल्स चल रहे हैं, पृथ्वी चल रहा है, पिनाका चल रहा है, जो पहले हम देखते थे कि हम जो बेचते थे वो सिर्फ एम्यूनिशन, गोलियां बेचते थे, और उसके जगह आज हम अपने एयरक्राफ्ट बेच रहे हैं। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे हथियारों की डिमांड पूरे विश्व में बढ़ गई है, और यही नहीं, हमने महिलाओं को जो महत्व दिया है, उनके भागीदारी, बराबर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों अफसर जो वायुसेना और थल सेना के जो प्रतिनिधित्व करते पूरे विश्व के सामने, भारत का प्रवक्ता बनकर खड़े हुए थे, वो हमारे महिला सेना के अधिकारी थे। तो महिलाओं को जो महत्व दिया गया है, 26 जनवरी में तो हमने सिर्फ महिलाओं को ही जो है सारा कमांड का नेतृत्व प्रदान करते हुए देखा, ये बहुत जरूरी था। तो मैं समझता हूं कि आमूलचूल परिवर्तन। आप अंत में ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत डिफेंस के महत्वपूर्ण विषयों को पर्यावरण के नाम पर रोक दिया गया था, सरहदों में, खासकर जो उत्तर पूर्व में चीन के साथ जो सरहद है, इन सब इलाकों में जो बहुत ही दूर दराज के क्षेत्र थे, वहां हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने काफी कम कर दिया था कि पर्यावरण के दृष्टि से, पर्यावरण को बचाते हुए भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सरहद तक अपने सप्लाई लाइन्स खुली रहे। अभी परसों ही हमने देखा कि जो जिला का जो आखिरी पॉइंट था उसको भी खोल दिया है, अब वो विश्व का सबसे बड़ा टनल होगा और निश्चित ही वो ऑल वेदर टनल होगा, चाहे कितनी भी सर्दी हो, बर्फबारी हो, आप देखेंगे कि उस टनल से हमारी फौज की सप्लाई बॉर्डर लाइन तक जाएगी। तो किसी भी तरीके से फौज के साथ, हमारे सेना के साथ, उनके जो हथियार है उसके साथ कहीं कोई समझौता नहीं किया गया है। बहुत जगह बहुत सारा अनुसंधान हो रहा है, शोध हो रहा है, नए नए हथियार डेवलप किए जा रहे हैं, मेक इन इंडिया पर बहुत जोर दिया गया है, निजी क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ावा दिया गया है। तो मैं एक पूरे दृष्टिकोण में एक परिवर्तन पिछले 12 साल में मैं देखता हूं।
1: शिखर जी, अगर हम बात भारत के बदलाव की करें और बात हम नए भारत की करें, तो इसमें सबसे अहम कड़ियों में से एक है अन्नदाता किसान। कृषि क्षेत्र में पारंपरिक तौर तरीकों को बदलकर, चाहे सॉयल हेल्थ कार्ड की बात करें, फसल बीमा योजना की बात करें, पीएम किसान सम्मान निधि की बात करें, या फिर जो ड्रोन तकनीक है, जो नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं हैं, उससे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिली है, कितना बदलता हुआ किसान को आप देखते हैं पिछले 12 वर्षों में, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव को?
2: देखिये, जो केंद्र सरकार की जो ये रवैया रही है किसान को लेकर, कि कैसे धीरे धीरे करके अपने किसान को कैसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कोशिश है, उसी का एक अच्छा कह सकते हैं कि इनिशिएटिव जो रहा है, यानी सरकार की जो पॉलिसी, प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसी रही है, बीज से लेकर मार्केट तक जो शुरू होती है, सीड मार्केट से लेकर, मतलब कैसे बीज से लेकर, तो उसके बाद किस तरह किसान को हाथ पकड़ के उनके पैर में खड़े होने के लिए जो कोशिश सरकार की तरफ से जो हेल्प, आपने किसान सम्मान निधि की बात की, किसान क्रेडिट कार्ड है, फिर दूसरी बात फर्टिलाइजर की जो आवश्यकता, और उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की भी बात हो रही है, और सबसे बड़ी बात है मार्केट एक्सेस, यानी नेट के जरिए मार्केट एक्सेस करना। अब जो शुरू, अभी जो आत्मनिर्भर भारत के जो बड़े कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज के एक नेटवर्क बन रही है, उसके साथ साथ आपकी ग्रीन ट्रेन बनी है, यानी उनकी पैदावार को सीधा मार्केट पहुंचाने के लिए, वो कर्नाटक से दिल्ली हो या नासिक से कर्नाटक हो या उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, या पूर्व भारत से या पूर्व उत्तर पूर्व भारत से मुंबई तक, इस तरह की जो नेटवर्क बनी है केवल फार्मर की जो पैदावार को ले जाने की। और सबसे बड़ी बात जो इस बार प्रधानमंत्री बहुत जोर दे रहे

0: भारत से या पूर्व उत्तर पूर्व भारत से मुंबई तक इस तरह की जो नेटवर्क बनी है केवल फार्मर की जो पैदावार को ले जाने की। और सबसे बड़ी बात जो इस बार प्रधानमंत्री बहुत जोर दे रहे हैं कि हाई वैल्यू क्रॉप यानी जिसका मूल्य मार्केट में ज्यादा है उसमें कई कई नए नए चीजों की बात हो रही है, साथ में दाल वगैरह का यानी पल्सेस का प्रोडक्शन किस तरह बढ़ाया जाए उसकी भी बड़ी कोशिश हो रही है, और MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार की हमेशा यही रहे कि जो कॉस्ट है उसे 150% ज्यादा उसको मिनिमम सपोर्ट देने की, यानी किसान को मार्केट दर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, अगर ना मिले उनके लिए एक सेफ्टी मैकेनिज्म MSP रही है। हर हम देख रहे हैं कि हर साल जैसे इनपुट की कॉस्ट बढ़ती जाती है सरकार ने MSP को हमेशा रिवाइज करके बदला है। इस तरह के आप देखेंगे कि सॉइल कार्ड जिसकी बात आपने की उसके साथ साथ जो नई टेक्निक जिन्हें आपने ड्रोन की बात की, ये जो सरकार का एक कार्यक्रम रहा है महिलाओं की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन ऑपरेट करने की जो ट्रेनिंग देकर ड्रोन दीदी जिस तरह की लाखों संख्या में आज ड्रोन दीदियां गांव में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड की स्प्रे करना हो या जितनी फसल हुई है उसकी एस्टिमेट करना हो, ये सारे में साइंस साथ में लेकर चल रहा है, उसमें अप टू डेट वेदर इन्फॉर्मेशन भी दिया जा रहा है, यानी जो सूचना जो किसान को मिलनी चाहिए कि बारिश की अवस्था क्या है, बारिश होगी कि नहीं होगी, सही समय पर पानी सिंचाई कैसे मिलेगी, मतलब ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां प्रधानमंत्री के डायरेक्शन के अनुसार सरकार पॉलिसी ऐसी ट्यून की गई है कि किसान की कहीं भी जो चुनौती आती है वो नेचुरल हो या मार्केट कारण हो उसको सुलझाने में सरकार लगी रही है। और आज हम देख सकते हैं कितने स्कीम्स जो आए हैं, जितने स्कीम्स है वो सारे स्कीम्स में यही कोशिश है कि जो हमारे किसान भाई जो पहले से अभी उनकी जो तकलीफ है एक एक करके दूर करने के लिए बहुत कोशिश की गई है।
1: सुरेश जी, पिछले 12 वर्षों में एक और फॉर्मूला काफी जोर पकड़ता नजर आया, रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र। प्रधानमंत्री अक्सर मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया से लेकर बुनियादी ढांचे के विकास तक इस नीति ने देश के आम नागरिकों के जीवन और ईज ऑफ लिविंग को जिस तरीके से प्रभावित किया है, आपको लगता है वो एक नए भारत की नई कहानी की तरह है?
2: बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं हुई। ये विदेश से एक राष्ट्राध्यक्ष आए थे और वो साधारण जो बाजार जिसको कहते हैं वहां उतरकर मुंबई में उन्होंने तस्वीरें खींची और उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से कि कम आय वाले लोगों में भी छोटे से दुकान में भी यानी कि रेड़ी पटरी जो लगी हुई थी उसमें भी UPI पेमेंट हो रहा है। आज देश के गांव-गांव तक UPI पेमेंट पहुंच चुका है और आप देखेंगे कि आज विदेश में कई मुल्क आज इसमें इस विषय में रुचि ले रहे हैं कि वे अपने देश में इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। अन्य मुल्कों में पेमेंट ट्रांसफर का बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है और भारत में UPI और भीम ऐप वगैरह की अपेक्षा से आज अगर देखेंगे तो जीवन कितना सरल हो गया है। खुले पैसे के लिए, पेमेंट के लिए किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। स्टार्टअप्स को इतना महत्व दिया गया है जो आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। जीवन इतना आसान, हम कभी हमारे यहाँ से भारतीय मूल के लोग विदेशों में जाके बसते थे तो एक कारण बताते थे कि भाई ईज ऑफ लिविंग है। यहाँ भारत में आज गांव-गांव में वही स्थिति है। सब कुछ जो है ई गवर्नेंस को इतना प्रमोट किया गया है, हर राज्य में आज हर तरह के स्टार्टअप्स घर तक आज खाना से लेकर क्या नहीं पहुंचता है। आज DBT के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे एक एक व्यक्ति के और शायद विश्व का सबसे बड़ा 80 करोड़ के करीब लोगों को जो है आज हम सब्सिडाइज्ड राशन दे रहे हैं। आज जो है सोशल सिक्योरिटी नाम का चीज इस देश में कभी नहीं हुआ करती थी। आम व्यक्ति अगर बीमार पड़ गया तो वो सिर्फ सरकारी अस्पतालों के पर टोटली निर्भर होता था, न जहां उसे सहूलियत मिलती थी कुछ नहीं। आज आयुष्मान भारत जैसे योजनाएं पूरे देश में लगभग लागू हो गई है। बंगाल में कई वर्षों से नहीं था, अभी बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां भी लागू हो गई है, जिसके चलते हर व्यक्ति जो है आयुष्मान कार्ड जिसके भी पास है वो किसी भी निजी अस्पताल में जाके अपने कठिन से कठिन समस्याओं का निदान पा सकता है और सीधे सरकार जो है उन अस्पतालों को जो है उसको पेमेंट करते हैं। इससे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। और सबसे बड़ी बात, जो सड़कों का जाल, इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैलाया गया उसके चलते आज दूर दराज के क्षेत्रों में कभी सोच नहीं सकते थे, मैं अभी होके आया हूं, मैं देहरादून कभी 5-6 घंटे लगते थे और आज के तारीख में मैं मात्र 2.5 घंटे में देहरादून और 1.5 घंटे में हरिद्वार होके आया हूं। आप जरा सोचिए कि ये क्या कभी संभव

0: माना जा सकता था कि आज लेकिन इतना बड़ा जाल गांव गांव में जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, एक्सप्रेस वे की आज पूरा देश और इसका लाभ किसको मिल रहा है, आज निवेश जो है गांव गांव तक पहुंच रहा है, उद्योगपति जो है आज दूर दराज के क्षेत्रों में भी अपने उद्योग लगा रहे हैं, किसान अपना जो सामग्री है उसको शहरों तक वो जल्दी से जल्दी पहुंचा सकता है, यातायात की सुविधाएं इतनी बेहतर हो गई है। आप देखेंगे कि रेलवे हो, वंदे भारत जैसे कई नए ट्रेन शुरू हुए हैं जिसके चलते बहुत सारे यातायात की सुविधाएं, प्रधानमंत्री ने हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक का जो योजना बनाई, उड़ान स्कीम, छोटे छोटे शहरों को आज जोड़ दिया गया हवाई नेटवर्क के माध्यम से, तो मैं समझता हूं कि जीवन काफी सरल हो गया है 12 साल में।
1: जी, कुछ और विषय शिखर जी हैं जिस पर हम चर्चा आपसे करना चाहेंगे, और एक विषय जो है वैश्विक व्यापार और आर्थिक कूटनीति का है। भारत ने हाल के वर्षों में यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय यूनियन के साथ जो है वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया है। पहले भारत को वैश्विक व्यापार समझौतों में थोड़ा झिझकने वाला देश माना जाता था। आर्थिक कूटनीति में आए इस आक्रामक और रणनीतिक बदलाव को आप नए भारत के नजरिए से कितना अहम मानते हैं?
2: प्रधानमंत्री जब उन्होंने एक आह्वान दिया कि वोकल फॉर ग्लोबल और पहले लोकल फॉर वोकल, यानी पहले लोकल जो हमारी जो एंटरप्रेन्योर्स की जो कोशिश है उसको पहले देश भर के जो मार्केट में पहुंचाना, उसके बाद विश्व भर जो मार्केट है उस पर पहुंचाना है। आपने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात की, अब हर कंट्री के साथ जिस तरह बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई है, यूरोपियन यूनियन हो, यूके हो, इन सबसे बात करके कि परस्पर कैसे, देखिए कोई भी ट्रेड अग्रीमेंट की जिक्र होती है तब आपकी ताकत पर होती है, आपके पास क्या है जो विश्व को दे सकते, जिस देश यहाँ सामान बेचना चाहता है उनमें ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है, ऐसी क्या चीज है जो हमारे लिए जरूरत है जो यहाँ पर ना हो। तो ये इस हिसाब से आप देखेंगे जितनी ट्रेड अग्रीमेंट, कम से कम 20 से ज्यादा कंट्री से हमारी अग्रीमेंट हुई है और लगातार हमारी बातचीत जारी है अमेरिका के साथ भी। आपने देखा पिछले एक साल से जिस तरह भारत और अमेरिका बीच में जो बातचीत रही है, पर पहले टैरिफ को लेकर जो एक समस्या खड़ी हुई, उसके बाद लगातार बातचीत, और दूसरी बात ऊर्जा को लेकर भी, देखिये ऊर्जा भी बड़ी चीज है, आज भारत ऊर्जा जितनी इंपोर्ट भी करती है उतनी स्पेशलाइज प्रोडक्ट बाहर बेचती भी है, मतलब यानी कच्चा तेल भारत आता है और स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम के बनकर बाहर जा रहा है, क्योंकि हमारी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है ये कैपेसिटी आज के तारीख पे अमेरिका से भी ज्यादा है, इसलिए अब भारतीय कंपनी जाके अमेरिका में रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। ये सारे चीजों देखने से जो ट्रेड की आपने बात किया, ये ट्रेड भारत की जो अंतर शक्ति जो है जिसको कहते हैं इनरेंट स्ट्रेंथ, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी बिजनेस की जो कैपेसिटी, ये सारे सबके लिए एक प्रकार से मौका आ रहा है, और इस मौके को आगे बढ़ाने के सरकार की जो कूटनीति रही है उसकी डिप्लोमेसी में आप देखेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रहा है कि किस तरह इकोनॉमिक कैसी हमारी बेनिफिट हो, देश को मिले, और हमारे जो जितने इंडस्ट्रीज है वो आपको कॉटेज इंडस्ट्री से लेकर हैंडलूम तक, टेक्सटाइल से लेकर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स तक, उसको कैसे आगे मार्केट पहुंचाने की काम सरकार लगातार करी आ रही है, उनके लिए कभी भी सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दे सकते में उसमें कोई सीमा ही नहीं है, आपको बैंक लोन हो, बैंक गारंटी हो, ये सारे चीजें देकर आज देखे यूनिकॉर्न की बात हो रही है, बड़े बड़े कंपनी स्टार्टअप बन रहे, ये सारे स्टार्टअप की तो मार्केट तो विश्व मार्केट है। तो इस तरह आप देखेंगे पिछले 12 साल में जो एक कॉन्फिडेंस आई है हमारे इंडस्ट्री में, हमारे बिजनेस कम्युनिटी में कि हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और करेंगे भी, ये दोनों मंत्र को लेकर जो आगे चल रहे हमारी इंडस्ट्री, उसका कारण यही है कि आज की जो सरकार, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार, वो बिल्कुल वो जो नारा है मोदी है तो मुमकिन है, ये वाकई आप देखेंगे ये प्रैक्टिकल हो गया है, ये केवल एक स्लोगन नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, ये वाकई ये सरकार किस तरह कदम लेकर, किस तरह प्रोग्राम चला के हर भारतीय को एक स्कोप दे रही है, एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि जिसमें आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ो, सरकार आपके साथ है। मैं मानता हूं ये 12 साल का उपलब्धि वही है, भारत की इंडस्ट्री पीछे नहीं है, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग चलती रही है, इसलिए तो बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं, केवल गरीब या मध्यम वर्ग या इनकी बात नहीं है या किसान की बात नहीं है, हर वर्ग की बात है, हर शिक्षण की बात है, हर भारतीय नागरिक की बात है एक तरफ, दूसरी तरफ राष्ट्र निर्माण। यानी जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही है इसको

0: देखकर तो बाकी देश भी देख रहे हैं। आज की तारीख में आप देखिए, कई बार बाहर होके आइए, आप यूरोप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, जब वापस आते हैं आपको लग रहा है, जैसे दिल्ली पहुंचेंगे एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तभी आपको लगता है कि जो पहले एक प्रकार से एक इंप्रेशन था भाई बड़े बड़े देश है, इतने डेवलप्ड है, भारत को कब कब वहां पहुंचेंगे, ये वाली चीजें दूर होती जा रही है आनंद जी। जब भी आप लगता है कि भाई हम कहीं पीछे नहीं है, अब आगे बढ़ रहे हैं। आज के तारीख में 20 से ज्यादा शहरों में हमारी मेट्रो ट्रेन चल रही है, उसकी टेक्नोलॉजी आप देख लीजिए, ये टेक्नोलॉजी जॉइंटली डेवलप्ड हुआ है और ये लेटेस्ट भी है। आज दिल्ली में अगर मेट्रो नेटवर्क इतना बड़ा है, जो मेट्रो डिब्बे जो चल रहे हैं उसमें अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रहा है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज लंदन में अवेलेबल नहीं है, पेरिस में नहीं है, न्यूयॉर्क में नहीं है, हमारी यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चलती है। और लगातार जो कोशिश है कि भाई हम जब राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे, राष्ट्र स्वाभिमान की बात करेंगे, हम पूरे के पूरे कोशिश, पूरे के पूरे ताकत लगा के एकजुट होके सरकार और नागरिक और देश प्रथम ये मन में रख के काम करने की जो एक माहौल बनी है, उसका कारण है ये 12 साल की प्रधानमंत्री की नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक मीडिया और सांस्कृतिक विश्लेषक के तौर पर आपने देखा होगा कि पिछले दशक में भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर का भरपूर इस्तेमाल किया है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो, वैश्विक मंचों पर आयुर्वेद को बढ़ावा देना हो या फिर ग्लोबल साउथ की आवाज बनना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास भी और विरासत भी, इस नैरेटिव ने वैश्विक पटल पर भारतीयों की सांस्कृतिक पहचान को किस तरह पुनर्भाषित किया है?
2: देखिए, सबसे पहले तो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जब अपना कार्यकाल शुरू हुआ, ज्यादातर देशों में जब वो जाते थे तो वो भगवद गीता की कॉपी देते थे, कुछ भारतीय एक पहचान, भारतीय अस्मिता, भारत की छवि, ये आज इतना भारत सर्वप्रथम हो गया है, भारतीय सर्वप्रथम हो गए हैं। प्रधानमंत्री जिस भी देश में जाते हैं, जो भारतीय मूल के जो लोग हैं, प्रवासी भारतीय हैं, उनसे वो मिलते हैं, उनके उस देश में जो भूमिका है उसके बारे में बात करते हैं। आप देखेंगे कि पूरे विश्व भर में भारतीयों को भी संगठित करके भारत के लिए वे क्या कर सकते हैं, इस दिशा में प्रयास किया है। भारत की संस्कृति को, भारत के संगीत को, भारत के सभ्यता को वैश्विक पटल पर किस तरीके से लाया जाए, आपने जिक्र किया। अभी अगले हफ्ते ही, जल्दी ही हमारे बीच में जून 21 आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और शायद ही विश्व में ऐसा कोई प्रस्ताव है जो सबसे ज्यादा राष्ट्र के लोगों ने एक साथ समर्थन किया और उसको जो है स्वीकार किया। आज पूरे विश्व में जो है योग दिवस मनाया जाता है। भारत जो है अपने पर्यटन के क्षेत्र में, अभी आप देखिए कि चीता जैसे जानवर जो दुर्लभ क्या हमारे देश से बिल्कुल गायब हो गए थे, जिनकी समाप्ति हो गई थी, उनको दोबारा कूनो मध्य प्रदेश में इसको हमने रीइंट्रोड्यूस किया। हमने देश के उस विरासत को, देश के ऐसे कई ग्रंथ, कई मूर्तियां जो पूरे विश्व के म्यूजियम्स में पड़े हुए थे, उनको वापस ससम्मान, चाहे वो भगवान बुद्ध से संबंधित हो, चाहे देवी देवताओं से संबंधित हो, मंदिरों के, वो उन सब को लेकर आए। और क्या इससे बेहतर काम हो सकता है कि एक बहुत एक एक विषय जिसको लेकर पूरे समाज में एक तरह से एक कटुता थी, उस विषय को का एक समाधान कोर्ट के जरिए निकालकर उसका शीघ्रातिशीघ्र, जो राम मंदिर का अयोध्या में जो निर्माण हुआ वो इसी कार्यकाल में हुआ, जिससे एक बहुत बड़ा लंबित मामला जो समाज और राष्ट्र को और वैश्विक स्तर पर हमारा जो है एक विषय बन चुका था, उसका समाधान, स्थायी समाधान हमने देखा। तो ये मैं समझता हूं कि जिससे भारत की विरासत आज पूरे विश्व में जो है इसको मनाया जा रहा है, पूरे भारत का जो है हम लोग आज भारतीयता पर जो गर्व करते हैं, आज डीकोलोनाइजेशन, औपनिवेशिकतावाद से हटकर आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो कॉलोनियल, जो हमारे यहां, आप चाहे वो एक वॉर मेमोरियल क्यों ना हो, इंडिया गेट हम सब उसको बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उसमें विश्व युद्ध के सेनानियों का नाम लगे हुए थे, लेकिन भारत के वो सेनानी जिन्होंने 1947 से लेकर और सब युद्धों में जिन्होंने अपना बलिदान, सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके लिए एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक वो हमने बनाया। इसी प्रकार हमने जो पुराने कॉलोनियल इस शहर को जो कि भी पहचान थी वो ज्यादातर आक्रांताओं द्वारा जो दी गई जो भवने थे भवन थे या बिल्डिंग थे

0: उन्हीं पर हम लोग जो है हमारे दिल्ली में हमारी अपनी विरासत क्या थी। तो इसलिए सेंट्रल विस्टा जैसे जहां नया संसद भवन बना, जहां नया सेवा तीर्थ प्रधानमंत्री का ये बना, और कितने सड़कों का जो हमारे गुलामी के प्रतीक थे उनका नाम बदलकर जो है हमको जो है हमने देखा कि राजपथ को जो है हमने उसको, चाहे वो प्रधानमंत्री का लोक कल्याण मार्ग हो या हमने जो है सेवा तीर्थ की स्थापना किया हो, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत के अपने पहचान, अपना जो विरासत है
1: जी
0: उसको जो है पुनः स्थापित करने का एक प्रयास किया गया। तो मैं समझता हूं कि आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी, क्योंकि मैं एक शिक्षाविद भी हूं और शिक्षा से जुड़ा रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसके तहत भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से हम सबको अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को गर्व रहे कि हर विषय को लेकर उसमें भारत का क्या योगदान रहा, जिसको भूला जा चुका था, जिसको ये बताया जा रहा था
1: जी
0: कि
1: सर,
0: सारा ज्ञान पश्चिम से आया है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है।
1: आखिर में एक बहुत छोटा सवाल शेखर जी आपसे समझना चाहेंगे। जब भी हम स्वर्णिम अतीत की बात करते हैं तो वो मजबूत वर्तमान की तरफ आगे बढ़ता है। जब वर्तमान मजबूत होता है तो हम एक सुनहरे भविष्य की परिकल्पना करते हैं, और यहां परिकल्पना 2047 के विकसित भारत की है। इस नए भारत की मजबूत नींव पर विकसित भारत की बुलंद इमारत को आप किस तरह देखते हैं? कार्यक्रम में समय कम है, बहुत संक्षेप में।
2: बिल्कुल, विकसित भाव ने सही कहा कि जो भी फैसले आज लिए जा रहे हैं, जो भी कार्यक्रम आज लागू किया जा रहा है, जो भी नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, वो केवल यही दृष्टि से कि आज की कदम कल की जो दिशा है, जहां मंजिल है वहां पहुंचने की बात है। और सारी चीजें जो बड़ी बात है वो आनंद जी, मैं मानता हूं प्रधानमंत्री की कोशिश हर पहलू पे एक ईमानदारी से जुड़ा हुआ है, एक सिंसियर एफर्ट है कि भारत कैसे आगे बढ़े, भारतीयों की जीवन कैसे और सरल हो जाए, और भारतीय भविष्य, हर नागरिक का भविष्य कैसे उज्जवल हो, इसकी कोशिश पर सरकार लगा हुआ है बिना एक दिन छुट्टी के।
1: जी, हर युग की अपनी एक पहचान होती है। कुछ युग परिवर्तन के साक्षी बनते हैं और कुछ परिवर्तन के निर्माता। पिछले एक दशक में भारत ने अनेक क्षेत्रों में नई उपलब्धियों के आयाम स्थापित किए हैं। वैश्विक कूटनीति से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक, डिजिटल क्रांति से लेकर बुनियादी ढांचे के विस्तार तक, आत्मनिर्भरता से लेकर विकसित भारत के संकल्प तक, देश ने एक नई ऊर्जा और एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए केजी सुरेश जी आपका और शेखर अय्यर आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल। प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है।
5: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। रात्रि 10 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं उस्ताद जाकिर हुसैन।

ಧಾತ್ರ ಕದ್ದ ಟೆಕ್ಕ ತಗದಿಗೆ ನದ ಧಾತ್ರ ಕದ್ದ ಟೆಕ್ಕ ತಗದಿಗೆ ನದ.

Dagger,

Get it,

ಕದಿರ

0: कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत अभी आपने सुना। आज के हमारे कलाकार थे उस्ताद जाकिर हुसैन।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: आकाशवाणी एट 90
1: मीडियम वेव 266.6 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। रात्रि 11 बजने को है। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, सुनते हैं हिंदी में समाचार। 11:05 आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। समाचार बस कुछ ही पलों में।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
3: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को

0: पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
1: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेल लेयन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के वास्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होगा। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली NCR क्षेत्र में अगले 3 दिनों में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की आशंका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को हराया जबकि तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, that is NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said, the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with a right intention, development also takes place at a rapid pace. He said, the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
3: Bharat ke logon ne pehli baar ye dekha hai ki jab sahi niyat se sarkar chalti hai to tez gati se vikas bhi hota hai. एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे